0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: बुधवार 1 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। समय हुआ है समाचार का।
3: सुबह का पहला फ्लैश न्यूज सुनते हैं आप सभी दिमाग। नमस्कार।
4: नमस्कार नीतुषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करता है। इसके तहत देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकेगी। समन 7 दिनों में जारी होगा और सुरक्षा आदेशों की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। पीड़िता को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आरोपी को हटाया जा सकता है या वैकल्पिक आवास का खर्च उठाना होगा। साथ ही मनोवैज्ञानिक परामर्श होगा, जिसका पालन न करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री पत्रकार से आवेदन के अनुसार CWA पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपए बकाया है, जिसमें 2.92 बिलियन रुपए पुराने बकाया शामिल है। 30 जून 2025 को समाप्त वर्ष में CWA ने 755 मिलियन रुपए का घाटा दर्ज किया। मंत्री ने बताया कि पानी की उत्पादन लागत 24 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि औसतन बिक्री 14 रुपए में होती है, जिससे 10 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर का नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यावसायिक उपयोग के लिए पानी की दरों में संशोधन होगा, लेकिन घरेलू उपभोक्ता इससे प्रभावित नहीं होंगे। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर 1 वर्ष के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जिनके अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए। मंत्री अशोक सुभों के अनुसार सभी डॉक्टर विधिवत पंजीकृत हैं और उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जांच करना तथा दिव्यांग व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए मेडिकल बोर्ड में बैठना है। इनमें कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल हैं, जो मेडिकल ट्रिब्यूनल में अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के अनुसार मामलों का आकलन करते हैं। मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के G2G समझौते पर बातचीत जारी है।

एसटीसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्ष रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा हो रही है, जिसमें मूल्य निर्धारण, मुद्रा और गुणवत्ता शर्तें शामिल हैं। मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों और फ्रेट लागत बढ़ने से देरी हुई है, लेकिन समझौता जुलाई के अंत तक पूरा होने की

0: कर अंतिम 16 में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला पैराग्वे से होगा। और लाहौर के पास एक निजी ट्यूशन सेंटर की इमारत की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद राहत कार्य जारी हैं और अधिकारियों ने जांच शुरू करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह देश के दक्षिणी ढलानों और ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाइयों पर रह रहकर हल्की बरसात होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, तटवर्ती इलाकों पर 19 से 22 डिग्री सेल्सियस। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर और आज शाम 5:41 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: घोर की बेला, ताजगी भरी शुरुआत,
3: एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। बुधवार 1 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे की 6:05।
2: ताजगी भरी शुरुआत।
3: जी हाँ, कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अपने आप में अच्छा होता है। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को। नया दिन निकल चुका है और आज सिर्फ नया दिन ही नहीं है, नया महीना भी है। देखते ही देखते 2026 के 6 महीने जो है बीत चुके हैं और 7वें महीने में हम कदम रख चुके हैं। और कहते हैं ना कि पहला पड़ाव कभी कभार मुश्किल लगता है, लेकिन बस थोड़े से हिम्मत और थोड़े से विश्वास की आवश्यकता होती है, फिर हर कठिनाई को पार करने का जो हौसला होता है वो अपने आप में मिल ही जाता है। तो चलिए, इस नए दिन के साथ ढेर सारी मंगल कामनाएं आपको। और आज का दिन ही नहीं बल्कि पूरे जीवन जो है आपका खुशियों से भरा रहे, आप सदा स्वस्थ रहे, सदा सुखी रहे, घर परिवार में अपनापन हो, सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, समाज में मान सम्मान इज्जत हो और हम भी अच्छे कर्मों द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। तो चलिए, इन्हीं कामनाओं के साथ आज के इस भोर की बेला को हम आरंभ करने जा रहे हैं। और यही प्रार्थना हम करेंगे कि जो नया महीना है जुलाई महीना, सबके जीवन को खुशियों से भर दे। आपको बता दें कुछ क्षणों में हम बढ़ेंगे कार्यक्रम सनातन धारा की ओर, उसके बाद चंद खूबसूरत भावगीत आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस पर, और 6:30 समय होगा पूरा समाचार का। तो आइए आज की इस भोर की बेला को आरंभ करते हैं सनातन धारा इस प्रोग्राम से, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं।
4: आइए सुनिए श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।
5: निगम काल पतरो गलिताम फलाम, निगम काल पतरो गलिताम फलाम, सुख मुखादमृत दवसान्युताम, सुख मुखादमृत दवसान्युताम, पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाम, मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाम, पिबत भागवतम रसमालयम।
6: नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय भक्ति का स्तोत्र श्रीमद् भागवत पुराण। अनेक दृष्टियों से

श्रीमद् भागवत पुराण का स्थान अन्य सभी पुराणों में सबसे ऊंचा है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं जिनके आधार पर आगे के कवियों ने बहुत सी रचनाएं की है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी है। यह पुराण होते हुए भी काव्य संपन्न, सौठवन संपन्न और ऐतिहासिक ग्रंथ के समान है। इसका श्रवण पाठन अति पवित्र और परम उपयोगी है। इसमें गंभीरता इतनी है कि कहा जाता है कि विद्यावक्ता भवितम परीक्षितः, अर्थात विद्वानों की परीक्षा भागवत में ही होती है। सनातनियों का विशेष है कि इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को ईश्वर्य का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसके पढ़ने से मनुष्य को निश्चय हो जाता है कि इस संसार को रचने और पालन करने वाले कोई सर्वव्यापक शक्ति है। इसी शक्ति को लोग ऐश्वर्य, ब्रह्म आदि अनेक नामों से अभिहित करते हैं। श्रीमद् भागवत का स्वरूप भी इस ग्रंथ के प्रारंभ में वर्णित कर दिया गया है। यह इस प्रकार है, जो दूसरों की बढ़ती देख करके दाह नहीं करते, ऐसे साधु जनों का सब प्रकार में सर्वता रहित परम धर्म और वह जानने योग्य ज्ञान वर्णित है, जो वास्तव में सब कल्याण का देने वाला है और अधि भौतिक, अधि दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के तापों का मिटाने वाला है। ऐश्वर्य का ज्ञान और इसमें भक्ति का परम साधन, ये दोनों पदार्थ जब किसी प्राणी को प्राप्त हो गए तो कौन सा पद रह गया जिसके लिए मनुष्य कामना करें, और ये दोनों पदार्थ श्रीमद् भागवत में ही पूरा मात्र है, पूरा मात्र प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य भगवान को पढ़े या सुने नहीं, इसमें श्रद्धा न हो, तब तक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कितना बड़ा विशाल समुद्र है। इसके पढ़ने से मनुष्य को विमल ज्ञान हो जाता है। परमात्मा प्राणी प्राणी में बैठा है, वह समस्त संसार का संचालन करता है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर वह अधर्म करने से डरता है, क्योंकि दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले को कष्ट पहुंचाने समझना लगता है। इसका ज्ञान होने से मनुष्य सत्य कर्म धर्म में स्थित हो जाता है, स्वभाव से ही दया धर्म का पालन करने लगता है और किसी अहिंसा प्राणी के ऊपर वार करने से इच्छा नहीं रखता। मनुष्य में परस्पर प्रेम और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव स्थापित करने के लिए इससे बढ़ करके आज के युग में कम ही साधना मिल सकते हैं। हाँ, एक शर्त अवश्य है कि पढ़ने या सुनने वाले विश्वास के साथ पढ़ें या सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण में जन्म से लेकर के मृत्यु तक सब कुछ वर्णन किया गया है। आत्मा, परमात्मा, और आत्मा किस योनि में जाता है,

किस प्रकार से कर्म करता है और जो कर्म करता है तो किस प्रकार से उन कर्मों का भोग करता है। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस शरीर को त्यागना पड़ता है और यमराज के दूत ये प्राण को लेकर के जाता है। तब वहां पर जब जाता है तब उसका कर्म का प्रभाव आ जाता है। चित्रगुप्त सारा कर्म का वर्णन करता है, तब पता चलता है कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा और कितने प्रकार का नरक है, ये सब कुछ उसके कर्म पर निर्धारित है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत उत्तम से मोक्ष प्राप्ति ग्रंथ कहा गया है। जितने लोग भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं तो उसमें दया, भक्ति, मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। ये मायावी संसार को त्यागने के बाद जो फल प्राप्त होता है वो कोई अन्य ग्रंथ नहीं है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और यह साल तो अधिक मास चला रहा था और श्री अधिक मास में जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहा है, जो अभी अभी चल गया, उसमें अगर आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों का श्रवण किया तो अति उत्तम फल प्राप्त होगा। अन्य पुराणों की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण की प्राचीन है। प्राश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण बहुत से भारतीय भी पुराणों के संबंधित में असंबद्ध बातें कहते हैं। वे ऐसे लेख की कल्पना भी उड़ाने समझने लगते हैं। पुराण की गाड़ी अनुशील के अभाव में उन्हें उनके अंदर कराई अच्छी बात नहीं दिखाई देते। इसलिए जब भी हम पुराणों को श्रवण करें तो उनमें से जो अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा और जब बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा फल मिलता है। इसलिए भागवत को श्रवण करने के बाद मनुष्य को उस भागवत ज्ञान को अपने जीवन में अच्छाई के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए श्रवण किया जाता है। और जो ज्ञानमयी बातें होती है उन सभी बातों को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कथा स्मतेनम कविता महीयस्याम सिहातस्य लोकेषु यश परशुनाम विज्ञानम वैराग्यम विलक्षमाहम विदेहम वचो विभूतिम च परमार्थेत। श्रीमद् भागवत के अनन्य पुराणों के निम्नलिखित पांच लक्षण है। सर्गस्य प्रति सर्गस्य वैशो वंतारिक्तम च वंशानुचरितम चेते पुराण पंच लक्षणम। इसके अतिरिक्त पांच और लक्षण बड़ा दिए गए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा है, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पुरुषमामत्तय मन्वंतरे शकुनिम कथाः किनोरोधम मुक्ति सारसयः। अर्थात इस भागवत पुराण में सर्म विसर्ग स्थान पोषण अति मन्वंतर इश्वाकु कथा निरोध मुक्ति और आलक्ष इन 10 लक्षणों का वर्णन है। इनमें जो 10वां तत्व आश्रय है उसी का ठीक ठीक निश्चित करके लिए जाते हैं और उसको श्रोताओं को सुनाया जाता है। श्रुति से कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। यह पुराण समस्त

0: समस्त श्रुतियों का सार है। महाभारत का तत्व निकार्यक है तथा ब्रह्म सूत्र का भाव्य है। अनेक स्थानों पर श्रुतियों के प्रसिद्ध मंत्र टोड़े से शब्दार्थ के साथ यहीं संग्रहित किए गए हैं। ब्रह्म और आत्मा की एकता का प्रतिपादन प्रधान विषय तथा इसी निर्माण का एकमात्र उद्देश्य होने के कारण यह पुराण बहुत ही विद्वतापूर्वक तर्क लेकर के सुनाया गया है। इसीलिए श्रीमद्भागवत महापुराण को श्रवण करने से मनुष्य आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।
2: KHz यह है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
4: तो श्रोताओं, अभी हम सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य सुपाल मिश्रा जी को हम धन्यवाद देते हैं। देखते ही देखते सवेरे के 6:20 यहाँ पर होने को है। और चले, यहाँ पर कहते हैं ना कि हर एक क्षण जो होता है अपने आप में बहुत ही खास होता है, बहुत ही विशेष होता है। और कभी भी अपने पलों को हमें गंवाना नहीं चाहिए, समय को गंवाना नहीं चाहिए, समय का सम्मान सदा करना चाहिए, क्योंकि समय अपने आप में जीवन की एक ऐसी पूंजी है। अगर गंवा देते हैं तो जीवन में बहुत कुछ हम खो देते हैं। और जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता है, समय भी उसका सम्मान नहीं करता है। तो समय रहते समय पर सभी कार्यों को करना बहुत ही आवश्यक होता है। और जो भी इस समय को गंवा देता है वो अपने आप में जो है जीवन में अपने आप को फिर आगे बढ़ने के लिए कितना भी प्रयास कर ले, कठिनाई तो आती ही रहती है। और कठिनाइयाँ तभी आती है जब हम सही समय पर सही कार्य को नहीं करते हैं। इसलिए जीवन में एक प्लानिंग होना बहुत आवश्यक है। जीवन में जो है किस चीज़ को हम किस तरह से करते हैं, अगर सोच समझ कर विचार कर अगर हर एक कार्य को हम करें तो जीवन में कभी भी निराशा हमारे हाथ नहीं लगती है। और आशा ही आशा हमारे जीवन में होती है। और जहाँ पर आशा होती है वहाँ पर जो है बुराई कभी भी हमें छू नहीं पाती है। तो चलिए, आप भी सभी बुराइयों से दूर रहे ऐसी कामना हम करते हैं। और आज का दिन ही नहीं बल्कि पूरा जीवन जो है आप सभी के लिए बहुत अच्छे से व्यतीत हो। और चलिए, इस खूबसूरत गाने के साथ कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं।

जी हाँ, प्यार को बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्यार तो प्यार है और प्यार जो है ज़िंदगी की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। तो चलिए, नया दिन निकल चुका है, नए दिन के साथ भोर की बेला इस कार्यक्रम में आपका प्यार भरा साथ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं 6:30 के पूरे समाचार की ओर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं और हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में। तो ऐसे ही साथ जुड़े रहिए रेडियो मॉरिशस पर। धन्यवाद।

नमस्कार, पहली जुलाई 2026 बुधवार का दिन। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करता है। इसके तहत देश की किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकेगी। समन 7 दिनों में जारी होगा और सुरक्षा आदेशों की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। ऊर्जा मंत्री पत्रिका से आवेदन के अनुसार CWA पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपए बकाया है, जिसमें 2.92 बिलियन रुपए पुराने बकाया शामिल हैं। 30 जून 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में CWA ने 755 मिलियन रुपए का घाटा दर्ज किया। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर एक वर्ष के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जिनके अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए। मंत्री अशोक सुबों के अनुसार सभी डॉक्टर विधिवत पंजीकृत हैं और उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जांच करना है। मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की G2G समझौते पर बातचीत जारी। STC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्ष रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा हो रही है, जिसमें मूल्य निर्धारण, मुद्रा और गुणवत्ता शर्तें शामिल हैं। मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों और फ्रैक लागत बढ़ने से देरी हुई है, लेकिन समझौता जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। किलियान एम्बापे ने वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला पराग्वे से होगा। और लाहौर के पास एक निजी ट्यूशन सेंटर की इमारत की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद राहत कार्य जारी और अधिकारियों ने जांच शुरू करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को देखते हुए राज्यसभा में बहस किया गया डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 पीड़ितों की सुरक्षा को काफी मजबूत करने का प्रावधान करता है। ये विधेयक आज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए घरेलू हिंसा के दायरे का विस्तार करता है। प्रमुख कदमों में से एक ये है कि अब कोई भी पीड़ित शिकायत दर्ज कराने के लिए देश के किसी भी पुलिस स्टेशन

0: में जा सकेगा। पुलिस का ये कर्तव्य होगा कि वे शिकायत दर्ज करें और घटना कहीं भी हुई हो बिना किसी देरी की जांच शुरू करें। ये विधेयक अदालतों के लिए आरोपी को समन भेजने की समय सीमा को 14 दिन से घटाकर 7 दिन करने का भी प्रावधान करता है। साथ ही हिंसा के आरोपी के व्यवहार का आकलन करने के लिए सुरक्षा आदेशों यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की समीक्षा हर 3 महीने में की जाएगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेंडर इक्वालिटी तथा परिवार कल्याण मंत्री आर्याना वोमारी के भाषण का एक अंश पेश है। विवरण याचना मिश्रा का है।
1: En cas de manquement à une ordonnance d'abus domestique signalée à un poste de police, l'officier responsable du poste indépendamment.
2: यदि किसी पुलिस स्टेशन पर दर्ज घरेलू हिंसा का कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं हो तो उस स्टेशन के अधिकारी को हिंसा की शिकार महिला का रिपोर्ट दर्ज कराना ही होगा, चाहे ये हिंसा कहीं पर भी हुई हो, चाहे रिपोर्ट लिखने वाले का पता कहीं का भी हो। बिना समय गवाए जांच जारी की जानी चाहिए। महिला कहीं पर भी जाकर किसी भी जगह के पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इससे पहले हिंसा का शिकार जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन में जाता था, यदि वो उसका इलाका न हुआ तो उसे वहां से भेज दिया जाता था। अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। ट्राइब्यूनल को 14 के बदले अब 7 दिनों में ही आरोपी को पेश कराना होगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर की अवधि वर्तमान कानून में 2 सालों का है, लेकिन धारा 8(4) के अनुसार ट्राइब्यूनल अब से हर 3 महीने में एक जांच की मांग करेगा ताकि हिंसा करने वाले के बर्ताव पर नजर रखी जा सके।
1: Le tribunal, au moment d'émettre l'ordonnance, demandera un réexamen périodique tous les 3 mois pour évaluer le comportement de l'auteur des violences.
0: डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। घरेलू हिंसा के मामलों में अब पीड़िता को अपने घर और बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ये जिम्मेदारी आरोपी की होगी। अदालत आरोपी को घर से बेदखल करने का आदेश दे सकती है या उस पर पीड़िता के लिए वैकल्पिक आवास का खर्च उठाने की बाध्यता लगा सकती है। ये विधेयक हिंसा करने वालों के पुनर्वास के लिए भी कदम निर्धारित करता है। अदालत मनोवैज्ञानिक परामर्श अनिवार्य करने का आदेश दे सकती है और इस निर्णय का पालन न करने पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
2: यदि साथ रहना मुश्किल हो तो हिंसा करने वाले को घर या फिर उस जगह से जाना पड़ेगा और न कि हिंसा के शिकार व्यक्ति को। धारा 13(4) के अनुसार महिला को अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, घर बार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके या उसका साथ ही हिंसक हैं। ट्राइब्यूनल हिंसा करने वाले को हिंसा के शिकार व्यक्ति को बसेरा प्रदान करने का आदेश दे सकता है। जिसने खतरा पैदा किया है या उसे बढ़ाया है, ये उसकी जिम्मेदारी है और न कि खतरे में जी रहे व्यक्ति की। एक इंटरवेंशन ऑर्डर भी जारी होगा जो हिंसक व्यक्ति के बर्ताव में सुधार के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि यदि व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो बाद में ऐसा ही बर्ताव करेगा। ट्राइब्यूनल मंत्रालय के साइकोलॉजिस्ट द्वारा एक मानसिक परीक्षण की मांग भी कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर के साथ इंटरवेंशन ऑर्डर जारी करने का अधिकार भी अदालत को होगा, जिससे हिंसक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से एक प्रोग्राम के तहत अपने बर्ताव पर काम करना पड़ेगा। यदि व्यक्ति अदालत में पेश न हो तो इसके लिए जुर्माना ज्यादा से ज्यादा ₹50,000 का है।
1: Le manquement à comparaître est passible d'une amende n'excédant pas 50,000 rupees.
0: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी CWA पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपए का बकाया है, जिसमें से 2.92 बिलियन रुपए पुराने बकाया यानी आरियर्स के रूप में है। ये आंकड़े कल मंगलवार 30 जून ऊर्जा मंत्री पत्रिका कासियावादेन द्वारा सांसद अविनाश राम कलावन के एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में संस्था के वित्तीय स्थिति के बारे में साझा किए गए। मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि 30 जून 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए CWA ने 755 मिलियन रुपए का घाटा दर्ज किया है। इस स्थिति के मुख्य कारणों में जनवरी 2012 के बाद से पानी की दरों में संशोधन न होना और बिजली की बढ़ती लागत आदि शामिल है। मंत्री पत्रिका कासियावादेन को सुनते हैं।
3: La CWA m'informe, monsieur.

0: डब्ल्यूए ने सूचित किया कि 25 जून 2026 तक ठेकेदारों, अन्य संस्थाओं, सप्लायरों के लिए बकाया रकम 697 मिलियन रुपए की है। इसमें से 470 मिलियन रुपए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिए जाने बाकी हैं। ये कुछ सालों का बिजली का बिल है जो जमा हुआ है।
1: मंत्री पत्रिका सेवादेन ने आगे बताया कि एक क्यूबिक मीटर पानी की उत्पादन लागत 24 रुपए है, जबकि सीडब्ल्यूए को बेचे गए प्रति क्यूबिक मीटर पानी से औसतन केवल 14 रुपए ही प्राप्त होते हैं, जिससे प्रति क्यूबिक मीटर 10 रुपए का घाटा होता है। मंत्री ने पुष्टि की कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग करने वाले क्षेत्रों के लिए पानी की दरों में संशोधन आने वाले महीनों में किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए जनता को आश्वस्त किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को इस कदम से बाहर रखा गया है। उनको सुनते हैं।
2: Je souhaite également attirer l'attention de cette assemblée sur le cas de certaines entreprises.
0: मैं सभा का ध्यान उन संस्थाओं की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जो सीडब्ल्यूए का पानी का प्रयोग कारोबार के लिए करते हैं। कुछ मामलों में एक बोतल के पानी का दाम असल में 3 से 5 सेंट का ही होता है, लेकिन हम जानते हैं कि मंडी में पानी की बोतल का दाम क्या है। तो ये सवाल करना जायज है कि ऐसी कंपनियां किस प्रकार जनता के लिए पीने योग्य पानी को बेच रहे हैं। पानी के प्रयोग को लेकर कोई असमानता न हो, ये देखना हमारी जिम्मेदारी
2: है।
1: समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिन्हें एक साल के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया है। इन डॉक्टरों के अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए थे। ये जानकारी कल राज्यसभा में सांसद आश्रय रामदास के एक प्रश्न के उत्तर में संबंधित मंत्री अशोक सुभो ने दी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये डॉक्टर कानून के प्रावधानों के अनुसार विधिवत पंजीकृत हैं। उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जाँच करना और दिव्यांग व्यक्तियों का मूल्यांकन करने के लिए मेडिकल बोर्ड में बैठना है। अशोक सुभो ने यह भी कहा कि इनमें से कुछ चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो मेडिकल ट्रिब्यूनल में भी बैठते हैं। वे आवेदकों के मामलों का मूल्यांकन उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार करते हैं।
3: In the medical board, these are medical practitioners.
0: मेडिकल बोर्ड में चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवर ही बैठते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। कानून में ये अनिवार्यता है कि मेडिकल ट्रिब्यूनल में बैठने वाले डॉक्टर को मामले के अनुरूप उसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होना चाहिए।
3: The respective specialist of the case being assessed.
1: राज्यसभा में ही मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को लेकर हो रही G2G यानी सरकार से सरकार समझौते पर भी चर्चा हुई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन साल की शुरुआत से ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्री माइकल सिक्वेन ने कल सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में पुष्टि की कि जुलाई के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इस समझौते के मुख्य बिंदुओं में शामिल है 5 साल का रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट, मूल्य निर्धारण, मुद्रा संदूषण संबंधी क्लोज और मात्रा में छूट की शर्तें। मंत्री ने स्वीकार किया कि वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति और पिछले कुछ महीनों में समुद्री फ्रेट की लागत में वृद्धि के कारण बातचीत में देरी हुई है। अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ संभावित समानांतर वार्ताओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार भारत के साथ प्रतिबद्धता हो जाने के बाद कहीं और बातचीत करना न तो उचित है और न ही नैतिक। हालांकि माइकल सिक्वेन ने यह भी कहा कि इस बीच देश में पेट्रोलियम की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मंत्री माइकल सिक्वेन को सुनते हैं।
0: प्रस्तावित G2G समझौता मॉरिशस को रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, द्विपक्षीय सहयोग मजबूत होगा, वैश्विक संकटों के दौरान सप्लाई को लेकर ज्यादा स्थिरता आएगी, अदायगी के लिए ज्यादा आसानी होगी, दीर्घकालिक अनुमान, प्रिफरेंशियल बर्ताव और तकनीकी सहयोग तथा क्षमताओं का विकास भी होगा। हमें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक कि मंडी में स्थिरता वापस न आए और दाम नियमित न हो।
3: We have to wait for some time till the international market stabilizes and the price volatility normalizes.
1: अन्य खबरों में, सर्दियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। ठंडी हवाएं, घर के अंदर चलने वाले हीटर और शुष्क वातावरण हमारी आंखों की नमी को

0: ओखा लेते हैं, जिससे आंखों में जलन, लालिमा और सूखापन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें और कौन से उपाय अपनाएं, इस पर अधिक जानकारी डॉक्टर विदेश तूफानी दे रहे हैं, जिनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने। विवरण याचना मिश्रा का है।
1: Et en ce moment-ci, quand on a un changement des temps comme ça, nous gagnons une conjonctivite virale un petit peu, hein, un petit peu à la hausse.
2: जब मौसम बदलने लगता है तो कंजंक्टिवाइटिस के मामले काफी बढ़ जाते हैं। परिवार में एक दो तीन सदस्यों को ये होता है तो वे अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज पाने जाते हैं। सावधानी जरूरी है, हाथ को साफ रखना, आंखों को न खुजलाना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना ताकि संक्रमण से लड़ा जा सके।
0: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन FCC के महानिदेशक तित्रुदेव दाऊदारी ने मॉरिशस फुटबॉल के प्रबंधन और उसके प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। बोट्स की भूमिका पर समर्पित एक फोरम के दौरान 30 जून 2026 उन्होंने केप वर्दे का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि केप वर्दे एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या मॉरिशस की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी उसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिफाई किया है बल्कि वहाँ अपने देश का गौरव भी बढ़ाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि मॉरिशस में फुटबॉल के क्षेत्र में भारी निवेश किए जाने के बावजूद देश अभी तक उस स्तर का प्रदर्शन क्यों नहीं हासिल कर पाया है। उनके अनुसार संस्थानों के भीतर जिम्मेदारियां उन लोगों को सौंपी जानी चाहिए जो सक्षम और योग्य हों।
2: रुआंडा, कैप वर्द, बोत्सवाना और सेशेल्स, आप ही सवाल पूछें कि ये सभी देश हमारे ऊपर क्यों हैं? क्योंकि वहाँ जो संचालन करते हैं बोर्ड और संस्थाओं में, उन्हें एहसास है कि उनके हाथों में देश की जिम्मेदारी है। इतना निवेश स्पोर्ट्स पर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हम वर्ल्ड कप के लिए कभी क्वालिफाई नहीं हुए। जबकि कैप वर्द, जहाँ की आबादी हमसे आधा कम है, वे दिल से देश के लिए खेल रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं। ये कई साल पहले से किए गए कार्यों का परिणाम है। वे अपने देश के लिए कटिबद्ध हैं। उनकी सोच ही हर स्तर पर अलग होती है। CBI में भी हमसे वे आगे हैं, कोई चौंकाने वाली बात ये नहीं।
3: At all levels, person qui dans CBI de Tlaon.
0: अब फुटबॉल की बात करें तो किलियान एम्बापे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर एक तरफा जीत दर्ज की और अंतिम 16 के दौर में पाराग्वे के खिलाफ अपना मुकाबला पक्का कर लिया है। उधर कल खेले गए मैच में अर्लिंग हालान ने 86वें मिनट में निर्णायक गोल करके नॉर्वे को आइवरी कोस्ट के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई, जिससे अब वर्ल्ड कप के अंतिम 16 दौर में ब्राजील के खिलाफ एक बेहद दिलचस्प मुकाबला तय हो गया है। और अभी मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मैच चल रहा है, जहां मेक्सिको की जीत 2-0 से हो रही है। मेक्सिको सिटी में खराब मौसम के कारण मैच एक घंटे की देरी से शुरू हुआ। सह मेज़बान मेक्सिको ने अब तक अपने तीनों मैच जीते हैं। इस मैच का विजेता सोमवार को अंतिम 16 के दौर में इंग्लैंड या डीआर कोंगो का सामना करेगा। और विदेश की अन्य खबरों में, लाहौर के पास एक इमारत की छत ढहने से 14 बच्चों की मौत हो गई। ये घटना पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक निजी ट्यूशन सेंटर में हुई। हादसे वाली जगह से निकाले गए बच्चों में 10 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक जाँच के तहत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अंत में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह देश के दक्षिणी ढलानों और ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाइयों पर रह रहकर हल्की बरसात होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्व

0: विलगुनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर और शाम 5:41 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कादर कुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय सुबह के 6:48 हुए हैं। थोड़ी ही देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बिनो अपोजिट रिविया में 44 साल के 44 साल के श्री नित्यानंद सिंह नायक हरे, जो नीतीश कोलो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल गुरुवार को दिन के 1:30 बजे उनकी माँ श्रीमती तारा नायक होरे के घर गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बिनो अपोजिट रिविया से उठाकर शुबैल की शमशान भूमि ली जाएगी। Permission tomorrow at 1:30. Route de Trébon number 4 Vakwa me 63 saal ke 63 years old ke Shri Anirao Arjun Balu, jo Anirao naam se bhi jane jate the, ki mrityu ho gayi hain. Unke arthi aaj subah 9 baje unke ghar Route de Trébon number 4 Vakwa se utha kar 3 mail ki shmshan bhumi di jayegi. Permission today at 9 am. रामदीन लेन ओकुले में 53 साल के 53 साल के श्री हेमराज गुलोरी, जो जोजो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे उनके घर रामदीन लेन ओकुले से उठाकर बिगहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। शाही रोड मोटाइन ब्लॉश में 62 साल की 62 साल की श्रीमती सुबा लक्ष्मण, पैदाइशी नाम उबाई और जो सुबा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री यशदेव लक्ष्मण के घर शाही रोड मोटाइन ब्लॉश से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। जगन्नाथ रोड रिविया जोहोंपा में 81 साल के 81 साल के श्री जयकरण बिसुन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 उनकी पत्नी श्रीमती फामिला लोहर के घर जगन्नाथ रोड रिविया जोहोंपा से उठाकर बेलमो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। केदुलेन तयाक में 55 साल के 55 साल के श्री अमुगम मुत्यान, जो सुबैन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती वानिसा मुच्यान के घर के दुलेन तयाक से उठाकर सुयाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रा रोड पुचित जुदी में 51 साल की 51 साल की श्रीमती मधुमती बिसेसर, पैदाइशी नाम हीरा और जो मधु नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पति श्री धर्मदेव राकेश बिसेसर के घर रा रोड पुचित जुदी से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। कौंडीला श्रमिक ग्रीनियर में 93 साल की 93 साल की श्रीमती पुष्पावती शिवदयाल, पैदाइशी नाम भगन और जो मानन नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। वे पहले प्रिंट रोड सुरीनाम रहती थी। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी बेटी श्रीमती शोभा बाहो के घर कौंडीला श्रमिक ग्रीनियर से उठाकर कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। सिटे नंबर 1063 बुटिक यूनियन वेल में 77 साल की 77 साल की श्रीमती राधा अजोधा, पैदाइशी नाम प्रातुब और जो राधा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रोशन अजोधा के घर सिटे नंबर 1063 बुटिक यूनियन वेल से उठाकर थ्वा बुटिक की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30। सुबादौ लेन लिगीबीज बाय में 61 साल के 61 साल के श्री सुबिराज जुरामन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर सुबादौ लेन लिगीबीज बाय से उठाकर पाई की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12 PM। मामजेल जान गुडलैंड्स में 46 साल के 46 ईयर्स ओल्ड के श्री विश्वादत्त किस्तो जो विनोद माजो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अंजू किस्तो के घर मामजेल जान गुडलैंड से उठाकर बुआगोश गुडलैंड की शमशान भूमि दी जाएगी।

0: Carnegie Commission today at 1:30. Railroad Valley de Prat mein 77 saal ke 77 years old ke Shri Somdev Hukum, जो सोमदेव मौशंदीले नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनीता हुकुम के घर रायरोड वाली दिप्रैत से उठाकर सिपाही भोईले वाली दिप्रैत की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 2 PM. जूडी वादुलीन सितियम मिल त्रियोली में 79 साल के 79 years old के श्री जयराज जोदिगादु, जो जेरी नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज सपहर 3 बजे उनके घर जुदीवादु लेन सितियम मिल त्रियोली से उठाकर बुआ मौशों की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रमिशन टुडे एट 3 PM. जुवांस दिपिने में 74 साल की 74 years old की श्रीमती परामा कृष्णामा, पैदाइशी नाम नारायण स्वामी और जो रूपा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थिक कल गुरुवार को दिन के 2 बजे उनके घर जुवांस दीपिने से उठाकर घन रोजाली दीपिने की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रमिशन टुमोरो एट 2 PM. गांधी रोड लालमाटी में 66 साल के 66 years old के श्री रवीन गजाधर, जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सपहर 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती उर्बिरजा पिटकी गजाधर के घर गांधी रोड लालमाटी से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रमिशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है.
1: नमस्कार, खेल समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत है. शुरू करते हैं इससे वर्ल्ड कप के साथ एक और मास्टर क्लास परफॉर्मेंस, अद्भुत परफॉर्मेंस फ्रांस और उसके कैरिस्मेटिक स्ट्राइकर किलियान एम्बापे की ओर से. उधर अर्लिंग अलॉन्ड भी हर मैच में स्कोर करता आ रहा है और नॉर्वे ने बेस्ट ऑफ 16 का रास्ता खोल पाया. फ्रांस 3-0, लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड खतरे में है. किलियान एम्बापे का डबल रहा, मतलब एम्बापे ऑल टाइम लिस्ट में मेसी से केवल 1 गोल पीछे और इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट के लिए दोनों बराबर 6 गोल पर हैं. फ्रांस का तीसरा गोल बाकोला ने स्कोर किया. फ्रांस के स्ट्राइकरों के सामने स्वीडन की टीम दंग रह गई. ऊपर से स्पिरिट, यूनिटी, सब कुछ देखने को मिले इस मैच में फ्रांस के साथ. माइकल ओलिजे के 2 पास पर 2 गोल बने. अगला मैच पाराग्वे के खिलाफ होगा. फ्रांस के लिए ब्लू जिस तरह से खेल रहे हैं, बाकी टीमों को डरना होगा. नॉर्वे ने भी इतिहास रचा. पहली बार के लिए नॉकआउट में जीत पाई. वाइकिंग रो सेलिब्रेशन जारी है. मार्टिन ओडेगार्ड ड्रम पर था. नॉर्वे ने 2-1 से आइवरी कोस्ट को हराकर अपना मार्ग प्रशस्त किया. विनिंग गोल और कौन, अर्लिंग अलॉन्ड का रहा. अगला मैच एक ब्लॉकबस्टर रहेगा, ब्राजील वर्सेस नॉर्वे. अस्टेका स्टेडियम अभी फट रहा है. रोका स्टेडियम मेक्सिको और इक्वाडोर वाला मैच खेला जा रहा है. खराब मौसम के कारण मैच 1 घंटे बाद शुरू हुआ. मेक्सिको अपने ऐतिहासिक मेक्सिको सिटी के अस्टेका स्टेडियम में है अपने फैंस के सामने. फर्स्ट हाफ अभी पूरा हो गया है. लगभग 2-0 से मेक्सिको सिटी की मेक्सिको की टीम आगे है. पिनोनेस का गोल रहा. यिमेनेज ने भी गोल स्कोर किया. सो फर्स्ट हाफ के पूरा होने से कुछ मिनट पहले 2-0 से मेक्सिको की टीम आगे है. थोड़ी देर बाद आपको फाइनल रिजल्ट देंगी. आज 6 बजे इंग्लैंड की बारी. सामने होगी अफ्रीका की बहादुर टीम कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और रात्रि के 12 बजे मिडनाइट किक ऑफ बेल्जियम वर्सेस सेनेगल. कल सुबह 4 बजे USA वर्सेस बोस्निया और कल रात स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया. आज के मैचों पर प्रीव्यूज और लेटेस्ट न्यूज RN2 पर 8:30 बजे स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन में जरूर सुनिएगा. फ्रांस न्यूज, टोटनहम हॉटस्पर और वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच पोर्टुगल के इंटरनेशनल मिडफील्डर मैथ्यूस फर्नांडेस के लिए 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग डील पर मंजूरी हो गई है. मैनचेस्टर यूनाइटेड भी फर्नांडेस के पीछे था, पर दाम सुनकर

पीछे हट गया। अभी तक द स्पर्स नए 4 खिलाड़ी साइन कर चुके हैं, अब तुनाली का पीछा करेंगे। आर्सेनल भी पेरिस सेंट जर्मेन के इंटरनेशनल स्ट्राइकर ब्रैडली बॉकोला का आशिक है। लिवरपूल ने भी बॉकोला को टारगेट किया है। कल आर्सेनल के एजेंट उसे फ्रांस के साथ खेलने देखने गए थे, निराश नहीं हुए, बॉकोला ने एक गोल भी स्कोर किया। टेनिस, विंबलडन ओपन जारी है, सिंगल्स रिटर्न, सेरेना विलियम्स की वापसी हुई सिंगल्स में, पर माया जॉइंट के खिलाफ हार गई 6-3, 6-7, 6-3 से, मतलब करीबी मामला था। 44 साल बाद 44-year-old सेरेना विलियम्स का शानदार स्वागत किया गया। 4 साल बाद वो वापस आई है सिंगल्स में, वो 44 साल की है। कल ईगा श्वातेक ने टाउनसेन को हराया 2-1 के सेट पर। अलेक्जेंडर वेरेव ने ब्लॉक्स को हराया 3-1 के सेट पर। फ्रिट्स, रिबाकीना, बेरेटिनी, अनिमिसोवा, डेमिनो, मेंसिच, कोस्ट्रिक आदि जीत पाए। आज यानिक सिनर का मुकाबला बोगस से, फिर सित्सिपास वर्सेस जोकोविच, साबालेंका खेलेगी कैसलर के खिलाफ, सियेरा वर्सेस कोकोगोफ, ये कुछ मेन फिक्स्चर्स हैं। क्रिकेट, इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच T20 सीरीज का पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। आयरलैंड सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड में आई है। इधर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची वेस्ट इंडीज को हराकर। दूसरा सेमीफाइनल कल इंग्लैंड वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन। सो वर्ल्ड कप जारी है और वर्ल्ड कप में फ्रांस सबको कुचलता आ रहा है। मेक्सिको से भी बच के रहना होगा। मेक्सिको अभी 2-0 से आगे है इक्वाडोर के खिलाफ और अर्लिंग अलोन के साथ नॉर्वे आगे अपना रास्ता प्रशस्त करता जा रहा है। कहां तक देखेंगे आपको बताएंगे जरूर। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना।
2: बुधवार 1 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के ठीक 7 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात, सुबह का नजराना। इस प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, आपकी सेवा में हम आ गए हैं। सवेरे के 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। तो चलिए, नया दिन ही नहीं, नया महीना है। जून महीना समाप्त हो गया है और आज जुलाई महीने की 1 तारीख है। और हम हमेशा कहते हैं ना कि जैसे कि साल का पहला दिन होता है, तो साल के पहले दिन में हम जो कुछ करते हैं पूरा दिन वही करते हैं, पूरा समय वही होता है और अच्छा होता है। तो जुलाई महीने की 1 तारीख है, तो सोच लीजिएगा अच्छे से कि आज पूरे दिन में आपको क्या करना है, किन बातों को अहमियत देनी है, किन कामों को प्रायोरिटी देनी है, और उस हिसाब से अपने जीवन को आगे ले जाइए। और इन सब के बीच पॉजिटिव रहना मत भूलिए, सकारात्मक रहना मत भूलिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी ही है, ये सकारात्मकता ही है जो हमें जीवन में बहुत दूर तक ले जाती है। जीवन में हमें ऊँचाइयों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करती हैं। और चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है और जीवन में ये जो हंसी है, इसे बनाए रखें, क्योंकि हंसते रहने से, मुस्कुराते रहने से आधी परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाती है। तो चलिए, सुबह का नजराना ये प्रोग्राम है, 2 घंटे तक चलने वाला है ये कारवां, हमारा और आपका साथ रहने वाला है, बहुत कुछ होगा इस 2 घंटे के अंतर्गत। तो शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर चिंतन से आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और चिंतन को आप सुनेंगे डॉक्टर जमन की प्रस्तुति में।
3: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
4: जब आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, पर शासन तंत्र जैसे का तैसा बना रहता है, तब दोनों के मध्य बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। बहुधा यह अंतर एक आकस्मिक परिवर्तन से दूर होता है, जिसे क्रांति कहते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सवेरे के 7:10 होने को है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। सीईबी इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है खासकर आलबियों के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है आलबियों के खासकर मौसलमा राफरे, मौसलमा बेजेराज, मौसलमा बेलवी, मौसलमा उरागन, एवेन्यू विक्ट्री, एवेन्यू सेंट जेरों, एवेन्यू बाउंटी, एवेन्यू अल्बाथ्रोस, एवेन्यू दालिया, एवेन्यू चिलिप, एवेन्यू फ्रांगीपन, एवेन्यू रोज, एवेन्यू उलित और आसपास के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार पहली जुलाई को सुबह के 9 से 9:30 बजे के बीच और दोपहर के 3 से 3:30 बजे के बीच यहाँ पर आज बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही रोज हिल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है रोज हिल के खास कर NHDC कॉलीवे, एवेन्यू मद्रास, एवेन्यू उजिल, मौसलमा सिबन, एवेन्यू रात सितातान, एवेन्यू सीरियस, एवेन्यू लाकों कोड और आसपास के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी आज ही बुधवार पहली जुलाई को सुबह के 9 बजे से दिन के 11 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही रोजिल के इन इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है रोजहिल के खासकर NHDC कॉलोनी, एवेन्यू मद्रास, सेंट उजिल, मौसलमा सिबन, एवेन्यू रात सितातान, एवेन्यू सीरियस, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि इन जगहों पर कल गुरुवार 2 जुलाई को सुबह के 9 से शाम के 5:30 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही फ्लैक के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है फ्लैक के खासकर बुले ब्लॉ, प्लेंदे जैसिंगी, एवेन्यू फ्रांसवा मिटेरॉन, फ्लैक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फ्लैक पुलिस स्टेशन, सिरौली रोड, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 2 जुलाई को दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ सीईबी की ओर से।
2: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

जी हाँ, एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यकीनन जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हम आचरण करते हैं, हमारा उठना बैठना होता है, ये सारी

चीज़ें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे परवरिश को दर्शाती हैं, हमारे जो है अच्छे व्यवहार को दर्शाती हैं, और जो है लोग इसी के चलते तो हमारी कद्र करते हैं। क्योंकि जब हम सामने वाले से प्रेम से बात करते हैं, जब हम सामने वाले को सम्मान देते हैं, तभी तो बदले में हमें भी प्रेम और सम्मान मिलता है ना। कहते हैं जीवन में जो देते हैं वही तो पलट कर आता है। तो बहुत जो है आप लोगों का प्यार हमें मिलता है यहाँ पर, आप लोगों का विश्वास हमें मिलता है, इसके लिए धन्यवाद। सवेरे सवेरे आप सभी इतने प्यार से हमेशा जो है हमारे साथ जुड़ जाते हैं कि मतलब कि कभी कभार हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, आप लोगों को धन्यवाद किस तरह से कहे। तो चलिए दिल से हमारा इस धन्यवाद को स्वीकार करें। और अभी के लिए बारी है आपको बताने की कि अभी रेडियो पर आप कौन कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे। सो आज है 1 जुलाई, जी हाँ, अभी के लिए सुबह का नजराना ये प्रोग्राम चल रहा है। थोड़ी देर में आपके जो है डेडिकेशन हम शामिल करेंगे 7:40 से, तो जिसके लिए फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस सवेरे से ही मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे, और शोक समाचार 8:15 हम लेकर आएंगे आ खेल खेले हम। 8:30 आप मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में सुन पाएंगे कार्यक्रम परिवार नियोजन। 8:50 पर किरण जी से आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को, और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 9:00 आप सुन पाएंगे समाचार, उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रत्ना। 10:00 होगा समाचार, 10:00 के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे भक्ति धारा इस कार्यक्रम को। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी से। 11:00 होगा समाचार, उसके बाद आप सैयदा की पेशकश में सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। दोपहर के 12:00 तेलुगु भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे विश्वा की प्रस्तुति में। 12:30 प्रीति प्रस्तुत करेगी मराठी भाषा में कार्यक्रम। दोपहर के 1:00 आरसी प्रस्तुत करेगी तमिल भाषा में प्रोग्राम। 2:15 से गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 से रोशनी आपका साथ देगी आपकी पसंद इस कार्यक्रम में। 3:00 के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सपेर के 4:00 मराठी भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शीरीष द्वारा। 5:00 खेतीबाड़ी पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फारे की प्रस्तुति में। 5:15 से रोशन और उषा आपका साथ देंगे अंताक्षरी इस प्रोग्राम में। 6:00 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। 6:30 हाका भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे डेविड। 7:00 तमिल भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे सुंदरम द्वारा। 7:30 राजेंद्र प्रस्तुत करेंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम। 7:50 पर नितिन बापू की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी कार्यक्रम गीत गंगा। 8:10 पर रोशनी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम। 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। 9:00 से 11:00 के बीच प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम में। और 11:00 सुनहरे पल इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे गिनीशा की प्रस्तुति में। और 12:00 से कल सवेरे तक जो है आपके लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की, जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इस खूबसूरत गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: कौन? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

कहते हैं वो प्यार ही क्या जो समय के साथ बढ़े नहीं, वो प्यार ही क्या जो हम में सकारात्मक परिवर्तन न लाए, वो प्यार ही क्या जो हमारे भीतर करुणा को न जगाए। क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है जो जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में हमें साहस देती है। प्यार हमें जो है सामने वाले को समझने की क्षमता देती है, और प्यार जो है हर नकारात्मकता को दूर करके हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर देती है। तो बस जीवन के हर शय से प्यार करना चाहिए, जिस काम को हम करते हैं उससे प्यार करना चाहिए, जीवन में हम जो चाहते हैं उससे प्यार करना चाहिए, जीवन में जो लोग हैं उनसे हमें प्यार करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। ऐसा होता है कि घर के कामों में, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, बाहर के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए, कभी कभार हम अपनी देखभाल करना भूल जाते हैं। और जब तक हम अपनी ओर गौर करते हैं, हम अपनी ओर ध्यान देते हैं, तब तक समय हाथ से बहुत निकल गया होता है। तो देर ना हो जाए, समय रहते अपने आप से भी प्यार करें, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखें, वो चीज़ ज़रूर करें, या उन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें, या उन लोगों के साथ समय ज़रूर बिताएं जो आपके जीवन में थोड़ी सी भी खुशी लाते हैं। क्योंकि जितना हम खुश रहते हैं ना ज़िंदगी में, उतनी ही अच्छी चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं। और समय को अहमियत दे, समय कहते हैं बहुत ही बड़ा बलवान होता है।

चलिए, समय बड़ा बलवान और अभी के लिए समय हुआ है आपके डेडिकेशंस का, आपके बर्थडे विशेस का। आज जितने भी हमारे सुनने वाले आपके परिवार के सदस्य अगर अपना जन्मदिन मना रहे हैं, रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो जितने भी जो है लोग शादी के इस पवित्र बंधन में बंध रहे हैं, आप सभी का ये जो जीवन का नया पड़ाव है, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, प्रेम लेकर आए और सफलता लेकर आए, ऐसी कामना हम करते हैं। और चलिए, गीता जी क्यूपिप से हमारा साथ दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी आपके प्यार भरे साथ के लिए। लीला जी बौशेरी से हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी भी आवाज़ जा रही है। और बदलते मौसम के साथ सभी जो है, गले में खराश तो किसी को खांसी तो किसी को जुकाम, तो आप अपना ख्याल रखिए। और चलिए, यहाँ पर एक मैसेज आया है, मुस्कुराना ही खुशी नहीं होती है, उम्र बिताना जिंदगी नहीं होती है, खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखना है दोस्तों का, क्योंकि सिर्फ दोस्त कहने से ही दोस्ती नहीं होती। वाह, बहुत खूबसूरत माला जी, आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए, सुबह सुबह आपके इस मैसेज ने हमारा भी दिन बना दिया। तो चलिए, हमारी और आपकी दोस्ती के नाम अगला गाना हो जाए, ऑलराइट। और चलिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक और मैसेज आया है, प्रणाम सुमी जी, लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल शो, थैंक यू सो मच। ये है ट्रियोले से सूरज शर्मा, सजादा जी। ओके, अगला गाना सभी सजादा परिवार के नाम हम करेंगे। शिवरानी जी ग्रोबोआ से हमारा साथ दे रही है, कह रही सवेरे सवेरे रेडियो ऑन किया तो उन्हें हमारी आवाज़ सुनाई दी और उन्हें बात किया, उन्हें मन किया बात करने का, तो चलिए अच्छा किया आपने फ़ोन किया। ऐसे आप लोगों के साथ के लिए शुक्रिया, क्योंकि आजकल ना हर कोई लाइफ में बिजी है, व्यस्त है, समय निकालना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग कोशिश करते रहते, जब तक लाइन न लगे तब तक फ़ोन करते रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और चलिए, अगला तराना आप सबके नाम, और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे इस डेडिकेशंस के कारवां के साथ।

चलिए एक दूसरे के साथ साथ चलने से, कदम से कदम मिलाकर चलने से जिंदगी का ये जो सफर है वो उतना कठिन नहीं लगता है, उतना मुश्किल नहीं लगता है, सफर आसान हो जाता है। और चलिए यहाँ पर जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से। हैप्पी बर्थडे पोते खुशी के नाम जो लंदन में है, उनके पापा है प्रीतम, मामा है कृष्णी, बहन है जेसिका, 21 साल की हो रही है खुशी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं खुशी। दादी मीला की ओर से निवग्रोव से बधाई आई है पूरे परिवार की ओर से। चाचा है कृष्णन, साथ में है रुशना, और यहाँ पर पूरे परिवार ने आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजा है, खासकर जो है आपकी दादी मीला की ओर से। ओके, और यहाँ पर भतीजी कृष्णी बंधु अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, आपको शुभकामनाएं खासकर आपकी फूफू रेणुका की ओर से, आपकी मामा मानिशा की ओर से, पापा किशन की ओर से। सभी फूफुओं ने आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजा है। रेणुका जी हैं, मीला है, मानती है, कमला जी हैं, सभी गुलाब परिवार, सभी भगवान दीन परिवार, सभी इमृत परिवार और सभी बंधु परिवारों की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं कृष्णी आपको। और चलिए यहाँ पर जन्मदिन के साथ साथ जितने भी लोग अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, आप लोगों को भी हार्दिक हार्दिक बधाई, और आप लोगों की खुशियों में यहाँ पर हम भी जुड़ते हैं। कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं और दुख बांटने से दुख कम होता है। और यही गाना जाता है यहाँ पर, देवी जी आपके नाम कह रहे कि गाना सुनकर सवेरे सवेरे दिल मचल गया। चलिए आप पूरे दिन जो है ऐसे ही खुश रहिए, ऐसी कामना हम करते हैं, और मुस्कुराते रहिए, हमारा साथ देते रहिए।

चलिए, यहाँ पर खुशियाँ ऐसे ही आपके जीवन में बढ़ती रहे ऐसी कामना हम करते हैं। और यहाँ पर अगला गाना सुदेवी जी आपके नाम हम करते हैं, मौका से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शोभा जी वाकवा से हमारा साथ दे रही है, गाना जाता है उनकी ओर से उनके सभी दोस्तों के नाम। ग्रांगप से सुनीता जी आपने भी हमें फ़ोन किया था, आपका फ़ोन रिसीव किया, तब तक आपका फ़ोन उस ओर से कट गया, अफसोस आपसे बात नहीं हुई, लेकिन चलिए आशा करते हैं कि आप सब आप बिल्कुल अच्छी है और हमेशा हमारा साथ देती हैं। विद्या जी यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक मैसेज है, कैसी है आप, हमेशा की तरह गाने बड़े अच्छे हैं। ऑलराइट जीजू धनराज बिसेस अपना जन्मदिन मना रहे हैं। धनराज जी आपको जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपके ब्रदर इन लॉ राज की ओर से। भतीजे अंतिश की ओर से अंकुश है, बहू है मनीषा, आशिमा, हिमेशा, आध्या, आंच, सभी परिवार की ओर से आपको जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर अनिता जी की ओर से जो फ्लिक ऑफ लक से आपको बधाइयाँ भेज रही है। और इसी गाने के साथ जो है डेडिकेशंस का ये सिलसिला समाप्त होने को चला। 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। मिलेंगे हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में। हमारा साथ यूं ही देते रहे, धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के हाथ पे चल पाऊं। नमस्ते, आवाज भोजपुरी में समाचार सुने जाए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ित की सुरक्षा के मजबूत करते हैं। देश के कोनो भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करल जा सकी। समन 7 दिन में जारी हो और सुरक्षा आदेश के हर 3 महीना में समीक्षा करल जाए। ऊर्जा मंत्री पत्रकार सेवादन के अनुसार सिरवलिय परी राज्य के लगभग 3.47 बिलियन रुपया बकाया बाटे, जिसमें 2.92 बिलियन रुपया पुराना बकाया शामिल बा। 30 जून 2025 के समाप्त वित्तीय वर्ष में सिरवलिय 755 मिलियन रुपया के घाटा दर्ज कर ले बाटे। मंत्री बतैलन की पानी के उत्पादन लागत 24 रुपया प्रति क्यूबिक मीटर बाटे, जबकि औसतन बिक्री 14 रुपया में होवेला, जिससे 10 रुपया प्रति क्यूबिक मीटर के नुकसान होवेला। वो ई भी बोलेलन की व्यावसायिक उपयोग खातिर पानी के दर में संशोधन हुई, बकेर घरेलू उपभोक्ता इससे प्रभावित नहीं हुई। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर एक बरिस के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हवंजा, जेकर अनुबंध पिछला महीना ही रिन्यू करल गल बाटे। मंत्री अशोक सुबह के अनुसार सब डॉक्टर विधिवत पंजीकृत बाटे और उनकर मुख्य कार्य बुजुर्ग लोग के घर पर ही जाके जाँच करे के और दिव्यांग व्यक्ति के मूल्यांकन खातिर मेडिकल बोर्ड में बैठक की है। मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पाद के G2G समझौता पर ही बातचीत जारी बाटे। STC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्षीय रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर ही चर्चा हुआ था, जिसमें मूल्य निर्धारण, मुद्रा और गुणवत्ता शर्त शामिल बाटे। मंत्री माइकल सिक्वेन बतैलन की वैश्विक परिस्थिति और फ्रेट लागत बढ़े से देरी होल बाटे, बकीर समझौता जुलाई के अंत ले पूरा हो के उम्मीद बाटे। फुटबॉल के बात करी ले जाते, किलियान एम्बापे वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में सबसे जस्ती गोल करे के रिकॉर्ड अपन नाम कर ले बाटे। फ्रांस स्वीडन की 3-0 से हरा के अंतिम 16 में जगह बनाए ले बाटे, जहां उकर मुकाबला पराग्वे से हुई। कल खेले गल मैच में एरिंग हालान ने 86वें मिनट में निर्णायक गोल करके नॉर्वे के आइवरी कोस्ट के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत दिलैलन, जिससे अब वर्ल्ड कप के अंतिम 16 दौर में ब्राजील के खिलाफ एगो बेहद दिलचस्प मुकाबला तय हो गल बाटे। और अब मेक्सिको और इक्वाडो के बीच मैच चलता, जहां पर ही मेक्सिको के जीत 2-0 से हुआ था। मेक्सिको सिटी में खराब मौसम के कारण मैच 1 घंटा से देरी से शुरू हुआ। ई मैच के विजेता लेंदी के अंतिम 16 के दौर में इंग्लैंड या डीओकोंगो के सामना करी। आर लाहौर के पास एगो इमारत के छत ढह होला से 14 लड़का के मौत हो गल बा। ई घटना पाकिस्तान के लाहौर शहर में एगो निजी ट्यूशन सेंटर में होल। अधिकारी लोग घटना के जांच शुरू कर दिले बाटे और प्रारंभिक जांच के तहत 2 जना के हिरासत में लेवल गल बा।

0: ते देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल अपन ध्यान खातिर धन्यवाद नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आवाजाम मरनी के खबर सुने जा गोल स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बिनुआ पिछले

0: qui est Ada. Au Kerman, Tarana et Kore, qui est Gare Gol, Smith Street, Combe, dans la petite rivière, c'est Otak et Chebel, qui est Chumchan Pumidi, Javaljai. Au route très bon number char va quoi, mais Tin Kuritin Bariske, 63 ans, qui est Anirao Arjun Balu, qui est Anirao Nam, c'est Justi Janet et Jatralanjau Guzar Kalhawan. Au Kermati, Aj Pajirki, Nobaje, au Kerkare, route très bon number char va quoi, c'est Otak et trois mamel, qui est Chumchan Pumidi, Javaljai. Ramdin Lane Okule me Dukori Tira Bariske 53 ans ke Shri Hemraz Gulori Je Zozo Nam se Jasti Janat Chatra Lanchao Guzar Kalhavan Okar Mati Aaj Bhajir Ke 9 Baje Okar Ghare Ramdin Lane Okule Se Utha Ke Bikaha Ke Shmshan Bhumi Le Javal Jai Shai Road Montain Blanche me Tin Kori Du Bariske 62 ans ke Shri Mati Subha Lachman Pedaishi Nam Ubai Arje Subha Nam se Jasti Janat Chatra Lanchao Guzar Kalhavan ओकर माटी आज दिन के एक बजे ओकर पति श्री यसदेव लक्ष्मण के घरे शायर रोड मोताय ब्लांश से उठा के वहीं की शमशान भूमि ले जावल जाए जगन्नाथ रोड रिविय जुरा पर में चार कोरी एक बरिस के 81 ओं के श्री जयकरण बिसुन गुजर गल हवन ओकर माटी आज फजर के 9 बज के आधा ओकर पत्नी श्रीमती प्रामीला लोहर के घरे जगन्नाथ रोड रिविय जुरा पर से उठा के बेलमों की शमशान भूमि ले जावल जाए केदू लेन तयाक में दुकोरी 15 बरिस के 55 ओं के श्री अमुगम मुथियान जिसुबेन नाम से जस्ते जाने ते जाथर लंजाओ गुजर कर हवन कर माठी आज फजर की 10 बजे होकर पत्नी श्रीमती वानिसा मुथियान के घरे केदू लेन तयाक से उठा के सुयाक के शमशान भूमि ले जावल जाए रॉयल रोड पिचित जिदी में दुकोरी 11 बरिस के 51 ओं के श्रीमती मधुमती बिसेसर पैदायशी नाम हीरा आज मधु नाम से जस्ते जाने ते जात्रा लंजाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 11 बजे उकर पति श्री धर्मदेव राकेश बिसेसर के घरे रॉयल रोड पिचित जिदी से उठा के पीतों के शमशान भूमि ले चावल जाए Quand Lila Chemin Grenier met Char Kori Tera Bariske 93 ans, qui est Shrimati Pushpauti Shibdial, Pedashi Nam Bhagan, Aje Manon Nam Sijasti Janet Jatarlan, Jau Guzar Kal Hawan Ukar Mati Ajdin Ki Dubaje Ukar Beti, Shobha Bahu Ke Ghare, Quand Lila Chemin Grenier se Utake Kongopal Shamuni Ke Shamshan Bhumiri Chaval Jai. Cité number 10063 boutique Unionville mein 3 kori 17 baris ke 77 ans ke Shrimati Radha Ajoda Paidashi Nam Pratub aaj Radha Nam se jisse janate chatra lan jao guzar kal hawan ukarmati aaj din ke 1 baj ke aadha ukar beta Roshan Ajoda ke gare city number 10063 boutique Unionville se utha ke 3 boutique ke shamshan bhumi de chawal jaye सुबादल इन निगी बीस पाए में तीन कोरी एक बरिस के 61 ओं के श्री सुबिराज जुरामन गुजर गल हवन उकर माटी आज दिन के 12 बजे उकर घरे सुबादल इन निगी बीस पाए से उठा के पाए के शमशान भूमि ले चावल जाए मामजल शान गुडलैंड में दो कोरी 6 बरिस के 56 ओं के श्री विश्वदत्त किस्तो जे विनोद माजो नाम से जस्ते जानते चात्र रंजाओ गुजर गल हवन उकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा उकर पत्नी श्रीमती अंजू किस्तो के घरे मामजल शान गुडलैंड से उठाकर बुआ रूज गुडलैंड के शमशान भूमि ले चावल जाए रॉयल रोड वाली दिपैत में 3 कोरी 17 बरिस के 77 ओं के श्री सोमदेव हुकुम जी सोमदेव मौशन जिले नाम से जस्ते जानत जात्रा रंजाओ गुजर कर हवन उकर माटी आज दिन के 2 बजे उकर पत्नी श्रीमती अनिता हुकुम के घरे रॉयल रोड वाली दिपैत से उठा के सिपाही भोले वाली दिपैत के शमशान भूमि ले चावल जाए जुदीवादू लेन सत्या मिल त्रियोले में 3 कोरी 19 बरिस के 79 ओं के श्री जयराज जोदिगादू जे जेरी नाम से जस्ते जानते चात्र रंजाओ गुजर कर हवन उकर माटी आज दिन के 3 बजे उकर खरी जुदीवादू लेन सत्या मिल त्रियोले से उठा के बुआ मौशों के शमशान भूमि ले चावल जाए जुवांस देपिने में 3 कोरी 14 बरिस के 74 ओं के श्रीमती पारामा किसनामा पैदाशी नाम नारायण स्वामी अलजे रूपा नाम से जस्ती जानते चात्र लंजाओ गुजर कर हवन उकर माटी काल बिफे के दिन के 2 बजे ओकर घरे जुवांस देपिने से उठा के ग्रांड रोजाली देपिने के शमशान भूमि ले जावा जाए गांधी रोड लाल माटी में 3 कोरी 6 बरिस के 86 ओं के श्री रवीन गजाधर जे अशोक नाम से जस्ते जानते चात्र लंजाओ गुजर कर हवन उकर माटी आज दिन के 3 बजे ओकर पत्नी श्रीमती उर्बिजा पिटकी गजाधर के घरे गांधी रोड लाल माटी से उठा के वहीं की शमशान भूमि ले चावल जाए शोक में डूबल इस सब परिवारों के प्रति हमनी संवेदना प्रकट करते हैं जा
1: ये है रेडियो मॉरिशस

सुबह का नजराना के इस दूसरे घंटे में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें और आइए अभी के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। आलबीओ के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, आलबीओ के खासकर मौसलमा राफरे, मौसलमा बेजेराज, मौसलमा बेलवी, मौसलमा उरागन, एवेन्यू विक्ट्री, एवेन्यू सेंट जेरों, एवेन्यू बाउंटी, एवेन्यू अल्बाथ्रोस, एवेन्यू दालिया, एवेन्यू चिलिप, एवेन्यू फ्रांगीपान, एवेन्यू रोज, एवेन्यू ओलित, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार पहली जुलाई को सुबह के 9 से 9:30 बजे के बीच और आज ही यहीं पर दोपहर के 3 से 3:30 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही रोजहिल के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, रोजहिल के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक NHDC कोलिविये, एवेन्यू मद्रास, सेंट ओजिल, मौसलमा सिबन, एवेन्यू रात सितातान, एवेन्यू सीरिए, एवेन्यू ला कोंकोर्ड, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी आज पहली जुलाई को दिन के 11 बजे के बीच

0: यहां पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी दो जरूरी विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए, बुधवार है और बुधवार के दूसरे घंटे में होता है एक छोटा सा क्विज जो हम हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं, जो हम हमारे लिसनर्स के लिए लेकर आते हैं। और चलिए देखते हैं कि आज के सवाल का जवाब आपके पास है या नहीं। ऐसे तो हर सप्ताह हमारा सवाल बहुत ही आसान ही होता है, उतना कठिन नहीं होता है। तो चलिए आज का जो हमारा सवाल है, आज एक ऐसे महान हस्ती का जन्मदिन है, आज एक ऐसे महान हस्ती का जन्मदिन है जिन्होंने संगीत की दुनिया में, खासकर शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अपना बहुत नाम बनाया है। ये म्यूज़िक डायरेक्टर तो है ही, कंपोज़र तो है ही, साथ ही बहुत अच्छी बांसुरी भी बजाते हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। उस संगीतकार का, उस कलाकार का नाम बताएं जो संगीत से जुड़ा है और उनका आज जन्मदिन है। आपके जवाब जो है 4028085 पर हमें आप दे सकते हैं, या तो फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251705 पर। आज का सवाल मेरे ख्याल में उतना कठिन तो नहीं होगा, लेकिन उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करें इनकी तो ये जो है संगीत से तो जुड़े हैं, लेकिन बॉलीवुड से इनका सीधा नाता नहीं है, हिंदी फिल्मी जगत से इनका सीधा नाता तो नहीं है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में इन्होंने काफ़ी नाम बनाया है। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत में इन्होंने काफ़ी नाम बनाया है और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में इन्होंने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। 1 जुलाई 1938 को इनका जन्म हुआ था अलाहाबाद में। ये म्यूज़िक कंपोज़र डायरेक्टर है और साथ ही बहुत अच्छी बांसुरी भी बजाते हैं। लग रहा है कि आज का सवाल थोड़ा सा कठिन है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक एक भी फ़ोन नहीं आया, नहीं तो ऐसे प्रोग्राम में तो एक ही बार में 8 से 10 फ़ोन बजने लगते हैं। तो चलिए कोशिश कीजिए। थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं। इन्होंने वोकल म्यूज़िक जो है सीखना शुरू किया था अपने पड़ोसी से जब वो महज 15 साल के थे, और बाद में धीरे धीरे जो है बांसुरी बजाने की ओर इनकी रुचि बढ़ने लगी। चलिए, यहाँ पर फ़ोन बज गया, हम देखते हैं कि लाइन पर कौन है और देखते हैं कि क्या जवाब है आपके पास। हेलो नमस्ते।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: कौन है जी?
1: मैं हूँ अमृता।
0: अमृता जी, कैसी है आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल ठीक है अमृता जी। और क्या है जवाब आपके पास?
1: शायद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।
0: चलिए, आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है। कुछ जानती है इनके बारे में, कुछ जोड़ना चाहेंगी?
1: हाँ, उसका संगीत अति सुंदर है, मनमोहन है।
0: ओके,
1: वो हम लोगों को दिल को बहलाता है उसका संगीत में जो मधुरता है
0: जी, क्योंकि ये क्लासिकल संगीत से जुड़े हैं ना।
1: हाँ,
0: शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं।
1: बहुत कहे तो ज्यादा होगा, वो बहुत अच्छा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी आपकी इस कोशिश के लिए। और लग रहा है कि हमें तो लग रहा है कि आज का सवाल थोड़ा सा कठिन है, इसलिए उतने फ़ोन कॉल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। आपने कोशिश की तो बाकी लोग भी जो है कोशिश कर ही सकते हैं। तो धन्यवाद आपको, शुभ दिन हम कहेंगे।
1: मेरी बेटा का जन्मदिन है आज।
0: ओके, आपके बेटे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका नाम क्या है?
1: अश्वान बबी।
0: ओके
1: जी, और हम सब की तरफ से अश्वान बबी का जीवन मंगलमय बीते, सुख शांति बीते, उसका सब मनोकाम पूर्ण होवे।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो सभी की तरफ से अश्वान को धन्यवाद, शुभ दिन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: ओके जी, चलिए आपके बेटे अश्वान को जन्मदिन की आपके बेटे को जन्मदिन की हार्दिक

शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। और चलिए, यहाँ पर अमृता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, आज जन्मदिन है इस महान हस्ती का, इन महान हस्ती का, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। 1 जुलाई 1938 को इनका जन्म हुआ था। ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बांसुरी बजाते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन म्यूज़िक में इनकी काफ़ी रुचि है। इन्हें काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, उनमें से पद्म भूषण है जो इन्हें 1992 में मिला था, वहीं पर पद्म विभूषण से भी इन्हें नवाजा गया था। और बचपन ही से जो है इनके संगीत में काफ़ी रुचि रही है, और शास्त्रीय संगीत में, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। तो चलिए, जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया, यहाँ पर एक मैसेज आया है, पंडित हरिप्रसाद, बिल्कुल सही है, पंडित हरिप्रसाद, लेकिन आपने मैसेज तो भेजा लेकिन जवाब नहीं, मतलब कि बताया नहीं कि कौन है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। चलिए, इस गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, और फिर आपको बता दें कि लगभग 8:30 बजे आप परिवार नियोजन इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। अभी के लिए ये खूबसूरत सा तराना जो है आप सभी के नाम हम करते हैं।

0: और चलिए अभी के लिए समय हुआ है हम बड़े परिवार नियोजन इस कार्यक्रम की ओर, जिसे हम सुनेंगे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार श्रोताओं, हम ये प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से परिवार नियोजन और परिवार कल्याण पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी को भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करना चाहिए। इसी उपलक्ष में आज हम बात करेंगे स्तन कैंसर पर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, जो कि एक गंभीर समस्या है। मॉरिशस में स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे गंभीर कैंसर है और जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार मॉरिशस में 590 महिलाओं के लगभग और 7 पुरुषों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उसी साल में 226 महिलाएं और 1 पुरुष की मृत्यु हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो इन 226 महिलाएं जिनकी मृत्यु हुई थी, उनमें से 65 महिलाएं 35 से 59 साल की हैं, 97 महिलाएं 7 से 76 साल की हैं और 56 महिलाएं 75 साल से ज़्यादा की हैं। स्तन कैंसर का सही टाइम पे डायग्नोज करना उसका इलाज हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला 35 साल से ज़्यादा उम्र की है उनको ज़्यादा रिस्क हो सकता है स्तन कैंसर का और उनको नियमित रूप से स्क्रीनिंग करनी चाहिए। दो तरीके की स्क्रीनिंग हो

देखते हैं। सबसे पहला ऑटो पाल्पेशन, जो कि एक महिला खुद कर सकती है। मासिक धर्म के 10 से 15 दिन बाद आप अपने स्तनों का स्वयं परीक्षण कर सकती है, और कोई भी अबनॉर्मलिटी या कोई गांठ यानी कि लंप हो जिससे आपको दर्द होता हो, या निपल का कलर चेंज हुआ हो, या खुजली इत्यादि दिखाई देती हो, तो आप डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराएं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए ऑटो पाल्पेशन पर, तो आप हमारे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के क्लिनिक पे आ सकते हैं, जहां हमारे डॉक्टर आपको अधिक जानकारी दे सकेंगे। और ये ज़रूरी है कि आप अपने स्तनों के ऑटो पाल्पेशन हर महीने करें। दूसरा तरीका है, आप एक मामोग्राफी करवा सकते हैं। जो महिला 35 साल से ज़्यादा उम्र की है, तो अच्छी बात होती है अगर आप एक मामोग्राफी करवाएं, खासकर अगर आपको अपने छाती में कुछ समस्या दिखाई दे रही हो। अगर सब रिपोर्ट ठीक हैं, तो डॉक्टर आपको 1 या 2 साल के बाद फिर से मामोग्राफी करवाने के लिए कहेंगे। और अगर कोई समस्या है, तो डॉक्टर के सलाह से आपको जल्दी फिर से मामोग्राफी करवानी पड़ेगी। प्रिय श्रोताओं, स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। सही समय पर स्क्रीनिंग होने पर स्तन कैंसर का इलाज भी हो सकता है। मॉरिशस में हम ये देखते हैं कि लोग बीमार होने के बाद ही टेस्ट करवाते हैं, और ऐसे कुछ टेस्ट नहीं करवाते। ज़्यादा उम्र होने पर आपको हर साल जांच करवानी चाहिए, सिर्फ कैंसर का नहीं पर दूसरे मेडिकल कंडीशंस के, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ब्लड टेस्ट इत्यादि। अपने स्तनों का खुद स्क्रीनिंग करते समय आपको इन अबनॉर्मलिटीज़ को देखना चाहिए। पहला, स्तन के आकार या रंग में बदलाव, स्तनों के त्वचा या झुर्रियाँ आना या सूजन होना, निपल्स में कोई परिवर्तन। दूसरे, स्तन का परीक्षण ध्यान से करें। स्तनों में कोई भी असामान्यता या कोई असामान्य चीज़ का जांच करें। स्तनों पर दूध के अलावा खून का निकलना या मवाद या दूसरे रंग का लिक्विड निकलना भी सिम्टम हो सकता है, और आपने अपने डॉक्टर से जांच करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहला लक्षण, ब्रेस्ट में कोई गांठ यानी कि गोसर का आना हो सकता है। बाहों के नीचे भी देखना चाहिए कि कोई गांठ ना हो, और हर गांठ ज़रूरी नहीं है कि कैंसर हो। अगर कोई गांठ हो तो आप घबराएं नहीं और डॉक्टर के पास जाएं जांच के लिए, ताकि आपको पता चले ये कैंसर है या नहीं है। श्रोताओं, कुछ ऐसे कारण हैं जो कि महिलाओं को ज़्यादा रिस्क हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने में, जैसे कि बढ़ते उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। मॉरिशस में आंकड़े के अनुसार 66 यानी कि 66% महिलाओं जिनको कैंसर हुआ था 2024 में, वे 7 साल के उम्र से ज़्यादा की है। दूसरा कारण है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो, तो आपको भी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ये ज़रूरी है कि आप सब प्रिकॉशन लें और समय समय पर स्क्रीनिंग करवाती रहे। तीसरा है, जिन महिलाओं को एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ हो, तो उनको ज़्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर हो सकता है। अगला कारण है, जिन महिलाओं ने लंबे समय तक हार्मोनल ट्रीटमेंट करवाई है, उनको भी ज़्यादा रिस्क होता है। जिन महिलाओं का कोई बच्चा ना हो या 35 साल की उम्र के बाद बच्चा हुआ हो, उनको भी ज़्यादा रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का। जो महिलाएं शराब या सिगरेट लेती हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है। जिन महिलाओं में 12 साल से पहले मासिक धर्म शुरू हो जाता है, या जिन महिलाओं में 55 साल के बाद मेनोपॉज होता है, उनको भी ज़्यादा रिस्क होता है। मोटापा कई बीमारियों का रिस्क बढ़ा देता है। जिन महिलाओं का ज़्यादा वज़न होता है, उनमें स्तन कैंसर होने का संभावना ज़्यादा होता है। जो महिलाएं ज़्यादा शारीरिक गतिविधियां नहीं करती हैं, उनमें कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है। और जिन महिलाओं ने कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स किया है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का

ज़्यादा खतरा होता है। स्तन कैंसर पुरुष को भी हो सकता है, मगर ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। जैसे कि हमने पहले कहा था, पिछले साल 7 पुरुषों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और 1 की मृत्यु हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो और समय अनुसार ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, तो बाद में उसके स्तन को शरीर से अलग करना पड़ेगा ऑपरेशन से, ताकि वो बीमारी दूसरे स्तन तक ना पहुँचे। जिन महिलाओं में एक स्तन को निकाल दिया गया हो, उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रेस, फटीग इत्यादि। और जो लोग कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो कुछ लोगों को उल्टी हो सकती है या वे बहुत कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, रंग में बदलाव आ सकता है, बाल भी झड़ सकते हैं। स्तन कैंसर का रिपल इफ़ेक्ट होता है एक परिवार में, जो कि पूरे परिवार को भावात्मक, वित्तीय और दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जब रोगी चिकित्सा उपचार से गुजरती है, तो परिवार के सदस्यों को अक्सर द्वितीयक आघात होता है। पहला तीव्र चिंता और देखभाल करने वाले को बर्नआउट का अनुभव होता है, जो सीधे रोगी के रिकवरी और परिवार का भलाई को प्रभावित करती है। पति पत्नी अक्सर अपने पार्टनर का खोने का डर महसूस करते हैं, वे भावात्मक थकावट का सामना करते हैं। रोगी के लिए मजबूत बने रहने के लिए अक्सर वे अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। बच्चों और किशोरों में व्यवहार में बदलाव, स्कूल के प्रदर्शन में गिरावट या चिंता देखी जा सकती है, खासकर अगर पारिवारिक संचार टूट जाए तो। अतिरिक्त तनाव या तो रिश्ते को मजबूत कर सकता है या उसमें तनाव पैदा कर सकता है। कभी कभी पति पत्नी के शारीरिक संबंध में समस्याएं पैदा हो सकती हैं या रिश्ते में दूरी या अलगाव हो सकता है। तो इसीलिए हम आपको इन समस्याओं से अवगत करने के लिए आपको जानकारी दे रहे हैं, ताकि इस बीमारी से आप लोग बचें। अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है, तो परिवार वालों को उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और परिवार में संगठन सहायता के भावना होना चाहिए। बच्चों को भी अपने माँ बाप की मदद देनी चाहिए, ताकि जो बीमार हैं उनकी देखभाल में कोई कमी ना रहे। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कैसे हो सकता है? मदिरा एवं धूम्रपान से बचें। शारीरिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करें। जो लोग हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, उनमें स्तन कैंसर और अन्य बीमारी का खतरा कम होता है। संतुलित आहार लें, लावियन रोज का कम सेवन करें और ज़्यादा फल और सब्जी खाएं। शरीर का वज़न कम करें। जो महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम होता है। और रेगुलर चेकअप कराते रहें, इससे ब्रेस्ट कैंसर को 95% तक रोका जा सकता है। हमारे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के क्लिनिक में मामोग्राफी का सेवा उपलब्ध है। आप हमें कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको ब्रेस्ट एकोग्राफी के लिए भी कहेंगे। ये सेवा भी मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन क्लिनिक में उपलब्ध है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमें इन फ़ोन नंबरों में संपर्क कर सकते हैं, 208-9233 या 211-4101। याद रखें कि ब्रेस्ट कैंसर जानलेवा हो सकता है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और शुभ दिन।

तो श्रोताओं, अभी हम जो है सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मिस्टर भोगन ने, तो इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं।

0: और चलिए सुबह का नजराना, ये जो प्रोग्राम है इसे हम आगे ले जाते हैं। आप लोगों का साथ हमें यूं ही मिलता रहे, आप यूं ही हमारा साथ देते रहे।
1: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अजी भूले तो हम भी नहीं हैं, क्योंकि अभी बारी है हमारी धरोहर इस प्रोग्राम के। सवेरे के 8:50 हो चुके हैं, तो चलिए किरण जानकी जी से सुनते हैं इस कार्यक्रम को।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। काल हमने बोलत रही जा कि पहला जुलाई के पोस्टल वर्कर्स डे मनावल जाला, लेकिन इस दिन पर एगो और विशेष दिन मनावल जाला और वो है कनाडा डे। मॉरिशस के बहुत से जनता जाके कनाडा में बस गल हवन जा और हमने के बहुत से विद्यार्थी वहाँ पर पढ़े लन जा, इस वजह से आज इस दिन पर ध्यान देवब जा। पहला जुलाई के कनाडा के जनता लोग कनाडा डे मनावे लन जा। पहली जुलाई 1867 के दिन कनाडा के संविधान तीन गो प्रोविंस के नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक और कनाडा प्रोविंस के कनाडा में शामिल कर ले रहा है। 15 फरवरी के कनाडा अपन झंडा के सम्मानित करेला, लेकिन जैसे कनाडा भर में राष्ट्रीय दिन मनावल जाला, कनाडा दिवस वैसे नहीं मनावल जाला। कनाडा दिवस पर सब व्यवसाय सब दुकान बंद रहेला। अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग रूप से ई दिन मनावल जाला। कहीं की गर्मी के मौसम में ई दिन पड़ेला और बहुत ही त्यौहार जैसन माहौल हुआ पर बन जाला। बॉबिक्यू इत्यादि के साथ पटाखा, पुलझरी और कंसर्ट भी चलेला। लेकिन कुछ बरिस आगे, एगो 4-5 बरिस अगते, ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक आदि प्रोविंस के लोग और सब स्कूल और विद्यालय ई दिन मतलब कनाडा दिवस मनावे से इनकार कर दिले रहलन सा। और एक वजह ई रहल कि हुआ पर एगो ऐसन पुराना स्कूल में जहाँ पर सामूहिक कब्र के पता चल रहल, ओकर खिलाफ सब कोई आवाज़ उठेलक। लगभग 751 सामूहिक कब्र के पता लगावल गल रहल और ई बात से ई पता चलल कि हियाँ पर एगो जमाना में आदिवासी लोग रहत रहलन सा। तो हो ही सकेला कि ई आदिवासी लोग के ही ई सामूहिक कब्र रहल। 2008 में हियाँ पर ऐसन स्कूल पर जांच आयोग बिठावल गल रहल, ई पता लगावे के कि काहे ई लड़का लोग के घरे नहीं लौटी देवल गल और ई लोग के कब्र उस स्कूल में पावल गल। कमीशन एके सांस्कृतिक नरसंहार करार दिले रहल और कनाडा सरकार एकर खातिर 2008 में औपचारिक तौर पर माफ़ी मांगले रहल। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च के 70% जो जनता बा ई स्कूल चलावत रहलन सा, उ लोग ई बात के लेके माफ़ी नहीं मांगले रहलन सा। कनाडियन जनता ई बोलत हवन सा कि कनाडा दिवस मनाए से इनकार करे के मतलब ई नहीं है कि कनाडा के संस्कृति के नकारल जाता, बल्कि उ लोग बोलत हवन जा कि उ लोग अपन जनजाति के चाहे लन जा, अपन आदिवासी लोग से उ लोग के स्नेह बा, उ लोग के प्रति सम्मान बा और यही सम्मान के वजह से उ लोग

अपन देश में पूर्वज लोग संगे होल नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाओ था वंजा, और ई वजह से ई दिन में उन लोग नहीं शामिल होवे चाहा था वंजा। आप जाने रहा कि मॉरिशस एगो ऐसा देश है जहाँ कोनो जनता आगे नहीं रहल, यहाँ पर आदिवासी, यहाँ पर जनजाति नहीं रहल, लेकिन ऐसा बड़ा बड़ा देश में जनजाति और आदिवासी बहुत समय से रहल हवन सा। लेकिन समय के साथ जब आधुनिकता के अपनावत है सा, तो आधुनिक इंसान ये सब जनजाति के घर, उन लोग के जंगल, उन लोग के जो परंपरा बा, एक हटा के, एक मिटा के अपन नवा संस्कृति स्थापित करत हवन सा। और ये अच्छा से दिखबा तो एगो जुर्म है, कहे कि ये जोन मिट्टी बा, ये जोन जमीन बा, बड़ा बड़ा देश में एकर पर सबसे आगे वो जनजाति लोग के अधिकार रहल। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

0: धन्यवाद और नमस्ते आपको भी किरण जी इन सभी जानकारियों के लिए हमारी धरोहर इस कार्यक्रम में। और चलिए इसी के साथ, इस भोजपुरी गीत के साथ आज के हमारे इस सुबह का नजराना प्रोग्राम को हम भी समाप्त करते हैं। सवेरे से आप साथ दे रहे हैं और आज तो 1 जुलाई है, देखते देखते इस वर्ष के 6 महीने बीत चुके हैं, 7वें महीने में हम कदम रख चुके हैं। और चलिए, बहुत कुछ होता है जीवन में जो हम सोचते हैं कर नहीं पाते हैं। अभी भी इस साल को ख़त्म होने में और 6 महीने बाकी है, अभी भी हम कोशिश कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को हासिल करने की जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपने उस हर सपने को पूरा करने की और उन अरमानों को पूरा करने की। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। इस भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्न की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर भी और साथ ही से आप देख पाएंगे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे दोबारा 10 बजे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है विद्यमान, नमस्ते आपको।
2: नमस्कार रत्ना, सभी को नमस्कार। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करता है। इसके तहत देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकेगी। समन 7 दिनों में जारी होगा और सुरक्षा आदेशों की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। पीड़िता को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आरोपी को हटाया जा सकता है या वैकल्पिक आवास का खर्च उठाना होगा। साथ ही मनोवैज्ञानिक परामर्श अनिवार्य होगा, जिसका पालन न करने पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादन के अनुसार CWA पर राज्य का लगभग ₹3.47 बिलियन बकाया है, जिसमें ₹2.92 बिलियन पुराने बकाया शामिल हैं। 30 जून 2025 को समाप्त वर्ष में CWA ने ₹755 मिलियन का घाटा दर्ज किया। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर एक वर्ष के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जिनके अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए। मंत्री अशोक सुबो के अनुसार सभी डॉक्टर विधिवत पंजीकृत हैं और उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जांच करना तथा दिव्यांग व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए मेडिकल बोर्ड में बैठना है। इनमें कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल हैं, जो मेडिकल ट्रिब्यूनल में अपने विशेषज्ञता क्षेत्र के अनुसार मामलों का आकलन करते हैं। मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के G2G समझौते पर बातचीत जारी है। STC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्ष रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा हो रही है, जिसमें मूल्य निर्धारण, मुद्रा और गुणवत्ता शर्तें शामिल हैं। मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों और फ्रेट लागत बढ़ने से देरी हुई है, लेकिन समझौता जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। फुटबॉल की बात करें तो किलियान एम्बापे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर एक तरफा जीत दर्ज की। कल खेले गए मैच में अर्लिंग हालैंड ने 86वें मिनट में निर्णायक गोल करके नॉर्वे को आइवोरी कोस्ट के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। और मेक्सिको और इक्वाडो के बीच मैच चला, जहां मेक्सिको की जीत 2-0 से हुई। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। आज 1 जुलाई बुधवार का दिन है और बिल्कुल हम आ पहुँचे हैं आज की चर्चा कार्यक्रम, हमारे सेहत पर ज़रूरतमंद जानकारियाँ जो बुधवार के दिन हम लेकर आते हैं। और बिल्कुल इस सप्ताह मनाया जा रहा है जुवेनाइल आर्थराइटिस वीक, यानी इस पर अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट सीकेयर यूनिट से आए हुए डॉक्टर करुणागरन, जो हमारे इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान होंगे। वैसे आपको ये भी बताते चले, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पा रहे हैं, MBC के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पा रहे हैं और साथ ही साथ रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। इसी कार्यक्रम को दोबारा से आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत कहते हैं डॉक्टर जी का। डॉक्टर करुणागरन, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स एंड द व्यूअर्स।
1: हाँ जी, और आज के इस कार्यक्रम में जुवेनाइल आर्थराइटिस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर जी, जुवेनाइल आर्थराइटिस क्या है?
2: जुवेनाइल आर्थराइटिस इज अ जो ग्रुप ऑफ डिजीज होते हैं,
1: हाँ
2: जो बच्चों में होता है 16 हाँ साल के पहले वाला उम्र में, 16 ईयर्स के नीचे ये हो जाता है। और इसका डायग्नोसिस के लिए कम से कम 6 हफ्ते के लिए ये डिसीज़ होना चाहिए।
1: अच्छा।
2: तो एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, मोस्टली ये इसको ऑटो इम्यून डिसीज़ बोला जाता है।
1: और डॉक्टर जी, ये बड़े वालों का जो आर्थराइटिस है उससे कैसे अलग रहता है ये?
2: मेनली जो एज ग्रुप से डिफरेंस हो जाता है, लेकिन वो कैरेक्टर्स बड़े वाले जैसे मिल जाता है।

0: पहले इसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता था,
1: अच्छा,
0: अभी इसको जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस बोलते हैं।
1: तो जैसे आप बता रहे हैं ये 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों में होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, रीजन क्या है इस के होने का?
0: जो जैसे नाम में ही है इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब कारण हमें पता नहीं है।
1: अच्छा,
0: और इसका जेनेटिक फैक्टर्स होता है, तो जैसे HLA-B27 जैसे एक जीन एक्सप्रेशन से हो जाता है, और बहुत लोगों को ये ऑटो इम्यून डिसीज़, ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब अपने इम्यूनिटी अपने टिश्यूज़ घुटनों को टिश्यूज़ को फॉरेन समझ के उसको अटैक करे जाता है, तो ऑटो इम्यून डिसीज़
1: होता है। तो इसका लक्षण क्या होता है डॉक्टर जी?
0: तो सिम्टम्स,
1: सिम्टम्स
0: तो जैसे ये बच्चों में ये बहुत कॉमनली लिम्पिंग, जैसे लंगड़ापन चल के आते हैं बच्चे, तो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, तो जॉइंट स्टिफ हो जाता है, दर्द होता है, सूजन हो जाता है, तो ये अर्ली स्टेजेस में। कुछ लोग को रैशेस हो जाता है और बुखार भी हो जाता है, और कुछ लोगों को आँख में लाल हो जाता है, यूवीआईटिस बोले जाता है। तो लेट केसेस में जो डिफॉर्मिटीज से आ जाता है बच्चे।
1: अच्छा, तो यानी जुवेनाइल आर्थराइटिस आँखों को भी असर करता है जैसे आप बता रहे हैं।
0: हाँ, इसमें बहुत वैरायटीज है।
1: अच्छा,
0: तो एक तो बोलते हैं हम ओलिगो आर्थराइटिस। अच्छा, ये बहुत कॉमन टाइप हो जाता है, तो इसमें चार घुटनों से कम डैमेज हो जाता है। सेकेंड टाइप पॉली आर्थराइटिस मतलब 5 or more joints। तो तीसरा सिस्टमिक, ये सिस्टमिक आर्थराइटिस में जॉइंट्स के अलावा इम्यून सिस्टम का लिम्फ नोड, लिवर, स्प्लीन, जो सिस्टमिक ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। देन इसमें यूवीआईटिस, इसका टाइप में यूवीआईटिस आंख को भी अफेक्ट करता है। तो कुछ बच्चों को ये अनडायग्नोस हो जाता है, ये ग्लोकोमा बन जाता है, कैटरैक्ट बन जाता है
1: छोटी उम्र में ही।
0: हाँ हाँ, और विजन लॉस भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। एक और टाइप है उसमें एंथीसाइटिस बोलते हैं, जैसे टेंडन को कैल्सिफिकेशन करता है।
1: ओके,
0: तो और लास्ट टाइप बहुत कम टाइप है, वो सोरियासिस टाइप बोलते हैं।
1: ओके,
0: और कुछ और वैरायटीज है जिसमें हम अभी
1: रिसर्च हो रहे हैं। तो डॉक्टर जी, जो कॉमनली पाए जाने वाले जुवेनाइल आर्थराइटिस है वो कौन से टाइप्स हैं?
0: जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है।
1: अच्छा,
0: पहले इसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता था, अभी जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस।
1: और जैसे आपने बताया ये जेनेटिक भी हो सकता है?
0: हाँ, जेनेटिक फैक्टर्स से हो जाता है।
1: ओके, यानी माता पिता को अगर है या ऐसे कुछ है या फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो ये होने के चांसेस ज्यादा है।
0: जैसे ये जेनेटिक, ये जैसे बताया HLA-B27 और उसके बाद ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होता है, जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर, जो कुछ इन्फेक्शन हो जाता है उसमें से ये ट्रिगर हो जाता है,
1: इनहेरिट होता है उसमें से,
0: इन्फेक्शन से ऑटो इम्यून शुरू हो जाता है।
1: ओके, और जैसे जो दूसरे कॉजेज हैं जॉइंट पेन्स के, क्या वो रिलेट कर सकते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस के साथ?
0: बच्चों में बहुत कॉमन कॉज ऑफ जॉइंट पेन है ना, जो रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं, तो कुछ इन्फेक्शन हो गया तो जॉइंट में उसका रिएक्शन जॉइंट में होता है, पानी हो जाता है, बच्चों टेम्पररीली लिंप कर जाता है, जॉइंट सूजन हो जाता है, दर्द होता है। अगर ये ये तो कम टाइम रहता है, अगर ये 6 हफ्ते से ज्यादा होता है तो हम
1: चांसेस बढ़ जाते हैं,
0: जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस का चांस बढ़ता है। कुछ और बच्चों में ग्रोथ पेन हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो जैसे बोन ग्रोथ हो जाता है ना समटाइम, उसी के वजह से दर्द होता है। कुछ बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी में
1: उसके कारण भी होता
0: भी
1: है,
0: होता है।
1: ओके,
0: और कुछ और कारण भी, हिप पेन जैसे पर्थिस डिसीज, ऐसे कुछ भी होता है, लेकिन कॉमनली ये ट्रांशियंट आर्थराइटिस बोलते हैं।
1: यानी कहीं कई बार ऐसा भी हो सकता है कि या चोट, बहुत गहरी चोट लग जाने की वजह से या घाव लग जाने की वजह से हड्डियों में जब कहीं सूजन आ जाती है तो ये आगे चलकर कहीं आर्थराइटिस जैसा कुछ पेन क्रिएट कर सकता है, चांसेस है?
0: हाँ हाँ, ये अगर आपका बच्चों में

0: में बहुत ज्यादा इंजरी हो जाता है उसमें अगर बच्चों का वो ग्रोथ सेंटर होता है, जॉइंट्स में ग्रोथ सेंटर होता है, एंड्स ऑफ द बोन, हड्डी के ऊपर और नीचे हड्डी ग्रोथ करने के लिए सेंटर्स होता है, अगर उसको अफेक्ट कर जाता है या कार्टिलेज को अफेक्ट कर जाता है, आर्थराइटिस बन जाता है, वो सेकेंडरी आर्थराइटिस, पोस्ट ट्रोमेटिक आर्थराइटिस, लेकिन ये जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस नहीं बनता है।
1: बिल्कुल, ये जैसे आप बता रहे हो वो जेनेटिकली, वो अंदर से ही हो रहा है।
0: वो इंजरी से आर्थराइटिस वो अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस ये ट्रीटमेंट अलग है।
1: तो बिल्कुल आज हम ट्रीटमेंट पर भी बात करेंगे, पर डॉक्टर जी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक माता पिता को किन लक्षणों से पता चलेगा कि ये नॉर्मल पेन नहीं है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि वो पेन एक्सीड होगा और मे बी मोर देन 6 वीक्स से ये अगर ज़्यादा जाता है, तो कैसे हम इसको डिटेक्ट कर पाएँ कि ये एक नॉर्मल पेन नहीं है।
0: जो माता पिता तो 6 हफ्ते वेट करना नहीं है, जो अगर फीवर से, फीवर के साथ जॉइंट पेन हो जाता है या रैश के साथ, रैश मतलब लाल हो जाता है छांडे में, रैश के साथ फीवर और जॉइंट पेन होता है, या आंख लाल हो जाता है यूवेआइटिस के साथ होता है, या सिंपली बच्चे अगर बिना चोट बच्चा, आपका बच्चा दर्द बोलता है, सूजन हो जाता है, लंगड़ापन करता है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करना, आपका स्पेशलिस्ट से पीडियाट्रिशियन या ऑर्थोपेडिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट,
1: बिल्कुल,
0: तो उनके
1: जैसे डॉक्टर जी आप बता रहे हो आंख लाल हो जाता है, मान लीजिए अब आंख लाल हो गया तो डॉक्टर, ये तो स्वाभाविक बात है कि एक पेरेंट उनको आंख के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो क्या आंख के डॉक्टर को ये पता चल सकता है कि बच्चे को जुवेनाइल आर्थराइटिस जैसी कोई समस्या है?
0: हाँ, ये सब केसेस में यूवेआइटिस आंख लाल नहीं होता है, कुछ कुछ ओनली कम पेशेंट में होता है, लेकिन ये ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को भी ये अवेयरनेस है, तो यूवेआइटिस जॉइंट के पेन के साथ जो उसका पार्ट आंख वाला वो देखेगा, फिर वो रेफरेंस करेगा आपको,
1: यानी मतलब तो, उसका जो नॉर्मल आई पेन होता है या जो रेडिशनेस होता है आंख में, उसका और जुवेनाइल आर्थराइटिस का जो आंख का समस्या है, क्या ये सेम सिमिलर होते हैं, क्या ये
0: सिम्टम्स तो सिमिलर है, यूवेआइटिस इसमें भी हो जाता है उसमें भी हो जाता है, लेकिन जब आप ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को पता है, वो सिम्टम पूछेगा ना, तो बच्चों का अगर जॉइंट पेन के भी, जॉइंट पेन भी है तो वो रेफर जरूर करेगा।
1: बिल्कुल, जैसे वो जैसे जैसे वो इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, तो आप उसके हिसाब से पता चलेगा। तो डॉक्टर जी जैसे हम कहते हैं कि हड्डी में सूजन आ जाती है, तो सूजन का मेन कारण क्या हो सकता है, और क्या ये हमारे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है क्या ये उसको कमज़ोर कर सकता है?
0: ये तो जैसे पहले बताइए, ये ऑटो इम्यून डिसीज है, ये तो अपने ही इम्यूनिटी अपने टिश्यू को
1: कमजोर
0: फॉरेन समझ के अटैक कर जाता है।
1: अच्छा,
0: ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून के वजह से ये आर्थराइटिस ये हो जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे मतलब एक तरह से हमारा ही इम्यून सिस्टम वो हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है, तो एक तरह से वो हमारा दुश्मन ही बन गया है, तो हमारी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वो खराब होती जा रही है। और जैसे आपने बताया कि ये जेनेटिक तरीके से भी हो सकता है, तो क्या अगर माता पिता में भी नहीं है, मान लीजिए माता पिता में नहीं है, फिर भी ये बीमारी बच्चों में आ सकती है 16 साल की उम्र के नीचे वालों के बच्चों?
0: हाँ जी, जरूर।
1: ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस पर, और हड्डी में सूजन होना या किस प्रकार से जुवेनाइल आर्थराइटिस ये डेवलप होता है, क्या ये खतरनाक हो सकता है, और अगर किसी बच्चे को हो जाता है और अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इस पर आज की चर्चा का ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं 402-8085 पर। चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा का कार्यक्रम और बेशक जुवेनाइल आर्थराइटिस यानी बच्चों में पाए जाने वाले गठिया रोग आर्थराइटिस की समस्याएं जो मॉरिशस में भी उपलब्ध है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जैसे डॉक्टर जी हमें अभी बता रहे थे। डॉक्टर करुणाकरन आज हमारे मंच पर आए हैं और वे एक ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट है सीकेआई यूनिट में। सो आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल हम ज़रूर जानेंगे कि आर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस हमारे हड्डियों को किस प्रकार से नुकसान पहुँचा सकता है, किस प्रकार से ये समस्या और

0: और बढ़ती जाती है, और बिल्कुल किस तरह से ये डायग्नोस होता है इस पर थोड़ी ही देर में हम चर्चा करेंगे। आइए पूछते हैं डॉक्टर जी से कि डॉक्टर जी, आर्थराइटिस जो है बच्चों में जब होता है तो वो हमारे हड्डियों को किस प्रकार से अफेक्ट कर सकता है?
1: शुरू में ये जॉइंट पेन और जॉइंट स्वेलिंग, मतलब सिनोवियल जॉइंट पानी भर जाता है, तो उसके बाद ये कार्टिलेज को खाता है,
0: खत्म
1: करता है। तो ये उसके वजह से पेशेंट को स्वेलिंग और कॉन्ट्रैक्चर, मतलब डिफॉर्मिटीज हो जाता है। तो उसके बाद ये जॉइंट में ग्रोथ सेंटर होता है, ग्रोथ सेंटर को अफेक्ट कर जाता है, तो जो हड्डी ग्रोथ खत्म हो जाता है, सो डिफॉर्मिटी हो जाता है, ग्रोथ स्टंटिंग हो जाता है, एक पैर लंबा एक पैर छोटा हो जाता है।
0: अच्छा, ऐसा भी रहता है?
1: ऐसा भी होता जाता है। और जॉइंट डिफॉर्मिटीज, तो बिल्कुल मूवमेंट खत्म होकर डिफॉर्मिटी हो जाता है,
0: यानी इमोबाइल जैसे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है और बच्चा बिल्कुल जैसे चलना फिरना बंद कर सकता है।
1: कुछ बच्चे व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है।
0: तो ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है। और ये मतलब मान लीजिए अगर एक बच्चे को ये बीमारी होना शुरू हो चुका है तो कितने अंतराल में, द ड्यूरेशन, जैसे टाइम ड्यूरेशन में कितने समय में ये उसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है?
1: शुरू में तो वीक्स और महीने में तो ये इतना डैमेज नहीं करता है। तो जब अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है, ये सब डिफॉर्मिटी, कॉन्ट्रैक्चर्स, ग्रोथ डिस्टर्बेंस सब हम प्रिवेंट कर सकता है। तो जब ज़्यादा आर्थराइटिस, डिफॉर्मिटीज हो जाता है तो बच्चे व्हीलचेयर में बन जाता है, हो जाता है, तो उनका ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। तो अगर ये बच्चों को यूवीआईटिस, जैसे आंख में भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उस बच्चों को जैसे या कैटरैक्ट और ग्लूकोमा, जैसे प्रेशर बढ़ जाता है आइस में, और ब्लाइंडनेस भी हो सकता है।
0: तो डॉक्टर जी, ये जो आर्थराइटिस है, जुवेनाइल आर्थराइटिस, ये डायग्नोस कैसे किया जाता है?
1: जब पेशेंट ओपीडी में आ जाता है तो पहला हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये, अगर ये ट्रांशियंट जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस है या इन्फ्लेमेटरी या जुवेनाइल आर्थराइटिस, उसका डिस्टिंक्शन करना चाहिए। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्सरेस, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई स्कैन्स और ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में तो ब्लड काउंट्स हो जाता है, ईएसआर बोलते हैं, और एएनए एंड जो जेनेटिक टेस्ट है वो भी करते हैं, और एंटीसीसीपी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का उस टेस्ट भी करते हैं। तो उसके बाद जैसे पेशेंट का डैमेज सीवियरिटी के ऊपर फर्दर स्कैन्स भी करते।
0: तो जैसे नॉर्मल सूजन या कुछ है तो एक पेरेंट को तुरंत तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है, या एक प्रोलॉन्ग सूजन के बाद, मे बी लाइक मान लीजिए एक हफ्ते दो हफ्ते से ज़्यादा सूजन रहती है हड्डी में, या रेडनेस है, या कोई भी ऐसी समस्या है, तो तुरंत मतलब डॉक्टर के को दिखाना?
1: हाँ, तुरंत आना चाहिए, एक दो हफ्ते वेट नहीं करना।
0: और मान लीजिए अगर डॉक्टर कोई लेट डायग्नोस होता है, लाइक बहुत लेट डायग्नोस किया गया है ये, तो क्या ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है?
1: अगर लेट डायग्नोस, तब तक कुछ डिफॉर्मिटीज हो जाता है, तो अगर रिवर्सिबल डिफॉर्मिटी, इरिवर्सिबल डिफॉर्मिटी, अगर कार्टिलेज को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ ये टेंडन और जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर है, तो हम कुछ फिजियोथेरेपी सर्जरी से पूरा वापस आ सकता है,
0: यानी वो रिवर्स हो सकता है।
1: लेकिन जब ये कार्टिलेज को अफेक्ट करता है या ग्रोथ डिस्टर्बेंस करता है, तो फिर देन इरिवर्सिबल,
0: क्योंकि अगर मान लीजिए हड्डियों में ये बहुत डेप्थ तक चला गया है और बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज होना शुरू हो चुका है, तो उसे रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: हम उससे, उस कंडीशन से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वापस नॉर्मल करना मुश्किल हो जाता है। तो अर्ली विजिट टू द हॉस्पिटल, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत बहुत बहुत जरूरत।
0: और डॉक्टर, मान लीजिए अगर जुवेनाइल आर्थराइटिस में हम क्या पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं?
1: पूरी तरह ठीक मतलब सिस्टम से उसका हटाना, वो कभी हो नहीं सकता है। लेकिन हम ये डिफॉर्मिटी और ये लेट सेक्यूले से प्रिवेंट कर सकता है।

0: अच्छा। अगर बच्चा जल्दी आ गया तो डायग्नोस कर दिया तो दवाई दे सकते हैं हम। तो इस दवाई में तो पहले तो दर्द का एंटी इन्फ्लेमेटर से शुरू होता है, फिर DMRDs बोलते हैं, तो डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, वो कॉर्टिजोन होता है और मेथोट्रेक्सेट, क्लोरोक्विन, ऑल दोस
1: ड्रग्स
0: दवाई से। तो आजकल वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स होता है, तो बायोलॉजिक एजेंट बोलता है, ये सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट है। तो अगर जल्दी में ये शुरू कर देता है पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजी, अगर ये अर्ली स्टेज में शुरू करता है, हम जब आप बच्चों को देखें यू कांट टेल इसको ये प्रॉब्लम है।
1: तो डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर एक अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाता है तो क्या ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग रहती है?
0: हमेशा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये वेरिएबल हो जाता है, जैसे डायबिटीज है, ठीक है, कुछ लोग डाइट से भी कंट्रोल करता है, कुछ लोग को दवाई की जरूरत पड़ता है, कुछ लोग को इंसुलिन का जरूरत पड़ता है, तो वैसे ये भी है। कुछ लोग को वो जीन एक्सप्रेशन कितना होता है, कुछ लोगों को मान लीजिए ओनली 5-10% ऑफ सीवियरिटी है, उसको तो दवाई से कंट्रोल हो सकता है, ऑन एंड ऑफ बिना दवाई भी रह सकता है। कुछ लोग को ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो
1: उसका जो ड्यूरेशन है
0: दवाई में रहना पड़ता है, तो डिफरेंट ग्रुप। तो जब आप रेगुलर फॉलोअप करेंगे तो आपका डॉक्टर ये दवाई के साथ कुछ समटाइम ये बायोलॉजिक एजेंट देगा, समटाइम आपको मेथोट्रेक्सेट देगा, समटाइम सिर्फ स्टीरॉयड एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकता है।
1: और जैसे मान लीजिए अगर किसी की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलता है और क्या लाइफ लॉन्ग ये रह सकता है डिफॉर्मिटी, या फिर वो उसमें भी थोड़ा सुधार लाया जा सकता है?
0: अगर डिफॉर्मिटी है तो हम शुरू में डिफॉर्मिटी फ्लेक्सिबल डिफॉर्मिटी हो जाता है,
1: अच्छा,
0: मतलब बेंट है तो हम स्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसमें जॉइंट एस्पिरेशन दवाई और फिजियोथेरेपी और स्प्लिंटिंग के वजह से हम डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये नॉन फ्लेक्सिबल डिफॉर्मिटी है तो उसको ऑपरेशन करके हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, जैसे टेंडन लेंथनिंग, कॉन्ट्रैक्चर रिलीज या साइनोवेक्टमी, उसके ऑपरेशन करके हम डिफॉर्मिटी करेक्ट कर सकते हैं। लेट केसेस में जैसे जॉइंट में डैमेज हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया, देर इज देन सम केसेस में जैसे बच्चे ग्रोथ खत्म हो जाता है 13 या उसके ऊपर एज में,
1: हाँ,
0: ग्रोथ फिनिश हो जाता है, उसके हाँ। बाद हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। पहले तो जॉइंट रिप्लेसमेंट 60-70 उम्र में करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में
1: एक तरह से उनका ग्रोइंग एज है।
0: हाँ, अगर बच्चे व्हीलचेयर में है 13-14 इयर्स में उसका ग्रोथ खत्म हो जाता है, तो हम ये बोली नहीं जा सकता है ना, आप व्हीलचेयर में रहो, तो उस टाइम जाके अगर उतना डिफॉर्मिटी हो जाता है, जॉइंट खत्म हो जाता है बिल्कुल विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक कर नहीं सकते, तब रिप्लेसमेंट करेगा तो ये बच्चा
1: बिल्कुल, और जैसे जो यंग एज में होते हैं उनमें करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक ग्रोइंग पीरियड है और उसमें जैसे आप बता रहे हैं कि रिप्लेस करना थोड़ा कठिन हो जाता है।
0: हाँ, ग्रोइंग पीरियड में नहीं करता है तो ग्रोथ खत्म हो जाता है 13-15 साल में खत्म हो जाता है, उसके बाद कर सकते हैं सीवियरिटी के ऊपर, उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी है लेकिन कर सकता है और उसका लाइफ वापस हम दे सकते हैं। तो उसके बाद अगर 15-20 साल के बाद अगर वो लूज हो जाते हैं दोबारा चेंज कर सकता है।
1: तो डॉक्टर जी, क्या ये पूछना ठीक होगा कि जुवेनाइल आर्थराइटिस में क्या ये जिंदगी को भी खतरा पहुंचा सकता है, मतलब कोई अपनी जान गंवा सकता है?
0: नो, अगर आज के ज़माने में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में इसका लाइफ का डायरेक्ट थ्रेट नहीं है।
1: ओके, मतलब अगर आप डायग्नोस हो जाता है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो ये उतना मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता।
0: ये लाइफ डिसेबलिंग कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में सिस्टमिक लाइक सीवियर सिस्टमिक और आप डॉक्टर के पास ही नहीं गया, लीवर एंड स्प्लीन सब अफेक्ट हो गया, आप हॉस्पिटल ही लेके नहीं गया,
1: कॉम्प्लिकेशंस
0: फिर हो सकता है, लेकिन

0: में अभी तक ऐसे कुछ नहीं
1: कोई केसेस नहीं हुए बिल्कुल। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस जो बच्चों में पाया जाता है, और जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं 16 साल की उम्र से कम बच्चों में ये अधिकतर पाया जाता है, और मॉरिशस में भी ये समस्याएं बिल्कुल पाई जाती हैं। और बिल्कुल जुवेनाइल आर्थराइटिस का ये सप्ताह अवेयरनेस का वीक है, इसी पर आज का ये कार्यक्रम हम आधारित रखते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग मिल रहा है, टेक्निक पर हमारा साथ दे रही है अपर्णा, दीपशिका हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और प्रोड्यूसर निज़ाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप देख पा रहे हैं MBC के तीसरे चैनल पर, रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं, और रेडियो मॉरिशस पर आप इसे लाइव सुन पा रहे हैं। हमारा साथ देते रहिए, अभी थोड़ी ही देर में हम बढ़ेंगे आगे ट्रीटमेंट कैसे की जाती है जुवेनाइल आर्थराइटिस पर।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा का कार्यक्रम जारी रखते हैं और आज हमारा टॉपिक है जुवेनाइल आर्थराइटिस, यानी बच्चों में होने वाले गठिया के रोग, आर्थराइटिस की समस्या और बिल्कुल ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अर्ली डायग्नोस हो जाना और फिर उसको अर्ली जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट करना, ये बहुत ही आवश्यक है। और क्या सर्जरीज तक की नौबत आ सकती है, आइए जानते हैं डॉक्टर करुणागरन से जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं आज। डॉक्टर जी, अर्ली ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसकी शुरुआत कैसे की जाती है?
2: जब अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो फर्स्ट थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा और आइस पैक्स और हम एनएसएआइड्स यू नो एंटी इन्फ्लेमेटरी से शुरू करते हैं। देन अगर ज़रूरत पड़े तो दवाई को इंक्रीज कर जाते हैं, जैसे डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स और बायोलॉजिक एजेंट्स। ये मेडिकल ट्रीटमेंट है और डोज और ग्रुप ऑफ ड्रग्स वेरी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी, कितना ये डैमेज हुआ उसके ऊपर ये दवाई हम मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। और इंटरवेंशन, जैसे अगर घुटने में पानी भर गया तो एस्पिरेशन नीडल डाल के हम पानी निकाल के बैंडेज कर सकते हैं या कुछ ब्रेस लगा सकते हैं टू प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी। और अगर डिफॉर्मिटी हो जाता है फिर टेंडन लेंथनिंग और कॉन्ट्रैक्चर रिलीज भी कर सकता है। अर्ली स्टेज में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा देंगे तो कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। तो हम जॉइंट मूवमेंट को मेंटेन करना है, तो रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज और नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज, जो जब ये जॉइंट का डैमेज होता है मसल भी इन्वॉल्व हो जाता है, मसल अट्रोफी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये मूवमेंट से हो जाता है, मसल स्ट्रेंथनिंग से हो जाता है। कुछ लोग को स्प्लिंट देना पड़ेगा, ब्रेस देना पड़ेगा, वॉकिंग एड देना पड़ेगा।
1: और ये जो फिजियोथेरेपी है ये मतलब ये कंटिन्यूस उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना लंबा होता है और कितने अंतराल में, हाउ लॉन्ग, जैसे उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कितने दिनों तक चलता है?
2: अगेन वो सीवियरिटी के ऊपर हो जाता है। तो बहुत कम डिफॉर्मिटी है या डिफॉर्मिटी ही नहीं है तो सिर्फ ये पेशेंट को सिखाना पड़ेगा कैसे चलना है, कैसे एक्सरसाइज करना है। कुछ लोगों को रोज फिजियोथेरेपी डिफॉर्मिटी खत्म होने तक तो करना पड़ता है, वो सिवियरिटी के ऊपर। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है, जैसे मेन रोल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट, अगर पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो रूमेटोलॉजिस्ट, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन, ये सब जॉइंट और ऑर्थोपेडिशन, सब टीम वर्क
1: होता है उसमें होता है। और डॉक्टर जी, सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है?
2: सर्जरी की आवश्यकता जब डिफॉर्मिटी सेट हो जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्चर है तो बच्चे फुल मूवमेंट नहीं कर सकता है, या इक्विनस डिफॉर्मिटी एंकल में हो जाता है, नी में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, हिप में कॉन्ट्रैक्चर्स या हाथ में भी, इट्स नॉट जस्ट पैर में, सिर्फ पैर में नहीं है,
1: पूरे शरीर में, हाथ में, कंधों में,
2: एल्बो, रिस्ट, सब में हो जाता है। तो उसका प्रिवेंट करना, और अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो सर्जरी का।
1: तो क्या डॉक्टर ऐसा भी हो सकता है कि जुवेनाइल आर्थराइटिस में मल्टीपल सर्जरीज भी करना पड़े?
2: हाँ, ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे अभी एक पेशेंट मेरे पास आया था तो 5 साल में ही

0: उसका शुरू हो गया था और जब हमारे पास आया वो पेशेंट 13 ईयर्स उम्र था और 5 साल से ही वो व्हीलचेयर में था। तो उनका बहुत हिप जॉइंट, बहुत नी जॉइंट, बहुत एंकल सब इन्वॉल्व था। तो अभी उसको हम पहले डिफॉर्मिटी करेक्शन, कॉन्ट्रैक्चर रिलीज, जैसे इक्विनस रिलीज का सर्जरी किया, एंड उसके बाद उसका ग्रोथ कंप्लीट हो गया था 13-14 में, तो उसका नी रिप्लेसमेंट किया, फिर हिप रिप्लेसमेंट किया, देन उसको मोबिलिटी, जैसे नॉर्मल मोबिलिटी तो नहीं हुआ, कम से कम तो ये व्हील चेयर से वॉकर पकड़ के या क्रच पकड़ के चल रहा था। अभी 2 साल के पहले वो दोनों शोल्डर के साथ, अभी उसका उम्र हो गया था 24, तो हम दो शोल्डर को भी रिप्लेस किया, तो 100% मोबिलिटी नहीं है, 100% मूवमेंट नहीं है,
1: लाइक व्हील चेयर से खड़ा हुआ,
0: तो ही इज नॉट बेड रिडन, ही इज नॉट होम बाउंड, ही इज आउट,
1: एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट, बिल्कुल जैसे इंडिपेंडेंटली वो अपना मूवमेंट कर सकता है। और बिल्कुल ये जो बिल्कुल एक तरह से देखा जाएगी कि जुवेनाइल आर्थराइटिस में, जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि 5 साल की उम्र से उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ये समस्या थी और 13 वर्ष तक, यानी लगभग कह सकते हैं कि नियरली 10 साल तक वो व्हील चेयर पर था, और फिर धीरे धीरे करके जैसे ही उनका कैसे ग्रोथ रुका उसके बाद ही ये मूवमेंट, ये जो रिप्लेसमेंट का जो कार्य है, जो ट्रीटमेंट है, वो आगे बढ़ाया जा सकता है। और बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए, पूरा 100% नहीं पर फिर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसे इंडिपेंडेंट बनाना ये बहुत ही ज़रूरी था। तो यहाँ पर जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ती जाती है, डॉक्टर जी क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब ये जो ट्रीटमेंट आप बता रहे हो आगे चलकर उसे कोई ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कोई आगे जाके समस्या नहीं होती ये रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद?
0: नहीं, रिप्लेसमेंट ऑपरेशन ग्रोथ खत्म होने के बाद ही करते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन जैसे जब ये कम उम्र में रिप्लेसमेंट करता है
1: जी,
0: तो उसके बाद ये लूसनिंग का चांसेस भी है, हर रिप्लेसमेंट 10 साल 15 साल के बाद लूज हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम नया रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्रैक्चर्स साथ, डिफॉर्मिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्चर भी हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, मतलब हड्डी बहुत बटर जैसे होता है,
1: तो
0: इसमें हाँ इसमें रिप्लेसमेंट करना बहुत चैलेंजेस है। तो हम किसी भी कारण से ये उस स्टेज जाने से प्रिवेंट करना चाहिए, अगर हो गया तो
1: बहुत अच्छा है, जैसे इसीलिए अर्ली डिटेक्ट करना, अर्ली उसको ट्रीटमेंट पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जी यहाँ पर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का क्या रोल होता है और जो स्पेशलिस्ट है उनकी क्या भूमिका होती है यहाँ पर?
0: तो ऑर्थोपेडिक रोल, हमारा रोल अर्ली डायग्नोसिस से हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास पहले आता है तो हम उसको सस्पिशन, क्लिनिकल सस्पिशन से ये टेस्ट करके, ये डायग्नोस करने के बाद हम उसको प्रॉपर रेफरेंस करना चाहिए, अगर पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट है तो पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट, तो अगर ज़रूरत पड़े ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, सो इसको प्रॉपर रेफरेंस करके इसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। तो अगर हमको ये अवेयरनेस नहीं है तो वी कैन मिस द डायग्नोसिस, तो सही टाइम पे डायग्नोस करना एक है। तो फिर अर्ली एस्पिरेशन, स्प्लिंटिंग जैसे डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करना, तो तीसरा अगर ये डिफॉर्मिटी आ गई हो तो उसको करेक्ट करके वापस बच्चों को जितना नॉर्मल कर सकते हैं उतना करना, ये सब ऑर्थोपेडिक्स।
1: और डॉक्टर जी इसमें लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं?
0: लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस जैसे डिफॉर्मिटी हो जाता है, ग्रोथ डिस्टर्बेंस हो जाता है, अगर जॉइंट में अफेक्ट होता है जैसे मैंने बताया ग्रोथ सेंटर में सप्रेशन हो जाता है, तो वो पैर वो लिम शॉर्ट हो जाता है, तो इसको भी हम जब बच्चे ग्रोथ खत्म हो जाता है लिम लेंथनिंग सर्जरी कर सकता है।
1: ओके तो डॉक्टर जी ये जो जुवेनाइल आर्थराइटिस है क्या इसको हम किसी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या कोई ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या फिर जो माँ है वो प्रेगनेंसी के टाइम कोई ऐसा प्रिकॉशन ले, या फिर बच्चे हो जाने के बाद क्या बच्चों के लिए हमें कोई ऐसा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है ताकि वो बच्चे को कोई जुवेनाइल आर्थराइटिस जैसी समस्या ना हो?
0: नहीं, इसको तो हम ये प्रीनेटल चेकअप से डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, उस टाइम तो ये आपको
1: पता नहीं चलेगा,
0: पता नहीं चलता है।

0: और ये प्रिवेंट कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे ये इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक मतलब आई डोंट नो, वी डोंट नो, ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून से हो जाता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन से हो जाता है, और ये एनवायरमेंटल ट्रिगरिंग है जैसे इन्फेक्शन। इसे हम जो हमारे हाथ में है, अगर बच्चों को कुछ ये जॉइंट पेन, स्वेलिंग या लंगड़ापन हो जाता है, जल्दी स्पेशलिस्ट के पास ले जाके अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और कमिटमेंट फॉर रेगुलर फॉलोअप है। जैसे ऐसे नहीं है कि बहुत लोग आते हैं, एक बार डायग्नोस करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ये स्टीरॉयड ले लो या ये दवाई ले लो, तो कुछ पेरेंट्स अपने आप ये ट्रीटमेंट स्टॉप कर सकते कर देते हैं और कुछ और ट्रीटमेंट के पास चला जाता है। तो
1: यानी वो कंटिन्यूटी होना,
0: रेगुलर फॉलोअप बहुत बहुत जरूरी है इसमें। पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट से या पीडियाट्रिशियन से या रूमेटोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप बहुत बहुत जरूरी।
1: और अपने आप दवाई नहीं रोकनी है जब तक डॉक्टर आपको बताए, क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए और दवाइयों की जो डोजेज है वो प्रॉपर मात्रा में सही समय पर बच्चे को मिलते रहनी चाहिए, तब जाकर इसका ट्रीटमेंट फॉलो किया जा सकता है। और डॉक्टर जी, यहाँ पर क्या हम डाइट के द्वारा भी कोई ऐसी प्रिवेंशन, यानी डाइट को हम अपने जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं जो जुवेनाइल आर्थराइटिस के लिए बेहतर हो सकता है?
0: नहीं, वैसे डाइट से ये प्रिवेंट नहीं कर सकते, या जनरली जो कुछ डाइट्स जैसे यूरिक एसिड हाई कंटेंट डाइट्स है, ये वैसे यूरिक एसिड जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। कुछ लोगों को अगर ज़्यादा ये यूरिक एसिड हो जाता है वो भी जॉइंट को अफेक्ट करता है।
1: बिल्कुल,
0: तो डायरेक्टली डाइट से आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये यूरिक एसिड डाइट थोड़ा फॉलो करेगा तो जॉइंट डैमेज थोड़ा कम हो सकता है।
1: और जो मान लीजिए जो जिनको आर्थराइटिस रह चुका है, जुवेनाइल आर्थराइटिस, और अब वो नॉर्मल हो रहे हैं, तो क्या उन्हें कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उनके हेल्थ को या उनके बोन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो?
0: नहीं, वैसे तो रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: नॉर्मल रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, तो मसल जॉइंट का एट्रोफी से प्रिवेंट करना, मसल को कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करना और जॉइंट मूवमेंट को रखना है, तो रेगुलर एक्सरसाइज एक दो बार आप या जितने भी आप फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास गए, ये जो उसके पेशेंट के ऊपर या फैमिली के ऊपर है, ये एक्सरसाइज रोज करना है तो दैट प्रिवेंट कर सकते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड डाइट, प्रिवेंट ओबिसिटी, ओबिसिटी हो जाता है वो भी जॉइंट को अफेक्ट करता है, तो प्रिवेंट ओबिसिटी, कीप एक्टिव।
1: क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी अफेक्ट कर सकता है लॉन्ग रन में जिनको जुवेनाइल आर्थराइटिस रह चुका है बचपन में?
0: वो तो बैड कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आपको आर्थराइटिस आ जाता है, जॉइंट डैमेज होता है, आपको पहले ही जुवेनाइल आर्थराइटिस है, जॉइंट डैमेज हो जाता है, तो आप प्रिवेंट करना,
1: मूवमेंट होना, व्यायाम करना, एक्सरसाइजिंग करना, फिजियोथेरेपी करना। और जिनको मतलब मान लीजिए अब ट्रीटमेंट हो चुकी है, सारा कुछ है, नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो क्या उनको ऐसा हो सकता है कि फिर से उनको आर्थराइटिस जैसी समस्या फ्यूचर में होने की संभावना हो सकती है, या बढ़े बड़ी उम्र में जाकर उनको फिर से ये मतलब ये कभी भी उनको ट्रिगर कर सकता है, कभी भी ये बढ़ सकता है दोबारा से?
0: हाँ ज़रूर, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल पर्सन को भी 40 उम्र के ज़्यादा आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे वेयर एंड टियर हो जाता है। तो ये पेशेंट विथ जुवेनाइल आर्थराइटिस, उसको पहले से ही थोड़ा आर्थराइटिस है, तो ट्रीटमेंट से, रेगुलर लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज से, जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल से उसका ये सीवियरिटी कम कर सकता है। लेकिन अगर उनका ये उम्र बढ़ता है, उनको भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस के ऊपर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, तो उसको भी
1: डबल हो सकता है, और डबल पेन के वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डॉक्टर जी, अभी जैसे विंटर सीजन आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ख़ासकर हम जब ट्रॉपिकल आइलैंड में रहते हैं, यहाँ पर आए दिन आपने देखा होगा कैसे टेम्परेचर में ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस आते हैं, तो क्या इसको लेकर भी हमारे हेल्थ को कोई भी इशूज़ हो सकते हैं, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: जो विंटर में तो सब ये आर्थराइटिस, जॉइंट एंड मसल पेन, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है,
1: True.
0: बहुत ज़्यादा हो जाता है जो पेशेंट

0: को थोड़ा और ज़्यादा दर्द होता है, थोड़ा और स्टिफनेस हो जाता है। तो जैसे एवरी विंटर प्रिकॉशंस, जैसे अपने आप को गर्म रखना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर जी, क्या मसाज हेल्पफुल रहता है ऐसे मामले में?
0: ज़रूर मसाज आपको हेल्प करता है, लेकिन फोर्सफुल मसाज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्रैक करता है, कुछ लोग तो वो
1: बहुत जैसे जो टफ मसाजेस होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए।
0: वो आप कॉन्ट्रैक्चर है, उसमें आप बहुत जोर लगा के करेंगे तो हड्डी को
1: खराब कर देगा,
0: हड्डी को आप ब्रेक कर सकते हैं। ये पेशेंट को के ऊपर पहले से ऑस्टियोपोरोसिस है, आप इसको ज्यादा फोर्स लगा के मैनिपुलेट किया आप हड्डी को ब्रेक कर सकते हैं।
1: ओके,
0: तो नॉन फोर्सफुल मसाज ठीक है, अच्छा है।
1: और इसमें फैमिली का क्या रोल होता है डॉक्टर जी?
0: फैमिली का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चों तो खुद हॉस्पिटल नहीं ले आ सकते ना, तो अर्ली ट्रीटमेंट, बच्चों तो दवाई तो नहीं लेते हैं, बच्चों को टाइमली दवाई देना पड़ेगा, एक्सरसाइज सब में ये
1: एक तरह अगर से
0: ये बच्चों को हो जाता है, पेरेंट्स और फैमिली को फुल कमिटमेंट इसमें होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उनकी हेल्थ को लेकर कोई इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए।
0: अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो इसका आउटकम अच्छा नहीं होता,
1: डिफिकल्ट हो जाता है। तो डॉक्टर जी, ऑलमोस्ट हम आज के इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, हमारे ऑडियंसिस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: तो मैसेज तो अगर आपका बच्चों दर्द बोलता है, लंगड़ापन बोलता है, तो बच्चों नॉर्मली खेलना पसंद करते हैं, बच्चों कंप्लेन नहीं करते हैं। अगर बच्चों कंप्लेन करता है तो इट्स बेटर यू ब्रिंग टू द स्पेशलिस्ट, वो चेक करके अगर
1: कुछ भी कोई नहीं
0: है तो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन डोंट नेग्लेक्ट।
1: हाँ जी, कई बार हम बच्चों को ये कहकर टाल देते हैं कि बच्चा है, हो सकता है झूठ बोल रहा है, या ध्यान नहीं देते, पर अगर वो कंटिन्यूसली आपको ये शिकायत कर रहा है तो इसे आप निग्लेक्ट ना करें। जैसे डॉक्टर करुणागरन ने बताया, वे एक ऑर्थोपेडिक और स्पाइन के सीनियर कंसल्टेंट है और सी केयर हॉस्पिटल में वे अपना सेवा देते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग मिला अपर्णा हमारे तकनीक पर, साथ ही साथ दीपशिका हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोड्यूसर रहे निज़ाम। आप दर्शकों ने भी हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर करुणागरन, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और बिल्कुल अगले सप्ताह एक और ऐसे टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे, इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भक्तों के संक्षिप्त समाचार का स्टूडियो में आगे विधिमा उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार विकास, सभी सुनने वालों को नमस्कार। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्या नवामारी के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करता है। इसके तहत देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकेगी। समन 7 दिनों में जारी होगा और सुरक्षा आदेशों की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। पीड़िता को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आरोपी को हटाया जा सकता है या वैकल्पिक आवास का खर्च उठाना होगा। साथ ही मनोवैज्ञानिक परामर्श अनिवार्य होगा, जिसका पालन न करने पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री पार्थ खाचरियावादेन के अनुसार CWA पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपये बकाया है, जिसमें 2.92 बिलियन रुपये पुराने बकाया शामिल हैं। 30 जून 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में CWA ने 755 मिलियन रुपए का घाटा दर्ज किया। मंत्री ने बताया कि पानी की उत्पादन लागत ₹24 प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि औसतन बिक्री ₹14 में होती है, जिससे ₹10 प्रति क्यूबिक मीटर का नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यावसायिक उपयोग के लिए पानी की दरों में संशोधन होगा, लेकिन घरेलू उपभोक्ता इससे प्रभावित नहीं होंगे। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर एक वर्ष के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जिनके अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए। मंत्री अशोक सुबों के अनुसार सभी डॉक्टर विधिवत पंजीकृत हैं और उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जांच करना तथा दिव्यांग व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए मेडिकल बोर्ड में बैठना है। मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के G2G समझौते पर बातचीत जारी है। STC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्ष रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा हो रही है। मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों और फ्रेट लागत बढ़ने से देरी हुई है, लेकिन समझौता जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। और विदेश में 2025 की अपनी अनिवार्य वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल क्रिप्टो करेंसी में व्यापारिक सौदों से $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 927 पन्नों के खुलासे में उन्होंने एक ट्रंप मेमे कॉइन से $635 मिलियन की रॉयल्टी की जानकारी दी है। पदभार ग्रहण करने से कुछ दिन पहले इसे लॉन्च किए जाने के बाद से इस कॉइन की कीमत में भारी गिरावट आई है। इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। क्लोजेल रोड फिनिक्स में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री विनय मित्र चुरामन, जो विनय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:45 बजे उनके घर क्लोजर रोड फिनिक्स से उठाकर सुल्फेहिनो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
0: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: बुधवार 1 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:04 होने को है। रेडियो मॉरिशस पर हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हम हृदय से स्वागत करते हैं। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। आपको याद दिला दें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी, डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। श्रोताओं, कहते हैं हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है, कहीं ना कहीं उससे हमें कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ जानने का अवसर मिलता है, कुछ ना कुछ पहचानने का अवसर मिलता है। इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है उसे कहते हैं एक सबक की तरह, एक सीख की तरह लेना चाहिए और जीवन में सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ होने से अगर जिंदगी, अगर जीवन रुक जाता है तो जीवन कैसे

जीवन तो सतत आगे बढ़ते रहता है, जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ऐसे जीवन की धारा जो है ये भी आगे बढ़ते रहती है और हम भी चलिए आगे बढ़ते हैं। और कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं भगवान गणेश के नाम से। भगवान गणेश जो है सबका कल्याण करे, भगवान गणेश जो है सभी हमारे कार्यों को अच्छे से संपन्न करे। कहते हैं ना कि भगवान गणेश

जी हाँ, यहाँ पर भक्ति धारा इस कार्यक्रम का आरंभ हो चुका है। कहते हैं कि भक्ति जो है हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाती है। भक्ति जो है हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। भक्ति जो है ईश्वर के प्रति हमारे मन को शांत करती है, हमारे मन को स्थिर करती है, हमारे जो है मन में अच्छे विचारों का आना आरंभ हो जाता है। और जब अच्छे विचार मन में आते हैं तो अच्छे कर्म भी अपने आप हो जाते हैं। तो चलिए ईश्वर की भक्ति में हम भी लीन होते हैं और इस अगले भक्ति गीत द्वारा कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं।

0: जी हाँ, दिन आए दिन जाए, समय पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। समय अपने प्रकृति के हिसाब से चलता रहता है और हमें भी कभी कभार समय के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। हमारे भीतर भी परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता होती है, कभी कभार हालातों को देखते हुए। चलिए, अभी के लिए दिन के 10:15 बज चुके हैं और अब हम बढ़ेंगे कार्यक्रम विनय अंजलि की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। तो आइए इस कार्यक्रम में डॉक्टर गंगू जी को हम सुनते हैं।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। विनय अंजलि में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे आदरणीय डॉक्टर सतीश प्रकाश जी के गान द्वारा। आप इस गान का रसास्वादन करें।

0: श्रोताओ, आज का संदेश आप सुनेंगे आदरणीय पंडिता प्रेमिला श्रीरतन जी द्वारा। सर्वप्रथम हम पंडिता जी का अभिवादन करते हैं, फिर उनसे निवेदन करते हैं कि किसी एक मंत्र का पाठ करें और उस मंत्र की व्याख्या में अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय पंडिता प्रेमिला श्रीरतन जी।
1: ॐ धनस्य सातये हवामहे जेतारम पराजितम् सन्नस्वर्षदति द्विषः संपदहीत है पुकारते विजयशील महान अपराजित।

मधुर ज्ञान यज्ञ और सत्य को भरो हम में भरपूर। सम्माननीय श्रोतागण सादर नमस्ते। श्रोताओं, विद्या धन के लाभ के लिए ना हारने सदा विजय पाने के लिए शत्रु से रक्षा पाने के लिए द्वेष दूर करने के लिए हम मानव इंद्रदेव जो धन का स्वामी है उसे अपने हित के लिए संपदा के लिए विनय सदा करते हैं। मानव हित प्रति संवेदना सहानुभूति प्रकट हम संकटकालीन समय में करते हैं। संकट विपत्ति दुख अशांति अपवित्रता हिंसा रोग आदि हर मानव पर हर स्थान या घर घर में टूट पड़ता है, चाहे मानव द्वारा निर्मित हो या प्राकृतिक हो। हम प्रभु को ही रक्षा के लिए पुकारते हैं और हम शीघ्रता पूर्वक नियंत्रित करने में लग जाते हैं ताकि भगीरथ कार्य सभी के लिए महान एवं विजयशील तो हुए। हम उपासक उपास्य से सदा विद्या धन पाने की उपासना करते हैं ताकि हमारे जीवन का निर्माण ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान गुण शक्ति और कल्याणकारी कर्मों से होता रहे। हम संसार में उत्तम कर्मों के आधार पर यश कीर्ति कमाने आते हैं पर विद्या धन से लाभ पाते रहते हैं। इसलिए न हारने के लिए विजय करने वाले को परमेश्वर जो धन संपदा ऐश्वर्य से भरपूर हैं उसे हम पुकारते रहते कि हे प्रभु हमें विजयी भव के आशीर्वाद की चाह है। हम अपराजित होकर जी नहीं सकते। आज दैहिक बल वाक बल और धन बल की जोर से सर्वोच्च पद की लालसा करते हैं और हम अपराजित होकर देखते रह जाते। बिन पढ़ाई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, बिन साधना साधु बनते, बिन आचरण के आचार्य पद की लालसा रखते और स्वनियंत्रण

नियंत्रित दूसरों पर नियंत्रण कर दल दल में अवश्यमेव धंस जाते तो मित्र दोस्त सखा का रिश्ता कहाँ निभा सकते। श्रोताओं बल्कि शत्रुता मोल लेते, जिसके हनन के लिए प्रभु से रक्षा की पुकार करते। जो भाव हम कहीं न बांट सकते, परम रक्षक परमात्मा से बांटना सरल होता। वही भगवान बनकर चिंता रहित दुष्टों का हनन करते, विपदा में देख द्रवित होते, हमारी पुकार सुन पहाड़ सम दुख को धूल समान बनाते, दुर्गम मार्ग से निकालकर सुगम मार्ग पर ले जाते, विपत्ति में हमें 100 गुना प्रेम करते, जो हमारी बुराई को अच्छाई में समेट लेते, हम निष्कपट भाव से जीते, ऐसे धनयुक्त परमात्मा हमें सच शिक्षा देकर जीवन स्तर ऊंच बनाने का प्रयास करते, ताकि हार कर भी कुछ सीख सके। शुद्ध आत्मा बनकर परमात्मा समीप अपने अंदर सुख शांति पवित्रता से कमी कमजोरी चिंता अशांति मिटा सकते हैं। इसलिए सदा द्वेष से दूर रहने की चाह रहती। मंत्र का स्वर्णिम उपदेश प्रथम भाग में यह है कि इंद्र धनस्य सातये। इंद्र परम ऐश्वर्य युक्त होते हैं, जिस ऐश्वर्य से हमारा जीवन सुखमय शांतिमय होकर हर्षपूर्वक व्यतीत करते। श्रोताओं जिनके विद्या धन से लाभान्वित होते हैं, हमें वह धन की चाह है जो हमारे साथ सदा रह सके, ईश्वरीय पात्र बन सकें, दिव्य गुण धन और वरदान से स्नेह युक्त प्रभु के आंचल की छाया में विवेक और करुणा का पात्र बन सकें। उस प्रभु के सातये धन के लाभ से हमारी कमजोरी चिंता और शांति मिट सकें, हम अंदर से राहत महसूस कर सकें, हमारी आवश्यकता के लिए प्रभु को लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, आगे दूसरे पराव में मंत्र कह उठता हवा महे जेता रम पराजितम। हम न हारने वाले या जीतने वाले को पुकारते, क्योंकि करने वाले से कराने वाले महान होते, बनने वाले से बनाने वाले महान होते, लेने वाले के हाथ से देने वाले के हाथ ऊपर रहती हैं, क्योंकि मन का हारी हार मन का जीते जीत। श्रोताओं जिसके मन में आत्मविश्वास का स्रोत सुखता नहीं, वे विजय माला से सुशोभित सदा रहते, सफलता एवं सिद्धि सदा प्राप्त करते, हार कर भी संपर्क में आने वाले को उमंग उत्साह आत्मविश्वास की प्रबल भावना से भरती रहती, जीत कर भी क्रियात्मक जीवन से निश्चयात्मक विजयंती का अनमोल पाठ पढ़ा देती, क्योंकि वे प्रभु को पुकारते हुए प्रार्थना करती कि हमें विकृति से बचाकर परमात्मा सहायता में निश्चय कर सफलता के पद पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते और दिनों दिन सभी को आगे बढ़ाने में लगे रहती। जब हम असीम बल से युक्त किसी कठिन कार्य करने में अपनी शक्ति भूल जाते तो हवा महे तो प्रभु को पुकारते। श्रोताओं साधारण शक्ति संपन्न अनुभव कर कठिन से कठिन कार्य पूरा कर लेते, इसलिए कर्म करने से पहले परिणाम सोचते, हार होगी या जीत जोश में किए कर्म हार की ओर संकट में डाल देता और होश के साथ दुर्गम कार्य भी सध जाते। प्रबल आत्मविश्वास से विजयी की शक्ति शीघ्रता पूर्वक ईश्वर को पुकार कर प्रभु के स्नेह भाजन बनकर निश्चय ही कार्य में सफलता के प्रांगण में प्रवेश पा लेती। श्रोताओं त्यागी तपस्वी सेवाधारी हार कर भी छोटी नकारात्मक बातें दिल से नहीं लगाते, क्योंकि उसे सीख लेकर बड़ा काम करते। इसलिए एक वृतांत है, दो मित्र थे, किसी विषय पर बहस होने से बड़े ने अपने मित्र के गाल पर थप्पड़ मार दिया। उसने बालू पर लिखा कि आज मेरे मित्र ने क्रोध से मुझे थप्पड़ मारा। गर्मी का मौसम था, दोनों नहाने के लिए एक तालाब में उतरे, पानी में काई जमी थी, छोटे का पैर फिसल गया, वह डूबने लगा, बड़े झट से उसे पानी से बाहर निकाल दिया, वह बहुत खुश हुआ।
ताल किनारे एक पत्थर दिखाई दिया, उसने लिख दिया, बड़े ने आज मेरी जान बचाई। पूछने

0: पर पता चला कि नकारात्मक एवं हार की बातें बालू पर लिखते ताकि मन हल्का हो जाए और तो और हवा के एक झोंके के साथ मिट जाए, और सकारात्मक बातें पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि लकीर बनकर यादगार सदा के लिए रह जाए। हार में उत्तम सुझावों का आदर कर सीख लेकर उमंग उत्साह भरते और कमजोरी गलती का नाजायज़ फायदा न उठाकर विजयी पाने की प्रेरणा देते। जीवन वैसा बनता जैसे हम बनाते हैं, इसलिए तीसरे भाग में मंत्र द्वारा हम प्रार्थना करते सनह स्वशर्दतिम द्विषः कि हे प्रभु, हमें द्वेष करने वाले को सदा दूर रखें। ब्रह्म यज्ञ करते हुए मनसा परिक्रमा मंत्र से प्रार्थना करते हुए छों मंत्रों द्वारा द्विष्टियम वयम द्विस्म स्तंभो जम्बे दद्मह कहते, हे प्रभु, हमसे द्वेष करने वाले को आप जाने, और यदि हमसे किसी प्रति द्वेष हो जाए तो हमारे कर्म अनुसार दंड दीजिए ताकि हम निर्भय निष्कलंक उत्साही आनंदित पुरुषार्थ कर सकें। द्वेष्टा और द्वेष दोनों को नाश करने की प्रार्थना हम शाम सवेरे करते हैं। प्रभु की विद्याधन से हमारी दृष्टिकोण सोच मान्यता शुद्ध रहे, सकारात्मक दिशा प्रदान करते रहे ताकि मानसिकता में उत्थान आता रहे, हमारे द्वेष रहित कर्तव्यों का बोध होता रहे, द्वेष रहित अच्छे संग विद्वानों की वार्ता से आगे बढ़कर प्रभु विनय से विशेष ही मिलता है। ईश्वर प्रति आस्था समीपता बंधनों बंदिशों से जीवन जीते, जिससे अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाते, अपने अतीत को नहीं हमें द्वेष से न किसी प्रति शिकवा न गिला अपने मालिक संग विद्याधन के ज्ञानदाता परमात्मा है, जिसके ज्ञान के आधार पर हानि लाभ में त्याग भाव से जी सके। अंततः कंडिका कह उठती सनह स्वर शदति द्विषः, हे प्रभु, हम में ज्ञान यज्ञ और सत्य से द्वेष पात्रों को नष्ट करने के तेज भरते रहने की कृपा चाहते। सो आप हम तेजस्वी के रक्षक एवं नायक हैं, हमें शक्तिवान स्तुति योग्य तेजस्वी न हारने वाले विजयी शत्रुओं को भगाने वाले राग द्वेष को मिटाने वाले की प्रेरणा से कुपात्रों को स्वर शदति दूर करने की प्रार्थना है, ताकि आपके ज्ञान यज्ञ कर्म से हम पूरा लाभ उठाकर भाग्य का सितारा चमका सकें। ईश्वरीय ज्ञान विधि विधान द्वारा उच्च संबंध द्वेष रहित कर्म विजयी बनने का भाग्य सर्वहित एवं कल्याण के लिए होते रहें। स्वच्छता सहनशीलता ऐश्वर्यदाता द्वारा शत्रु से रक्षा हो, महान विजयी बन द्वेष रहित सत्य ज्ञान से भरपूर रहने की विनय है, जो आज विनय अंजलि का संदेश रहा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रद्धेया पंडिता प्रेमिला श्रीरतन जी को। आशा है आपने उनके विचारों से लाभ उठाया होगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में टेक्नीशियन के रूप में साथ दिया है श्रीमती अंजू लक्ष्मण जी, हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने सुना, आपके प्रति आभार। अंत में आप श्रद्धेय पंडित बाल्मीक महेश जी के स्वर में एक मधुर भजन सुनेंगे और हमें अनुमति देंगे, हम सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। इस सुंदर कार्यक्रम के लिए डॉक्टर गंगू जी को हम धन्यवाद देते हैं। देखते ही देखते दिन के 10:40 यहाँ पर होने को चले, और चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। आप सभी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, कहते हैं जीवन की जो सुंदरता होती है वो छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है, वो छोटे छोटे क्षणों में होती है, वो छोटे छोटे पलों में होती है जो हम अपनों के साथ व्यतीत करते हैं। जीवन की जो सुंदरता है वो हमारे छोटे मोटे जो है प्रयासों में होती है जो हम अपनों के लिए करते हैं, वो हमारे छोटे छोटे जो है उन सुंदर कार्यों में होती है जिससे हम किसी और के जीवन में एक छोटी सी खुशी लाने की जो है कोशिश करते हैं। और वो कोशिश में जब हम सफल होते हैं तो वो प्रयास जो है, वो कोशिश जो है हमें खुशी देती है। और जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है।

0: ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है, ये छोटे छोटे सुख जो है, यही अपने आप में इतने बड़े होते हैं कि जीवन को और भी सुंदर बना देते हैं। चलिए अभी के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: माफ कीजिएगा, इस वक्त कोई विज्ञप्ति नहीं है, तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं इस गणेश चालीसा की ओर। भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का समापन हम करते हैं और इसी के साथ आज का जो भक्ति धारा कार्यक्रम है वो भी समाप्त हो जाएगा। आप सबके प्यार के लिए, आप सबके स्नेह के लिए, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। भगवान गणेश की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। 11 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद जो है सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: एक बार फिर सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे विधि माँ, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को देखते हुए राज्यसभा में बहस किया गया डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 पीड़ितों की सुरक्षा को काफी मजबूत करने का प्रावधान करता है।

0: ये विधेयक आज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए घरेलू हिंसा के दायरे का विस्तार करता है। डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। घरेलू हिंसा के मामलों में अब पीड़िता को अपने घर और बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ये जिम्मेदारी आरोपी की होगी। अदालत आरोपी को घर से बेदखल करने का आदेश दे सकती है या उस पर पीड़िता के लिए वैकल्पिक आवास का खर्च उठाने की बाध्यता लगा सकती है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपए का बकाया है, जिसमें से 2.92 बिलियन रुपए पुराने बकाया के रूप में हैं। ये आंकड़े कल मंगलवार 30 जून ऊर्जा मंत्री पथका सेवादेन द्वारा सांसद अविनाश राम कलावन के एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में संस्था की वित्तीय स्थिति के बारे में साझा किए गए। पत्रिका सेवादेन ने आगे बताया कि एक क्यूबिक मीटर पानी की उत्पादन लागत 24 रुपए है, जबकि CWA को बेचे गए प्रति क्यूबिक मीटर पानी से औसतन केवल 14 रुपए ही प्राप्त होते हैं, जिससे प्रति क्यूबिक मीटर 10 रुपए का घाटा होता है। मंत्री ने पुष्टि की कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग करने वाले क्षेत्रों के लिए पानी की दरों में संशोधन आने वाले महीनों में किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए जनता को आश्वस्त किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को इस कदम से बाहर रखा गया है। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिन्हें एक साल के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया है। इन डॉक्टरों के अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए थे। ये जानकारी कल राज्यसभा में सांसद आश्रय रामदास के एक प्रश्न के उत्तर में संबंधित मंत्री अशोक सुभो ने दी। राज्यसभा में ही मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को लेकर हो रही G2G समझौते पर भी चर्चा हुई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन साल की शुरुआत से ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्री माइकल सिक्वेन ने कल सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में पुष्टि की कि जुलाई के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। और विदेश में वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के 6 दिन बाद जॉर्डन की एक बचाव टीम ने 3 साल के एक बच्चे को मलबे से जीवित बाहर निकाला है। देश के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बच्चे के बचाव को आशा की किरण बताया है। ये राहत कार्य ऐसे समय में सामने आया है जब संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि हजारों लोगों को भोजन और आश्रय की तत्काल आवश्यकता है। पिछले हफ्ते आए भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1943 हो गई है, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। इन ही खबरों के साथ 11 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। D12 NHDC विलनौ में बर्ग में 88 साल की 88 years old की श्रीमती पुष्पा नारायणन पैदायशी नाम रामसामी और जो देवी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी बेटी रजनी नारायणन के घर D12 NHDC विलनौ में बर्ग से उठाकर तोम्बो में बर्ग की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: शम्मे फरोज़ा।

इमाम हसन मुस्तबा इमाम हुसैन शहीद करबला के नाम अलहसन वलहुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्ना, ये जन्नत के नाम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादों के ये नाम मुकर्रर हुए। ये वो अजीम व शान हस्तियाँ हैं जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैनन, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में बिठाए हुए इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी उंगलियाँ और दाढ़ियाँ मुबारक में दाखिल फरमाकर और उनका मुँह खोल कर बोसा ले रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु वअहिब्बा मन युहिब्बुहु, ए अल्लाह इससे मोहब्बत करता हूँ तो भी इससे मोहब्बत फरमा और इससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करता है। इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलहुसैन अलहसन वलहुसैन सैयद शबाब बिअहलिल जन्ना, ये मेरा बेटा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, यानी हसन और हुसैन दुनिया के मेरे दो फूल हैं, इनसे खुशबू आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह भी फरमाया, हाजान इबना व इबना इबनती, ये दोनों मेरे बेटे और मेरे नवासे हैं, यानी मेरी बेटी के बेटे। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों को महबूब रखता हूँ और तू भी उनको महबूब रख, और जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला, ए अल्लाह तो उससे भी मोहब्बत फरमा। मेरे आका ने फरमाया, मन अहब्बहुमा फ़कद अहब्बनी व मन अबगज़हुमा फ़कद अबगज़नी, जिसने मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत रखी गोया उसने मुझसे मोहब्बत रखी, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जो मेरे हसन हुसैन से बुग्ज़ रखता है मैं उससे बुग्ज़ और उसने मुझसे बुग्ज़ व अदावत रखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे जो नाज़ो नियम के पाले हुए और आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद के खिलाए हुए राकिब दोशे पैगम्बर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सवारी करने वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर सवार होने वाले हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुम। अब तारीख बदलती है और हालात का जायज़ा लेते हैं तो ये मालूम होता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह तबारक व तआला, 60 हिजरी के मेरे हदीस के अल्फाजों में आया है कि 60 हिजरी को अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने बतौर ख़ास फरमाया कि मेरे इस फितने से मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के तकरीबन 60 या 61 हिजरी के बाद में ये वाक़ रूनुमा हुआ, और इस तरह से रूनुमा हुआ कि हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला का विसाल हुआ और उसके बाद में यजीद तख्त नशी हुआ, और जब यजीद जो है ज़बरदस्ती जो उसका अहल नहीं था शराबी और कबाबी आदमी था वो जब तख्त पर बैठा तो उसने बहुत कुछ लोगों को ख़ास किया, और ख़ास करने के बाद इस्पेशली मदीना मुनव्वरा के लोगों को और वहाँ के गवर्नर को एक ख़त लिखा, उनका नाम था वलीद बिन अक़्वा, उनको लिखा कि अपने बाप की वफ़ात की इतला देता हूँ और लिख कर के ये हर खास व आम से मेरी बायत ले लो, और बिलखसूस इमाम हसन हुसैन बिन अली से, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से और अब्दुल्ला इबन उमर से रदी अल्लाह तआला इनसे मेरी पहली बायत ले लो, और इनको एक लम्हे का मोहलत भी नहीं देना है, और अगर ये कुछ एहतजाज करें तो फिर आपको जो है गर्दन उतारने का भी इजाज़त है। ये इसने लेटर लिखा। अब यहाँ से जब ये खेल शुरू होता है और तारीख़ इस्लाम हमें बताती है, रो रो करके ये बात बता रही है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की वादियों से जो इस्लाम दिया था और जो कुरान की आयात अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पर नाजिल हुई थी, मदीनतुल मुनव्वरा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था, जिस उम्मत के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन तीन पत्थरों को अपने पेट से बांधा था, खंदक की मिट्टी उठा करके अपने सर पर रख करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डाला था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत की बख्शिश व नजात की दुआएँ फरमाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत की खातिर उहद की वादी में अपने दंदान मुबारक के टुकड़े को शहीद कराया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत की खातिर जो है जो उम्मत की खातिर बदर के लिए निकले, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर औज़लियाँ डाली गई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, अल्लाह अकबर, मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो है रास्ते में जो है कांटे बिछाए गए। आज हाल ये हुआ कि जब इस्लाम अपनी पूरी ताकत और फरावानी के साथ जलवागर है और पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा है और पूरी दुनिया में इस्लाम की एक अपनी शोहरत और शान है, हर आदमी इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो रहा है, ऐसे दौर में एक नापाक आदमी जो है तख्त नशी होता है, और तख्त नशी होने के बाद इमाम हुसैन वाला जद्दी वाली

सलाम से बैत का मुतालबा करता है। तो जब बैत का मुतालबा किया गया, ये ख़त पहुँचा, तो आपने जो वलीद ने वलीद बिन अकवा जो वहाँ के गवर्नर थे मदीनतुल मुनव्वरा के, उन्होंने बुलाया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को। जब यह खबर सुनाई तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई। और उसके बाद जब यह खबर सुनाई गई कि अब यज़ीद तख्त नशीं हो गया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो उस वक्त हालात ये हुए, तो कहा कि आप अपनी बायत कर लीजिए। इमाम हुसैन शहीद करबला ने कहा यह कैसे हो सकता है कि मैं एक फासिक और फाजिर और एक जालिम आदमी जो शराबी और खुल्लम खुल्ला कुरान की हदूद को तोड़ता है, अल्लाह के हदूद को पामाल करता है, मैं उसके हाथ पर कैसे बैत कर सकता हूँ। ये हाथ है जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये कोई आम हाथ नहीं है। आप जानते हैं कि नबियों की नबुव्वत की नियाबत का हाथ है, ये मुस्तफ़ा जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत का दस्त है, ये सिद्दीक अकबर की सदाकत का हाथ है, ये फारूक आजम की अदालत का हाथ है, ये उस्मान गनी की सखावत का हाथ है, ये मौला अली पाक मुर्तदा की शुजात का हाथ है, ये फातिमा ज़हरा की चादर तथहीर का हाथ है, ये उम्मत बैजा का हाथ है, ये काबे की हिफाजत का हाथ है, ये कुरान पाक की हिफाजत का हाथ है, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन शहीद करबला ने कहा कि आप जानते हैं और उसके बाद भी आप मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ हालात नासाजगार हुए और उसके बाद आप अपने घर तशरीफ ले आए। आपने ये सुन रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मदीनतुल मुनव्वरा में कोई ऐसा मामला पेश आ जाए जिसकी वजह से यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाए। इमाम हुसैन शहीद करबला अपने घर आए, अपनी बहन जैनब से कहा कि अब ऐसा महसूस होता है कि मेरे ऊपर मदीनतुल मुनव्वरा की गलियाँ तंग हो गई है, जिन गलियों को मेरे नाना जान ने आबाद किया था, जिस शहर मदीना के लिए मेरे आका जान मेरे नाना जान ने दुआएँ फरमाई थी, आज ऐसा लगता है कि तख्त नशीं यजीद हो गया है और उसका परवाना भी यहाँ तक पहुँच चुका है। अब ऐसा ना हो कि उसके लिए मदीनतुल मुनव्वरा में तलवारें खींच जाएँ और तलवारें खींचने के बाद आले मोहम्मद के जो खून बहाए जाए और उसके बाद में नहा गहाना लोगों को यहाँ शहीद कर दिया जाए और शहर रसूल को के तकद्दस को पामाल कर दिया जाए। इमाम हुसैन शहीद करबला ने कहा कि मेरा इरादा यह है कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा के लिए हिजरत कर जाते हैं। बहन जैनब ने कहा भाई मैं तैयार हूँ। उस तैयारी के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा, आपने अपने चूंटों पर जो है सामान को तैयार किया और कजाबे तैयार करने के बाद ऊँटों पर सामान को रखा गया और रखने के बाद हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम रात के वक्त में यहाँ से कूच करके मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ जाएँगे और जब हालात साजगार हो जाएंगे तो वापस मदीनतुल मुनव्वरा आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, रात का तारीखी वक्त हुआ और तारीखी वक्त में इमाम हुसैन शहीद करबला सैयदा जैनब के साथ और उनके दोनों बेटे उन्होंने मोहम्मद के साथ में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सलाम करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये ऐसा मंजर था, आप अंदाज़ा करें कि जब एक आदमी मदीनतुल मुनव्वरा जाता है 10-15 दिन के लिए उम्रा करने जाता है, 8 दिन या 7 दिन या 5 दिन का मौका मिलता है, अल्लाहु अकबर, जब शहर नबी से उसके लिए कहा जाता है कि जाओ, उसका पत्थर जैसा दिल भी होता है वो भी पिघलना शुरू हो जाता है और उसकी आँखों से जो है पलकों से पानी की लड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। हाय मैं किस मोहब्बत के साथ में और किस तरह से यहाँ शहर रसूल पहुँचा था और आज जाने का और वापसी का भी बुलावा आ चुका है और उसका ऐलान हो चुका है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अंदाज़ा करें आप हजरात कि जब हम और आप 5-10 दिन के लिए जाएं तो ये हालत इश्क वालों की होती है, जो हुसैन मदीना में ही पैदा हुआ हो, जिसका बचपन मदीना में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीना में गुजरी हो, जिसकी शादी ब्याह और बच्चे जो हैं खाना मदीनतुल मुनव्वरा में हो और जिसने अपने नाना को मदीना को बनाते हुए देखा हो, जब उसने मदीना से रुखसत फरमाई होगी तो उस वक्त क्या हाल हुआ होगा। बहरहाल इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रात की तारीख में हिजरत फरमा के मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले आए। यहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, आपका इस्तकबाल फरमाया और आप यहाँ रहने लगे और रहने के बाद में आपने यहाँ खिदमत खिदमत अंजाम दी। अल्लाहु अकबर कबीरा, उधर से यजीद के मुसलसल फरामीन पर फरामीन जारी हो रहे हैं और वो इस तगदो में लगा हुआ है कि किस तरह से हम हुसैन इब्ने अली की बैत कर ले। वो ये जानता था कि दुनिया की हमें तमाम ताकत और पूरी दुनिया मिल करके भी अमीर मान ले और हमें बादशाह इस्लाम मान ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जब तक कि फ़ातिमा का लाल अली का शेर हमको नहीं मानेगा तो कोई हमें नहीं मान सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तआला मक्कतुल मुकर्रमा में है। अल्लाहु अकबर, इधर शव्वालुल मुकर्रम की तारीखें आ रही है और लोग कशाकशा अपनी आबादियों से चल करके मक्कतुल मुकर्रमा हज करने के लिए आ रहे हैं। अब हालात ये हुए, उधर से कूफा से जो है मुसलसल खतूत पर खतूत आ रहे हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपने लेटर भेजे, ए हुसैन इब्ने अली आ जाओ, ए हुसैन इब्ने अली आ जाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं, हमारे दिल तुम्हारे साथ में है और क़यामत के दिन ऐसा ना
ہو کہ آپ اگر تشریف نہیں لائے اور آپ نے بیعت نہیں کی تو ہم قیامت میں آپ

0: आपके नाना के दरबार में खड़े होकर के कहेंगे कि आपके नवासे को हमने दावत दी थी बायत इस्लाम के लिए, वो तशरीफ़ नहीं लाए तो मजबूरन हमें एक फांसी को फाजिर और शराबी के हाथ पर बैत करना हुआ। ए हुसैन इब्ने अली आ जाओ, इस्लाम का शेराजा बिखर रहा है। ए हुसैन इब्ने अली आ जाओ, कुरान की खुल्लम खुल्ला बेहुरमती हो रही है। ए हुसैन इब्ने अली आ जाओ, यतीमों को सताया जा रहा है। इस तरह के दर्द भरे लेटर लिखे गए, एक नहीं 1000 से ज़्यादा लेटर लिखे गए। और लेटर लिखने के बाद में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अनु को जब भेजा गया तो आपने जाने का इरादा फरमाया, तो जो सहाबा इकराम मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद थे उन्होंने मशवरा किया कि हुसैन इब्ने अली आप कूफा नहीं जाओ, वहाँ जाओगे तो हालात साजगार नहीं होंगे, आप यहीं पर रहिए, हम फौज को तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद फिर यजीद का मुकाबला किया जाएगा। हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता जिसके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना जान ने फरमाया था कि ऐसा मेंढा ज़िबा किया जाएगा कि जिसका जो खून के छींटे काबे के दीवारों पर आकर के पड़ेंगे तो मैं वो बनना नहीं चाहता हूँ। सहने काबा को मैं खून से भरना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने तैयारी फरमा ली और अज़्म मुसम्मम कर लिया। अल्लाह का वादा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत ये थी और इमाम हुसैन शहीद करबला को करबला के मैदान तक पहुँचना था। अल्लाहु अकबर कबीरा, उसके असबाब बनते रहे। फैसला ये हुआ कि पहले आप अपना नायब और अपना वकील और अपना नायब बना करके हज़रत मुस्लिम बिन अकील को आप भेज दें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की वादी के लिए रवाना किया गया और फरमाया जाके हालात का जायज़ा लो, जो लोगों ने खतूत में लिखा है कि वाकई ऐसा ही है, अगर इस तरह के हालात हैं तो फिर तुम मुझे अपनी तरफ से ख़त लिखना, अपनी मुहर लगा करके भेजना, जैसे ही वो ख़त मिलेगा तो मैं भी अपने ख़ानदान के साथ में कूफा की ज़मीन पर जलवागर हो जाऊँगा। अल्लाह अकबर, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की ज़मीन पर आए तशरीफ़ ले करके तो हालात को आपने देखा तो बहुत गर्म जोशी के साथ लोगों ने इस्तकबाल फरमाया। नाइब हुसैन आ गए हैं, नाइब इमाम तशरीफ ले आए हैं, लोग हाथ चूम रहे हैं, पांव चूम रहे हैं, बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया। आपके दो शहजादे भी आपके साथ में थे, उनका भी इस्तकबाल हुआ। अल्लाह अकबर, देखते ही देखते 40,000 से ज्यादा लोग हल्का बैत में शामिल हो गए। अल्लाह अकबर, हर तरफ यजीद की मुखालफत के नारे लगाए जा रहे हैं, इस्लाम जिंदाबाद और इमाम हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। हालात का जायजा जब दिया गया और हालात ने जब करवट ली तो मालूम हुआ कि कूफा के जो गवर्नर हैं नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला वो सहाबी हैं और उनके दिल में बड़ी मोहब्बतें हैं, अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये तजवीज़ पाई, जब यजीद के लश्कर और यजीद के हाउस में, गवर्नर हाउस में ये खबर पहुंची और उसके महल में ये खबर पहुंची, तो उसने ये तजवीज़ दी कि कोई ऐसा सख्त गवर्नर जो कातिल और फासिक और फाजिर भी है उसको भेजो। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो बसरा का गवर्नर था उसके लिए लेटर लिखा गया और उसको वहाँ कूफा का गवर्नर बनाया गया और कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को माजूल कर दिया गया, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बड़ी साजिश के साथ में कूफा में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद इसने कूफा में आकर ये जो कत्ल गारत करी की और जो तूफान बदतमीज़ी मचाया वो तारीख की किताबों में दर्ज है। अलमुख्तसर ये है कि इसने जो है लोग जो कशाकशा जिम्मेदार थे उनको यके बाद दिगरे उनको कत्ल किया और उनको गवर्नर हाउस में कैद करके रखा। उसके बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला को भी दर्दनाक तरीके से इसने शहीद कर दिया और उसके बाद उनके दोनों बच्चों को शहीद किया गया। हालात पूरे करवट ले गए और जो कल तक नारे इमाम हुसैन की मोहब्बत के लगाए जा रहे थे वो आज अदावत में लगने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा, देखते ही देखते 22,000 का लश्कर तश्कील पा गया। इधर जब हालात साजगार हुए थे तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला ने आपने ख़त लिख दिया और इस तरफ ये ख़त पहुँच चुका था और ये ख़त लेकर के इमाम हुसैन करबला की तरफ रवाना हो चुके थे। इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अनु का काफ़िला इधर मक्का से चल करके कूफा की तरफ जा रहा है और उरद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपको रास्ते में ही इसकी ख़बर मिली। बहुत सारे लोगों ने रास्ते में मशवरा दिया कि आप ना जाएँ, लेकिन मशीयत को यही मंजूर था कि आप करबला की ज़मीन पर पहुँचे और इमाम हुसैन शहीद करबला का काफिला ये कूफा की करबला की ज़मीन पर पहुँचा। उसके बाद के क्या हालात हैं वो इंशाअल्लाह ताला अगले खुतबे में बयान करेंगे। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़े सामईन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। आइए समाअत फरमाइए एक ऐलान। 4 जुलाई, जी हाँ, शनिचर 4 जुलाई सुबह 10 बजे शान रसूल मस्जिद

मस्जिद लागीलोश पोर्टलुइस में आली माँ सैयदा उनाजा फातिमा की सरपरस्ती में 11वीं शरीफ के ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

मौजूद सामीन, आइए एक हदीस समात फरमाइए। जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब यानी गलतियों पर पर्दा डालता है तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप से अनजाने में किसी इंसान की कोई गलती या कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाए तो उसे दूसरों तक पहुंचाने या मजाक उड़ाने के बजाय छुपा लें। बदले में अल्लाह ताला आपके गुनाहों और खामियों को दुनिया और आखिरत में लोगों से छुपा कर आपकी इज्जत और पर्दापोशी फरमाएगा।

संगीत प्रेमी श्रोतनो नमस्कार सुस्वागतम सतरंग कार्यक्रम में आप अपने स्वागत सु तरसिखो में आशा करते कि आप ठीक आहत मजे तहत एंड चुनी करी तहत ऑन MBC रेडियो तरसिखो शुभारंभ केला है आम ही एका अप्रतिम गणेश गाण्याने अनुराधा पूर्वांच्या

लग शब्द सकम जान मौनम लंबात दिल निलकू पकड़ी कलम शब्दों समझे दुनिया भरम बड़े शब्द अहम जाने करम छे ख्वाहिश दिल मावात कहवानी हिम्मत न दी बात बोलवानी रहे आतुरता वात जानवानी दुनिया मजा दर्दो नि माने आपे आपद शब्दों ने वैण उगड़े जहर शब्दों ने वैण शब्दों चुभे हा काटा नि जैम शब्दों चिरे हा कातर नि जैम बोले बता वात सांभड़ शिकोण बात सांभड़ो हवे रही मौन समझा से शब्दों नु षड्यंत्र अति मौन जे वो हवे कोई मंत्र।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में 2:30 बज रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके लाए हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। जी हाँ, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो चलिए, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम। फ़ोन नंबर आपको पता है 4028085। हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251705।

मनचाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद से आगे बढ़ाएंगे और अगला गीत जाने वाला है विद्या जी के लिए, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो उनका ये मनपसंद गीत जो है हम चलाएंगे उनके समस्त परिवारों के लिए, और साथ ये गीत जाएगा उनकी चाची कुमारी के लिए, उनकी बहन है सती, साथ में है सुरेखा और वेदना है प्रीति, विमला, बबीता, सुनीता। तो इन सभी लोगों के नाम जो है, ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। तो चलिए इस गीत को हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए श्रोताओं, 4028085 पे बहुत ही प्यार के साथ आप दे रहे हैं, तो ये कार्यक्रम जो है आप ही के सहयोग से चलता है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251705। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

0: चलिए इसी गीत पे हम नाम जोड़ेंगे। काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। हमारे साथ माँ गायत्री जी है, नुवेल फ्रांस की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। उनके बेटे अजय, उनके सभी परिवारों के लिए खास ये गीत जो है जाने वाला है समस्त बंधु परिवार के लिए जो त्रियोले के रहने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता।
2: कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
1: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
2: सोचने दो।
1: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
1: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
2: तुम मुझे प्यार करते हो।
1: बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
1: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
2: प्यार करते हो ना?
1: पर जरीन, तुम
3: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

तो चलिए श्रोताओं, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो है एक्वायो की रहने वाली सेलू जी जो है हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। समस्त पेंटाया परिवार है तो उनके नाम जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं। और श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम चलाने वाले हैं तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4028 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251700052। चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये प्यारा सा गीत आप सुन पाएंगे।

तो चलिए श्रोताओं, अगला गीत हमारे साथ मौदार बेग की अनिता, करुणा, अमृता, कविता और उनके सभी दोस्तों के लिए अगला गीत हम चला रहे हैं।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। ये अगला गीत जो है जाने वाला है। वैसे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हम कहेंगे बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है इस समय काफ़ी लोग हैं। आप हैं किरीना, साथ में हैं इंदिरा, उनके भाई है राकेश, साथ में है धीरज, उनके बेटे है नमलेश, बेटी है किरीना, साथ में है सिमला, रोजबेल के रहने वाले। तो इन सभी लोगों की मांग पे जो चलिए एक अगला गीत जो है बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। तो श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे कुछ ही घड़ी में दोपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

तीन बजे के समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और नमस्कार। बात करते हैं हम स्थानीय स्तर के बारे में। पेंशन सुधार पर विशेषज्ञ समिति की अंतरिम रिपोर्ट की हम बात करें, जिसे कल प्रधानमंत्री ने संसद में पेश किया। ये रिपोर्ट तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसका उद्देश्य व्यापक परामर्श के आधार पर मौजूदा पेंशन प्रणाली में ऐसा सुधार करना है जो पर्याप्त, टिकाऊ और न्यायसंगत हो। 271 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में मींस टेस्ट का प्रस्ताव भी शामिल था। इसके तहत 60 वर्ष की आयु से आय के आधार पर चरणबद्ध पेंशन देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि बजट भाषण में इस प्रस्ताव को शामिल किए जाने के बाद इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज के हमारे सायंकालीन संस्करण में हम रिपोर्ट के पहले भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें मॉरिशस की जनसंख्या की बदलती संरचना और बढ़ती आयु वाली आबादी से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। मृत्यु के बाद व्यक्तिगत डिजिटल डेटा का क्या होता है, इसी महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर शीला ओमुगम ने शोध किया है। उन्होंने हाल ही में डिजिटल आफ्टर लाइफ, अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर लॉ टेक्नोलॉजी एंड विक्टिम जस्टिस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक में लेखिका ने किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके डिजिटल खातों और व्यक्तिगत डेटा के बेहतर प्रबंधन तथा सुरक्षा के लिए एक डिजिटल चार्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अफ्रीका अब अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भरता कम करते हुए निवेश, नवाचार और आर्थिक साझेदारियों को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ मंगलवार को मॉरिशस में अफ्रीका बियॉन्ड एड शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए सरकारी नीति निर्माताओं, उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य मॉरिशस और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना तथा व्यापार और निवेश के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय बजट में ध्वनि प्रदूषण के लिए जुर्माना दुगना करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे अपराध पर जुर्माना 10,000 रुपये से बढ़कर

0: 20,000 रुपये किया जाएगा। आम उल्लंघनों में गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से होने वाली तेज आवाज, ब्रेक फायरिंग और पड़ोसियों को परेशान करने वाली स्पीकरों की तेज ध्वनि शामिल हैं, लेकिन नियमों को सख्त करने से खासकर नौजवानों के पसंदीदा ट्रेंड कम होंगे या नहीं, ये विचार करने योग्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेक्सिको शहर में फीफा विश्व कप के जश्न के दौरान दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 19 वर्ष एक युवती, 48 वर्ष एक महिला और 44 वर्ष एक पुरुष शामिल हैं। ये घटना मंगलवार को कल उस समय हुई जब विश्व कप में इक्वाडोर पर मेक्सिको की 2-0 की जीत के बाद बड़ी संख्या में लोग राजधानी की सड़कों पर जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़े। शहर प्रशासन के अनुसार 10 लाख से अधिक लोग मुख्य रूप से शहर के मध्य स्थित एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक के आसपास एकत्र हुए। ये 1986 के बाद विश्व कप के नॉकआउट चरण में मेक्सिको की ये पहली जीत थी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार, साथ रहे सुन पाएंगे शोक समाचार। Choc samachar sunyi. Quand Charlot chemin grenier mais quand Charlot chemin grenier mais Unasi sal ke 79 years old ki Sri Rajana Naraya श्री राजाना नारायण, जिन्हें धर्मनंद के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ममिता नारायण के घर कौशौलू शमेग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दिगाले शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। रुद बॉशेरी मुकामे 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री सूरजलाल सोनिया जिन्हें विजय के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अमरावादी सोनिया के घर मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्ताओं की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमरो अत्यान ही एम Le numéro 9, Morcellement Mount, Pamplemousses, mais Morcellement Mount, Pamplemousses, mais à 6 salles, qui est 80 years old, qui est Shri Bremananda Mangapati, Jinhananda, qui n'a pas été blogzada, j'ai entendu que Mithi Hogai, hein, unki arti, रविवार को सुबह 10 बजे उनके घर पॉम्पलेमूसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: KHz ये है रेडियो मॉरिशस।
3: तो चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं।

आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पेश होता हो। हम गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इसे हम जारी रख रहे हैं। वैसे काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज जो है हमें प्राप्त हो रही है, तो चलिए कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला गीत जो है आप मन्ना डे के स्वर में सुन सकेंगे। और ये प्यारा सा गीत है जो है फिल्म खानदान से लिया गया। ये गीत जो है हमारे साथ अनीता जी जुड़ी हुई है। ये गीत उनके सभी बच्चों के लिए, उनकी तीन बेटियां हैं काजल, शीतल, दीक्षा, उनके दामाद है वितिश और उनके पति है बालदेव जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम चलाएंगे।

आपकी पसंद कार्यक्रम श्रोताओं 3:15 बज रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में। हम गीतों का ये सफ़र से आगे बढ़ाएंगे और अगला नज़ाना जो है जाने वाला है हमारे साथ जो है इस समय। जी हाँ, हमारे साथ त्रिवेणी जी है, गुडलैंड्स की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए उनके नाम जो है ये अगला गीत हम करने वाले हैं।

चलिए श्रोताओं, दोपहर के 3:23 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। मनचाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद से हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारा फ़ोन नंबर है वो है 4020885। हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5517005। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हुए ये अगला गीत जो है फिल्म नूरी से लिया गया, और ये गीत जो है आज भी लोग जो है गुनगुनाते हैं। तो चलिए ये गीत जो है हम चलाने वाले हैं केश जी के लिए, काठोबोन की रहने वाली। उनकी दो बेटियाँ हैं नेहा नितिशा, उनके दामाद है एलविन और उनके पति है आनंद जी। तो इन सभी परिवारों के लिए ये प्यारा सा गीत हम चलाएंगे।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और अगला गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए। हमारे साथ इस समय, जी हाँ, हमारे साथ अनिता जी है जो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। पिची वेयर जे सैपिया की रहने वाली है, उनके सभी बच्चों के लिए। साथ में है राधा जी जो है पिची वेयर जे सैपिया की रहने वाली है, उनके नाम जो है ये अगला गीत जाने वाला है। और गांगोप की सुनीता जी जो है हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए, इन सभी श्रोताओं की मांग पे ये अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, तो चलिए आपके लिए ये प्यारा सा गीत हम चलाने वाले हैं। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम जो है हम जारी रख रहे हैं शाम के 4 बजे तक। आपको पता है कि आपकी पसंद कार्यक्रम जो है हम चलाते हैं रोज़ाना इसी चैनल पे। तो गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं।

चलिए ये अगला गीत विश्वानु डुमंज के लिए वाकवा की रहने वाली है। ये गीत जाएगा उनकी सभी बहनों के लिए। इंदिरा शारदा है साथ में, है उनकी सहेलियां नीला, प्रतिभा, शोभा साथ में है, गीता गजारा दोस्तों, इन सभी लोगों के नाम जो है ये बहुत ही प्यारा सा गीत है। फिल्म का नाम है माचिस। तो इस गीत को आप ज़रूर गाइए हमारे साथ।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम दोपहर के 3:40 हो चुके हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ व्हाट्सएप पे है शहनाज, आप वकवा की रहने वाली है। तो चलिए ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

चलिए श्रोताओ, ये अगला गीत जाने वाला है प्रदीप के लिए। अश्विन है, कुनर है, साथ में आनंद, आकांक्षा, मनीषा, निश्ले और हर्षिता है, नोविता है। तो इन सभी लोगों के नाम जो है, ये खूबसूरत सा गीत कैफ़ के रहने वाले चांदनी जी की फरमाइश पे।

तो चलिए ये श्रोताओं, आपकी पसंद का रिकम है कि अंत तक आप पहुंचे हैं साथ निभाने के लिए शुक्रिया। कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और आप मराठी भाषा में कार्यक्रम सुन सकेंगे। तो हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, मिलेंगे कल सुबह के 6 बजे।

तुम जो फिरते हो लंबी कार।

pretty angel. Oh, my heart's broken. Find her for me.

0: सावन तेरे नाम, तेरे नाम प्यार का पहला पहला सावन तेरे नाम। हमारी ओर से यही तो है पैगाम। 5:10।
1: अंताक्षरी अंताक्षरी।

नमस्कार और आदाब प्यारे श्रोताओं, हम तो जानते हैं कि आप बड़ी संख्या में अपने रेडियो सेट के करीब हैं, क्योंकि ये है बुधवार की शाम अंताक्षरी प्रोग्राम के नाम। आज उषा जी यहां नहीं आ पाई हैं, उनकी ओर से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपका साथ देंगे 6 बजे तक। आप लोग गाइए गुनगुनाइए हमारे साथ। यह है अंताक्षरी प्रोग्राम और जुलाई महीने की आज है 1 तारीख और यहाँ पर तो होते हैं गानों का सावन। और इस 1 तारीख का पहला अंताक्षरी प्रोग्राम का सावन आप लोगों के नाम। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। यही तो आप लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि आज का विषय क्या हो सकता है। तो चलिए, आज का जो विषय है बड़ा ही आसान सा है, क्योंकि आज पहला बुधवार है इस महीने का। तो चलिए हम थोड़ा लीनियंट बन जाते हैं, आप भी क्या याद करेंगे। तो चलिए, आज का जो विषय है, एक आपका एक हमारा, एक मेरा एक तेरा, यानी आप अपनी पसंद का कोई भी गाना गाइए जो आपके दिल के एकदम करीब हो, और उसी गाने को लेकर तुरंत ऑन स्पॉट हम एक प्रश्न पूछेंगे आपसे, जिस पर आपको दूसरा गाना गाना होगा। अब ये जो दूसरा प्रश्न होगा ये तो एक सरप्राइज के तौर पर। तो चलिए, आप नंबर मिला लीजिए 4028085 पर फोन करें और आप अपनी किस्मत आजमाइए। पहला गाना आपकी ओर से अपनी पसंद का, और दूसरा गाना हम आपसे तुरंत प्रश्न करेंगे, देखेंगे कि आज कौन है वो लकी स्टार ऑफ द वीक। तो चलिए, 1 तारीख है और यहां पर हम बढ़ेंगे पहले गाने की ओर, जब तक कि कोई और यहाँ पर नहीं आ जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ, कुमार सानू जी की आवाज़ में पहली नज़र। और ये गाना जो है खासकर पूजा जी के लिए, और मेधा जी, अरुणा जी और दामिनी जी और पूजा जी चिल्ड्रंस कोर्ट में वे कार्यरत हैं और उन्होंने इस गाने की मांग की है। चार 0208085 पर फोन करें और भाग लें लाइव एंड डायरेक्ट।

0: चलिए, थोड़ी सी खराबी थी फोन में जो अब सुलझ गई है ये समस्या। तो हम पहले श्रोता का स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस AM2 की लहरों पर। हेलो
1: हेलो रोशन जी, मैं हूँ राधा।
0: राधा जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम अंताक्षरी में।
1: सप्ताह के दिनों के बाद आज फिलहाल लाइन मिली।
0: हाँ जी, क्या करें, बहुत से लोग फोन कर रहे हैं और गत सप्ताह तो यहाँ पर स्टूडियो में लाइव एंड डायरेक्ट कंपटीशन थे। हाँ, फाइनल था म्यूजिक डे के अवसर पर। तो चलिए, आप पहला गाना अपनी पसंद का गाइए। ओके, गाइए राधा जी।
1: हम तुम ये बाहर देखो, रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिमझिम ये पुआर दिल दायरे मल्हार एक आग लिए सीने में। हम तुम ये बाहर देखो, रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिमझिम ये फुहार दिल गायरे मल्हार एक आग लिए सीने में।
0: बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया, आग लिए सीने में, बहुत ही सुंदर सा। तो चलिए, दूसरा गाना आपको गाना पड़ेगा। म शब्द से शुरू करना पड़ेगा आपको।
1: किस सबसे?
0: म म अक्षर से, म अक्षर,
1: म अक्षर से।
0: म अक्षर, बिल्कुल गाइए।

0: बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया है राधा जी, दोनों गाने जो आपने गाए हैं बहुत ही सुरीली आवाज में, ऐसे ही आप गाती मुस्कुराती रहे, धन्यवाद
1: धन्यवाद रोशन जी, शुभ संध्या, शुभ रात्रि,
0: शुभ संध्या आपको भी।

0: चलिए अब हम स्वागत करेंगे अगले श्रोता का. हेलो,
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी.
0: नमस्ते. इंदिरा जी फ्रॉम ओदाबेया, कैसी हैं आप इंदिरा
1: जी?
0: जी
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं जी. बताइए इंदिरा जी, कौन सा गाना बेहद पसंद करती हैं?
1: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम. ओके,
0: बहुत ही सुंदर सा गाना, साजन फिल्म से लिया गया. चलिए अब आपने कहा साजन फिल्म से, एक और गाना आपको गाना पड़ेगा. अब एक और गाना फिल्म साजन.

0: जिनका
1: शायर है, मैं तेरी शायरी, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरी साजना।
0: क्या बात है इंदिरा जी, आज आप तैयार होके आई हैं। बहुत ही धन्यवाद, राधा जी की तरह आप भी स्टॉप द वीक बन गई हैं। धन्यवाद,
1: ओके, थैंक यू
0: बाय
1: वेरी मच।
0: बाय।

0: समय पर।
1: जी आप शायर हैं या आशिक हैं पता नहीं, देखते हैं आप कौन हैं। हेलो
2: नमस्ते रोशन जी।
1: नमस्ते, ये तो श्यामा जी हैं फ्रॉम व्यू में, कैसी हैं श्यामा जी?
2: मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं ना?
1: हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अभी ठंड का मौसम है, बहुत मजा ले रहे
2: हैं। ठंड हो रही है।
1: हाँ जी, लेकिन बहुत ही आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
2: हाँ?
1: चलिए आप बताइए हमें आपका पहला गाना जो आप बेहद पसंद करती हैं, प्लीज गाइए।

0: बहुत ही सुंदर सा गाना गाया आपने बेगुनाह फिल्म का, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, कोई भी गाना आप गाइए जिस गाने में ये शब्द आता है प्यार, कोई भी गाना जो प्यार पर आधारित हो, इस शब्द को आप चुनिए और गाइए।
1: मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है और फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है, मैं प्यार का दीवाना।
0: बिल्कुल, आप प्यार की दीवानी हैं और अंताक्षरी प्रोग्राम की भी आप दीवानी हैं। ऐसे ही आप गाती मुस्कुराती रहें श्यामा जी, मिलेंगे अगले सप्ताह। बाय।
1: ओके, बाय
0: बाय।

0: हेलो,
1: नमस्ते रोशन जी। धन्यवाद।
0: नमस्ते शोभा जी, आपका स्वागत है अंताक्षरी प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? ठीक?
1: मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं जी। चलिए, आपका पसंदीदा गाना आप प्लीज गाइए सभी लोगों के लिए।
1: ओके।
0: गाइए।
1: घूंघट की आरसे दिल भर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आरसे दिल भर का।
0: दिल भर का।
1: थैंक यू
0: बहुत ही अच्छा गाना आपने गाया है, बहुत ही सुंदर सा गाना। फिल्म हम हैं राही प्यार के, और आप तो राही हैं अंताक्षरी प्रोग्राम के, है ना। अच्छा जी, ये तो आमिर खान और जूही चावला पर आधारित फिल्म हम हैं राही प्यार के। ओके, कोई और गाना गाइए जिसमें आमिर खान और जूही चावला साथ नजर आए थे इस फिल्म को छोड़कर। आयो, ये क्या हो गया?
1: तो
0: बहुत ही
1: याद नहीं
0: आसान है ये
1: ना।
0: तो। कोई भी गाना आप गाइए जिसमें जिसमें आमिर खान और जूही चावला है। नहीं याद आया?
1: नहीं
0: ओ ओ लला, ये गाना आपको पता है?

0: दिल भर का, दिल भर का, दिल भर का। चलिए अब हम बात करेंगे अगले श्रोता के साथ। हेलो,
1: हेलो भाई रोशन।
0: नमस्ते माला जी फ्रॉम पुशीतोत।
1: हाँ,
0: कैसी हैं आप माला जी?
1: मैं थोड़ी बीमार हूँ, और आप?
0: हम भी ठीक हैं जी। आप बीमार हो गए, कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप स्वस्थ हो जाएं।
1: थोड़ा खांसी है।
0: थोड़ी खांसी आ रही है आपको? हाँ, मौसम का असर है, अभी तो ठंड का मौसम है ना। हाँ जी, सर्द हवा चल रही है, क्या करें। हाँ तो बताइए, पहला गाना आप कौन सा गाएंगी? गाइए,
1: पुराना गीत है।
0: कोई बात नहीं, जो दिल चाहे गाइए।

0: कहाँ
1: जी हाँ, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। ओके, कोई गाना आप गाइए जिस गाने में दिल शब्द आता है, कोई भी गाना।
0: दिल चाहे आसमां पे लिख दो ना तेरा हो दिल चाहे।

0: दूँ ना फिरा।
1: वाह क्या बात है। एक जान है हम फिल्म का गाना आपने गाया है, बहुत ही रेयर गाना आपने गाया है। बहुत लोग इस गाने को नहीं गाते हैं इस प्रोग्राम के दौरान। ओके बाय बाय आपको,
0: बाय
1: और
0: बाय, शुभ
1: अपने अपना ख्याल रखें। ओके okay?
0: संध्या।
1: शुभ
0: हाँ
1: संध्या
0: जी,
1: आपको भी।
0: शुभ
1: बाय
0: संध्या।
1: बाय।
2: I love you. You love me? I love you. तुम मुझसे प्यार करती हो?
1: जी हाँ, आप इस प्रोग्राम से प्यार बेहद बेहद बेहद करते हैं, ये तो हमें है पता। चलिए अब हम देखेंगे, पता लगाएंगे कि कौन है वो श्रोता। हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते भाई, कैसे
0: हाँ नमस्ते भाई।
1: हैं आप?
0: अच्छा भैया, अच्छा हुआ ना।
1: हाँ ठीक है जी, और आप कैसे हैं?
0: हम ठीक है भैया।
1: अच्छा, नुवेरफोन से भाई जय बोल रहे हैं।
0: हाँ
1: तो भाई जय, आपको एक टुकड़ा गाना है, अंतरा नहीं है।
0: हाँ
1: ओके, कोई भी गाना जो आप बेहद पसंद करते हो प्लीज गाइए।
0: एक तरह साबुत के गीत सुनाता हूँ।
1: अच्छा गाइए।
0: तुम तो दिल के तार छेड़ कर
1: वाह
0: खो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर
1: बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर गाना आपने गाया है, रात भर।
0: तुमको नींद
1: कोई
0: आएगी,
1: बात नहीं भाई,
0: तुमको
1: प्लीज प्लीज
0: सो ही
1: भाई।
0: जाओगे, बात
1: अच्छा आप
0: बात
1: गाओ,
0: पे अदा हम। ठीक है भैया।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने, मैं जानता हूँ आप गाना बेहद पसंद करते हैं, तो
0: गाने
1: अब
0: का तो जी चाहता है लेकिन
1: हाँ, लेकिन क्या
0: आपके
1: करें,
0: पास वक्त नहीं है।
1: हाँ इतना ज़्यादा समय नहीं है ना भाई, इसीलिए एक दिन आपको बुलाएंगे स्टूडियो में ताकि आप गाते रहें और आपके साथ और कोई दोस्त आए वो भी गाएं। भाई जय, आपके गाने में ये शब्द आया है रात।
0: रात।
1: हाँ जी, कोई भी गाना जिसमें ये शब्द रात आता है बहुत ही आसान है, गाइए। कोई भी गाना जिसमें ये शब्द आता है रात।
0: आ जाओ तड़पते।

0: ओके भाई जी, ओके ओके भाई भाई भाई भाई, ओके ओके ओके भाई, बहुत धन्यवाद जय भाई, आपने दोनों गाने जो गाए हैं बहुत ही पुराने लेकिन बहुत ही बढ़िया, और आपकी आवाज़ उन गानों में खूब जचती है। धन्यवाद भाई जी, ऐसे ही आप गाते रहे। आप
1: हम ऐसे तो हार गाते थे लेकिन मौका नहीं है,
0: कोई बात नहीं, लेकिन आपने दो गाने गाए हैं और बहुत लोग आपको पसंद करते हैं आपकी आवाज। धन्यवाद, बाय।
1: धन्यवाद भाई, धन्यवाद
0: भाई। जी हाँ, जय भाई के बाद कौन श्रोता आया है, चलिए हम उनसे मिलते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन भैया।
0: नमस्ते इंदिरा बहन फ्रॉम मेबर्ग। कैसी हैं आप? ठीक
2: ठीक है, हाँ ठीक है।
0: हाँ जी, तो बताइए हमें, आप कौन सा गाना बेहद पसंद करती हैं, गाइए।
2: भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, चलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ।
0: जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया, जहाँ कहाँ, और ये जो शब्द समाप्त होता है कहाँ, है ना, तो कोई भी गाना आपको गाना पड़ेगा जिसमें ये शब्द आता है कहाँ, कोई भी गाना जिसमें ये शब्द आता है।
2: कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो छुप गया आसमां में इश्क मेरा रंग लाया।
0: नहीं जी, इसमें कहाँ है ये शब्द, कहाँ नहीं है इस गाने में।
2: कहाँ,
0: हाँ कहाँ, हमने कहा ना, कहाँ है इस ये शब्द इस गाने में, कहाँ है, कौन है लेकिन कहाँ नहीं है, ये गाना है ना, कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते। कोई बात नहीं इंदिरा जी, आपने कोशिश की है, धन्यवाद आपको।
2: अच्छा,
0: बाय,
2: शुभ
0: रात्रि आपको भी,
2: बाय
0: बाय। हेलो हेलो,
3: भाई रोशन,
0: भाई हरीश कैसे हैं आप?
3: बोबासे से।
0: हाँ जी, बोबासे से भाई हरीश जी बात कर रहे हैं।
3: चोरा गला में खराश है लेकिन कोशिश करेंगे,
0: कोई बात नहीं, अंताक्षरी का दीवाना जो है वो गले में खराश होने से थोड़े ही रुकते हैं। हाँ जी, क्या ये पहला गाना जो आप गाते
3: हैं, जैसे कि आपने शुरुआत की है
0: हाँ,
3: कुमार सानू के गाने से।
0: अच्छा, तो गाइए।
3: तो मैं भी उसी मूड में हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, चलिए, हम कुमार सानू के जबरदस्त फैन हैं।
3: आई डेडिकेटेड टू उषा बहन और गिरीश हरलोल के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है।
3: आई एम वन ऑफ माय वन ऑफ द फैंस ऑफ गिरीश हरलोल।
0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया आवाज है गिरीश भाई के। हाँ जी, बहुत ही दिल से गाते हैं गिरीश भाई।
3: गाइए। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है सबको हो रहा है खबर चुपके चुपके, ओ दो दिल रहे हैं मगर चुपके चुपके।
0: परदेश फिल्म का गाना आपने गाया है, बहुत ही सुंदर सा गाना है, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, तो कोई बात नहीं, शाहरुख खान और महिमा चौधरी इस फिल्म में थे, तो और कोई गाना आप गाइए जिस गाने में शाहरुख खान नजर आते हैं, कोई भी गाना।

0: मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा।
1: मेरी जान।
0: बहुत ही सुंदर हरीश भाई, आप भी बनते हैं तमाम लोगों की तरह स्टार ऑफ द वीक। धन्यवाद,
1: शुक्रिया, बाय
0: शुक्रिया,
1: बाय।
0: बाय।

0: जी हाँ, दो दिल वहां पर मिल रहे हैं, यहाँ पर हमारे श्रोता हमसे मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं अब कौन है वो श्रोता, किसकी आवाज आएगी। हेलो,
1: प्यार भरा नमस्कार रोशन जी।
0: नमस्कार। जब प्यार भरा नमस्कार किसी ने कहा तो ये प्रभा जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता है।
1: यस।
0: हाँ जी, बेलरोज से प्रभा जी का हम यहाँ पर शानदार स्वागत करते हैं। कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है, जैसे आप हो।
0: हाँ जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम जब हम यहाँ इस हॉट सीट पर बैठते हैं तो बहुत ही मस्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो हैं जबरदस्त।
1: थैंक यू रोशन जी।
0: तो चलिए प्रभा जी, आप अपना बेहद पसंदीदा वाला गाना गाइए, प्लीज
1: अच्छा,
0: गाइए।
1: उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए।
0: क्या बात है, ऐसे मिली नजर की आपके होश उड़ गए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। नजर पर मेरा, मेरी नजर पड़ी इस शब्द पर, तो कोई भी गाना आप गाए जिसमें नजर हो।
1: नजर के सामने जिगर के पार, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम।
0: क्या बात है। धन्यवाद प्रभा जी, बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से अपने तीन,
1: भी प्यार भरा नमस्कार में भी वो सुन रहे हैं,
0: बिल्कुल वो सुन रही होंगी आप लोगों को, तो आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी। ऐसे आप गाती रहे, मुस्कुराती रहे। धन्यवाद, बाय
1: रोशन जी,
0: बाय बाय। इस प्रोग्राम का असर तो बहुत ही गहरा है हमारे श्रोताओं के लिए, और देखते हैं कि ये खांसती हुई आवाज कौन है। हेलो,
2: नमस्ते भाई रोशन, मैं ज्योति हूँ।
0: ज्योति बहन फ्रॉम बॉम्बू।
2: बॉम्बू से मैं बीमार हूँ,
0: सो सॉरी टू लर्न दैट।
2: लेकिन मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ, कभी कभी लाइन नहीं मिलती, इसलिए आज मैं कोशिश की,
0: हाँ
2: मिल गया। मैंने कहा छोड़ो,
0: आपकी कोशिश रंग लाई। हाँ बिल्कुल, कभी कभार आप स्वस्थ रहती हैं लेकिन लाइन नहीं लगती है ना।
2: नहीं मिलता, मैं स्वस्थ रहती हूँ तो लाइन नहीं मिलता, मैं बीमार हो गई हूँ तब मुझे लाइन।
0: ऐसा ही होता है, क्या करें, ये तो दस्तूर है कभी कभार।
2: हाँ
0: कोई बात नहीं, लेकिन जब कि आपकी लाइन लगी गई है तो क्यों ना पूरा लाभ उठाया जाए, है ना। गाइए आपका पहला गाना जो आप बेहद पसंद करती हैं, प्लीज।
2: अच्छा, पुराना गाना।
0: कोई बात नहीं, नया पुराना।

बहुत ही सुंदर सा गाना ज्योति जी ने गाया है। आपने कहा आपकी आवाज आपके गले में खराश है ना, लेकिन फिर भी आपने क्या गाना गाया। ओके ज्योति जी, कोई बात नहीं, इतने ना कोई बात नहीं, आपको क्षमा कर दिया हमने। चलिए बहारो मेरा जीवन भी सवारो। तो चलिए र अक्षर से कोई गाना शुरू कीजिए आप प्लीज, र अक्षर से।

जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया, रहे ना रहे हम। और ये जो गाना है लता जी का क्लासिक सॉन्ग्स में से एक है ना। तो ये ज्योति जी थी जो बदकिस्मती से लाइन कट गई, लेकिन हम नहीं भूलेंगे उनको तालियों की गूंज उन तक पहुंचाने के लिए।

0: चलिए, रहे ना रहे फिल्म का ये गाना है फिल्म ममता। तो चलिए हम देखते हैं कौन है वो श्रोता जो आज हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते मीनाक्षी जी, आप भी खांस रही हैं?
1: हाँ जी,
0: ओ लला,
1: मौसम है ना।
0: सभी श्रोता जो आ रहे हैं यही दुख रहा, यही समस्या, क्या करें।
1: हाँ क्या करें, मौसम है ना।
0: हाँ जी मौसम है, लेकिन ये स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना, इस मुश्किल का डट के सामना तो करना पड़ेगा। चलिए मीनाक्षी जी, कौन सा गाना आप बहुत ही पसंद करती हैं वो आप गाइए।
1: जी हाँ
0: गाइए।
1: तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा।

0: क्या बात है, सचमुच अच्छा लगता है आपको हमसे बातें करना। अंताक्षरी के, हाँ जी, अंताक्षरी के दौरान हमसे बातें करना और 90s के गाना गाना, है ना? बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया है। जितनी बार ये गाना हम सुनेंगे मीनाक्षी जी, उतना ही कम होगा। एवरग्रीन उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज़ों में। तो चलिए, आपने तेरे नाम फिल्म का गाना गाया है और ये फिल्म जो आई थी 2003 में आई थी, उसी साल में रिलीज हुई थी दो फिल्में और जो बहुत ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था। एक थी फिल्म कोई मिल गया और दूसरी फिल्म थी कल हो ना हो। चलिए, इन दोनों में से आप कोई भी फिल्म चूज कीजिए और गाना गाइए प्लीज।
1: हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव भी कहीं है रूप,
0: छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी,

0: बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ऐसे आप गाती
1: थोड़ा
0: रहे
1: सा
0: मेरे।
1: मैं भूल गई हूँ ये
0: नहीं
1: गाना
0: कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपको सरप्राइज से लिया है ना,
1: जी।
0: यही
1: हाँ
0: होता है।
1: जी
0: ये गाना आपको पता है, लेकिन जब आप फोन पर
1: हाँ
0: होती
1: पता
0: है,
1: है, लेकिन इतना
0: जब
1: मैं गाती नहीं है ये गाना
0: हाँ, लेकिन आप गाइए प्लीज।
1: जी। हाँ ओके
0: धन्यवाद आपको मीनाक्षी जी,
1: थैंक
0: अगले सप्ताह
1: यू,
0: फिर
1: बाय
0: आप भाग लीजिएगा। ओके, धन्यवाद,
1: बाय।
0: बाय।

0: अलका याग्निक जी की मधुर आवाज में क्या गाना है ये तेरे नाम फिल्म का, और उदित नारायण जी ने भी आवाज दी थी। अब हम बात करेंगे अगले श्रोता के साथ। हेलो,
1: हेलो रोशन जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार स्वीकार है लीला जी वाशिकी से।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: आप
0: आपको।
1: कैसे हैं?
0: हम ठीक हैं जी, और आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। यहाँ थोड़ा गला खराब है और मौसम यहाँ तो हमेशा
0: हाँ
1: बारिश ही
0: वाशिकी, हाँ जी, ग्रौबासे के आसपास ये जो गांव
1: हाँ
0: है
1: यहाँ
0: वहाँ
1: तो
0: पर
1: रोज
0: बहुत ठंड
1: पानी ही
0: पड़ती है
1: बरसती रहती है।
0: जी।
1: हाँ
0: हाँ सावन बरसता है, सर्द हवा चलती है।
1: हाँ तो क्या करेंगे, ये तो ऊपर वाला की
0: हाँ जी,
1: कृपा
0: उन
1: है ना,
0: हाँ
1: वो
0: ये
1: तो
0: तो
1: हमें तो
0: है, ये तो प्रकृति का नियम है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, है ना। तो चलिए इसी बात पर एक गाना हो जाए कोई जो आप बेहद पसंद करती हो।
1: तो आज पहली तारीख है ना,
0: हाँ
1: तो पहले ही पर एक गाना गाऊंगी।
0: अच्छा, क्या बात है, गाइए, किसी ने ये इसके बारे में सोचा नहीं। चलिए लीला जी गाइए।
1: एक बार आपने ऐसा प्रोग्राम रखा था जो
0: हाँ
1: पहले या एक पहला से शुरू
0: हाँ
1: होगा या एक या ऐसा एक
0: हाँ
1: प्रोग्राम रखा था।
0: आपकी याददाश्त को मुझे सराहना करना पड़ेगा
1: धन्यवाद।
0: अच्छा
1: तो
0: लीला जी गाइए।
1: और आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकर आते हैं तो कभी लाइन नहीं मिलता है ना, लेकिन सुनने को
0: अच्छा लगता
1: सुनते
0: है।
1: हैं हम।
0: हाँ
1: हाँ
0: बिल्कुल, और आप हमेशा ऐसे ही वफादारी निभाते रहे MBC रेडियो के प्रति।
1: धन्यवाद।
0: चलिए लीला जी,
1: हाँ
0: सुनते हैं आपका
1: तो
0: गाना।

पहली पहली बार है, ओ पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार।

0: सचमुच लीला जी, हमेशा प्यार पहली बार के लिए तो होता है और सभी के जीवन में एक बार ये बहुत ही हसीन घड़ी आती रहती है ना।
1: ये तो वक्त ही बताता है ना।
0: बिल्कुल। तो चलिए, ये हम आपके हैं कौन फिल्म का गाना है जिसमें माधुरी दीक्षित और सलमान खान नजर आए थे, है ना? तो चलिए, एक आसान सा प्रश्न आपके लिए इसी फिल्म से लिया गया एक और गाना हो जाए।
1: दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम गुड़ियों को डाले दाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम गुड़ियों को डाले दाना। ठीक है,
0: क्या बात है, जितनी बार ये फिल्म चलेगी उतनी बार मैं देखूंगा।
1: हाँ, ये तो बहुत बहुत,
0: बहुत सुंदर फिल्म है ये। हाँ, और आपने भी सुंदर गाने गाए। एक ही फिल्म से दो गाने आपको गाना पड़ा, लेकिन आपने अपनी अपनी परीक्षा में खूब खड़ी उतरी हैं आप। धन्यवाद
1: आपको भी, धन्यवाद और शुभ संध्या आपको।
0: शुभ संध्या आपको, बाय।

0: दुल्हन की सालियो हरे दुपट्टे वालियो। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन है लाइन पर। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते बेटा बेटा और बेटी जी।
0: हाँ बेटी जी तो आपकी नहीं आई है आज,
1: वो
0: लेकिन
1: कहीं
0: हाँ
1: भी है,
0: जी
1: मेरी
0: देख
1: आवाज आप उसके पास
0: हाँ
1: चली
0: जी
1: जाएगी।
0: आपकी आवाज़ उन तक पहुंच जाएगी, है ना।
1: हाँ जी
0: तो जीवंती जी बिलविद्या से आपका स्वागत हम करते हैं।
1: जी
0: तो चलिए आप पहला
1: छह
0: गाना।
1: बुध के बाद आज
0: हाँ
1: मिला है लाइन।
0: 6 बुधवार के बाद आपने तो गिनती भी कर ली।
1: हाँ
0: ओ
1: जी
0: क्या करें,
1: अभी
0: जब
1: तो
0: लाइन नहीं लगती है
1: तीस
0: तो अच्छा
1: तीस
0: नहीं
1: मिनट हो
0: लगता।
1: गए जब से मैं फोन लिए हैं
0: हाँ
1: आपके
0: बहुत से लोग
1: पास।
0: फ़ोन कर रहे हैं ना, यही का
1: हाँ
0: इतने लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, क्या
1: हाँ
0: कहें आपको। किस किस
1: आज
0: का
1: राम
0: फ़ोन
1: जी
0: है,
1: मेरे
0: हम
1: साथ है।
0: आज राम जी आपके साथ हैं। तो लीजिए
1: हाँ
0: प्रभु का नाम और गाइए अंताक्षरी का नाम, ये आपका गाना गाइए।
1: जो वादा
0: अरे
1: किया
0: वाह,
1: वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा निभाना पड़ेगा।
0: बहुत अच्छा, ताजमहल फिल्म का गाना आपने गाया है और सचमुच आपने अपना वादा निभाया है जीवंती जी, क्या बात है। तो चलिए इस फिल्म में प्रदीप कुमार जी थे, है ना,
1: जी
0: बहुत ही अच्छा। तो चलिए एक और गाना हो जाए जिसमें प्रदीप कुमार जी नज़र आते हैं, कोई भी गाना जिसमें प्रदीप कुमार जी नज़र
1: कोई
0: आते,
1: भी
0: कोई भी गाना जिसमें
1: मांगे ना सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी तेरी द्वार खड़ा एक दिन।
0: अरे वाह, ये तो भरत भूषण भी और प्रदीप कुमार
1: नागिन
0: जी,
1: के
0: अरे क्या बात है, आपने तो झट से गाना गा लिया, वाह। और आपको हम कहेंगे स्टार ऑफ द वीक, आप भी बन गई हैं जीवंती जी, ऐसे ही आप हंसती रहें
1: आपको बहुत
0: मुस्कुराती
1: बहुत
0: रहें।
1: शुक्रिया आपके
0: धन्यवाद,
1: प्रोग्राम के लिए।
0: बहुत धन्यवाद
1: अरे
0: आपको,
1: शुभ संध्या
0: शुभ
1: सुरात्रि।
0: संध्या, धन्यवाद।

0: जमाना आपका इंतजार कर रहा है।
1: आ
0: चलिए,
1: गई है।
0: आ गई है। कौन आ गई है?
1: नमस्ते रोशन
0: नमस्ते।
1: जी।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रही है?
1: स्वस्ति
0: स्वस्ति बहन फ्रॉम काठमांडू।
1: जी,
0: कितने दिनों के बाद अंताक्षरी प्रोग्राम में।
1: कोशिश करती हूँ।
0: हाँ बिल्कुल, हमेशा आपको कोशिश करनी है ना? कभी तो कभी लाइन लग ही
1: लाइन
0: जाएंगी।
1: मिल जाती है।
0: हाँ
1: हाँ,
0: बिल्कुल, आज आपकी लाइन लग गई है। तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है?
1: वो दिल कहाँ फिलाऊँ मैं, तेरी याद जो भुलाए,

0: जी वो दिल का सिलाऊं मैं।
1: जी हाँ, भरोसा फिल्म का गाना आपने गाया है, लेकिन आपका रेडियो सेट भी गा रहा है।
0: नहीं, वो ठीक नहीं है।
1: कोई बात नहीं, लेकिन आप के गाने पर हम तालियां बजाएंगे ज़रूर। वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत ही सुंदर सा गाना है। तो चलिए एक और गाना हो जाए जिस गाने में लता जी ने आवाज़ दी है, कोई भी गाना जो लता जी ने गाया है, कोई भी गाइए। कोई भी गाना आप गाइए जिसको लता जी ने गाया है, कोई भी गाना याद आया आपको?
0: एक सुनहरी शाम थी।
1: हाँ, कंटिन्यू।
0: बहकी बहकी जिंदगी, राहों में हम तुम मिले, तेरे पलकों के तले तेरा बन गया।
1: जी स्वस्ति जी, आपने कहाँ से खोज के लिए गाना लाया है आपने तो। बहुत धन्यवाद, और अगले सप्ताह आप अवश्य भाग लीजिएगा। ओके,
0: शुभरात्रि।
1: शुभरात्रि आपको भी। हेलो
2: हेलो
1: हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी।
2: हेलो रोशन जी, नमस्ते।
1: नमस्ते नीला जी, आपका रेडियो सेट एकदम हाई वॉल्यूम पर है, प्लीज उसे आप कम कर दें वॉल्यूम, या
2: सुनाई नहीं दे रही है।
1: हाँ, ये अब अच्छा है। अब
2: हाँ जी,
1: गाइए नीला जी, जो आप पसंद करती हैं, प्लीज गाइए।
2: हाँ,

0: किनारा ये चंचल हवा।
1: कोई बात नहीं, ओके अंतरा नहीं नीला जी, अंतरा नहीं नीला जी, बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया, ये मौसम नदी का किनारा। ओके तो कोई और गाना गाइए जो र से शुरू होता है, र से शुरू होता है, प्लीज र
0: से
1: कोई और गाना गाइए, प्लीज गाइए।

0: दरवाजा खुला रखना, बिल्कुल बहुत ही सुंदर सी गजल आपने गाई है। धन्यवाद नीला जी, अगले सप्ताह आप अवश्य भाग लीजिए। ओके,
1: थैंक यू,
0: धन्यवाद।
1: तब से मैं लाइन
0: क्या करें, बहुत से लोग फोन लगा रहे हैं ना,
1: नहीं मिल रहा है।
0: ओके
1: ओके, थैंक यू,
0: थैंक यू। चलिए शुभ रात्रि। दूसरी लाइन पर कौन है? हेलो,
2: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका?
2: गीता हूँ मैं।
0: गीता है आप, प्रेंदे पापाई से? पहली बार इस प्रोग्राम में गीता जी? ओके, तो चलिए प्रेंदे पापाई की गीता बहन के लिए लाइन खुली हुई है, तो आप पहला गाना गाइए प्लीज।
2: जी हाँ,
0: गाइए।
2: गीत तेरे सांस का, तेरी ही आवाज हो, तू भी मेरा साथी बनकर, मैं तेरे हमराज हूँ। गीत तेरे सांस का, तेरे ही आवाज हूँ।
0: क्या बात है, गीत तेरे साज का, तेरे ही आवाज हूँ, बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया है। चलिए ये गाना, और इस गाने में एक शब्द आता है गीत, तो इस शब्द को लेकर एक और गाना गाइए प्लीज। गाइए।
2: गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मेरे सपनों का वादा किया

0: मुझे, इसलिए मैं सदा मुस्कुराता रहा। ठीक है
1: जी हाँ, गीत गाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। हाँ जी, और इस गाने को गाया था किशोर दा ने फिल्म लाल पत्थर, है ना। और गीता जी ऐसे ही आप भाग लेती रहे हैं। बाय बाय
0: बाय।
1: जी हाँ, किशोर दा का गाना है। और बदकिस्मती से अभी 5:55 हो गए हैं, यानी अंताक्षरी प्रोग्राम का समापन। और इस गाने को लेकर हम बढ़ेंगे समाचार की ओर। आप अवश्य रेडियो मॉरिशस और AM2 का साथ दीजिए। देश विदेश का समाचार की खबरें आप सुनिएगा, और हमें आप अनुमति दें ऐसे ही आप भाग लेते रहें। जिन लोगों ने भाग लिया, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिन लोगों की लाइन नहीं लगी, इस दुर्भाग्यवश, अवश्य आप कोशिश करें, अगले सप्ताह अवश्य लाइन लग जाएगी। और आपसे कहेंगे हम नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आपको।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घर मिलाती, चलिए शाम के ठीक 6 बजे हैं। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। 1 जुलाई बुधवार का दिन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सरसिव सागर रामगुलाम हवाई अड्डे पर एक नया कंट्रोल टावर, M4 मोटरवे की निर्माण परियोजना, रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण और पोर्टलिस को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण, ये 4 परियोजनाएं हैं जिनके लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को दी गई 20.5 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत फंड प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय सभा में पेंशन सुधार पर विशेषज्ञ आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दस्तावेज में मौजूदा पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए 3 स्तंभ दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है परामर्शों के आधार पर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पर्याप्त, टिकाऊ और निष्पक्ष हो। बजट 2026-2027 में घोषित सब्सिडी वाले उत्पादों की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बदौलत अब से 7 सामानों के दाम कम किए गए हैं। इस नियम के लागू होते ही व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने आज कुछ बड़ी दुकानों का दौरा किया। कोपरनिकस मैरीन ऑब्जर्वेटरी के अनुसार दुनिया के महासागरों में अब तक का सबसे गर्म जून का महीना दर्ज किया गया है, जिनका औसतन तापमान 20.98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग के मिले जुले असर से 2026 में नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय सभा में पेंशन सुधार को विशेषज्ञ आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पेश की। इस दस्तावेज में मौजूदा पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए 3 स्तंभ दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है परामर्शों के आधार पर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पर्याप्त, टिकाऊ और निष्पक्ष हो। 271 पृष्ठों की ये रिपोर्ट, जिसमें मींस टेस्ट का प्रस्ताव दिया गया था, उसे बजट भाषण में शामिल किए जाने के बाद फ्रीज कर दी गई। कुनागुजी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
2: The funding deficit in the pension schemes of the statutory bodies was estimated at 53 billion rupees, while that at the NPF stood at 113 billion rupees, representing a combined deficit of 166 billion rupees, that is more than 20% of the current GDP. As the actuarial valuation for the NPF dates back to 2020, it is very likely that the financial position of the pension fund has deteriorated further, owing, among others, to the increasing life expectancy among scheme members and pensioners and the contribution rates that have not kept pace with the scheme's long-term funding requirements. The previous government has done nothing, absolutely nothing, to address the structural challenges facing the pension system in a comprehensive and timely manner. On the contrary, it has aggravated the situation with its irresponsible decisions and the introduction of the CSG, and these have compounded the deficits and the unsustainability of the pension system.
1: राष्ट्रीय सभा में कल दूसरी पढ़त पर डोमेस्टिक अब्यूज बिल प्रस्तुत किया गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री ने कहा कि ये विधेयक घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ाएगा और इसमें आर्थिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शोषण जैसे रूपों को भी शामिल किया गया है। मंत्री आर्याना वोमागी ने बताया कि इस विधेयक में एक्सक्लूजन ऑर्डर और इंटरवेंशन ऑर्डर जैसे नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीड़ितों और उनके बच्चों की बेहतर सुरक्षा हो और हिंसा करने वालों को अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह होना पड़े। माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
3: डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डोमेस्टिक

0: अब्यूज बिल में प्रोटेक्शन ऑर्डर के उल्लंघनों के लिए सजा देने का प्रावधान है। हिंसा के शिकार लोगों का सहयोग भी इसमें शामिल है। इसी उपलक्ष्य में सोशल इंटीग्रेशन और समाज सुरक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सॉलिडारिटी फंड के तहत हिंसा के शिकार लोगों के लिए एक एलोकेशन का प्रावधान किया गया है। शेल्टर में बिताए गए 2 महीनों की अवधि के लिए इससे ये लोग मूलभूत सामान खरीद पाएंगे। एक्सक्लूजन ऑर्डर भी इसमें शामिल किया जा रहा है।
1: Lorsque la cohabitation continue, représente un risque.
0: जब साथ रहना खतरनाक हो तो हिंसा करने वाले को वहां से जाना पड़ेगा। हिंसा के शिकार व्यक्ति को अपने बच्चों या घर को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि खतरा उसने नहीं बल्कि उसके साथी ने पैदा किया है। यदि ये संभव न हो तो अदालत हिंसा करने वाले को अपने साथी के लिए आवास की व्यवस्था करने का आदेश दे सकता है। जिम्मेदारी उसकी है जिसने खतरा पैदा किया है और न कि जो दर्द सहता आया है।
1: La charge incombe à celui qui a créé le danger et non à celle qui en a souffert.
0: Domestic abuse bill के तहत जानकारी देने की प्रक्रिया को बेहतरीन किया जाएगा।
1: En outre, en cas de manquement à une ordonnance d'abus domestique signalée à un poste de police.
0: यदि घरेलू हिंसा को लेकर कोई ऑर्डर नहीं तो एक व्यक्ति देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। जांच भी तुरंत शुरू की जानी चाहिए। अब से 14 के बदले ट्राइब्यूनल के पास 7 दिनों का समय होगा आरोपी को पेश कराने के लिए।
1: Par ailleurs, madame la présidente, le tribunal disposera dorénavant de 7 jours au lieu de 14 jours à compter de la date de la demande pour convoquer la personne mise en cause et statuer.
0: घरेलू हिंसा से संबंधित इस विधेयक में आदेशों और कानूनी नोटिसों का पालन न करने पर अधिक कड़े जुर्माने और सख्त कारावास की सजा का भी प्रावधान है। घरेलू हिंसा के दोषियों के पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रावधान है। इसके लिए डोमेस्टिक अब्यूज कोऑर्डिनेटिंग पैनल का गठन किया जाएगा।
2: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। सर शिवसागर रामगुलाम हवाई अड्डे पर एक नया कंट्रोल टावर, M4 मोटरवे की निर्माण परियोजना, रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण और पोर्ट लुइस को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण, ये 4 परियोजनाएं हैं जिनके लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को दी गई 20.5 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत फंड प्राप्त हुआ है। ये फंडिंग उस 31 बिलियन रुपए के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा है जिस पर सितंबर 2025 में डॉक्टर नवीन रामगुलाम की यात्रा के दौरान बातचीत हुई थी। बजट 2026-2027 में घोषित सब्सिडी वाले उत्पादों की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बदौलत अब से 7 सामानों के दाम कम किए गए हैं। इस नियम के लागू होते ही व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने आज कुछ बड़ी दुकानों का दौरा किया। 2026-2027 का वित्तीय साल मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मॉरिशस एक्सप्रेस सिस्टम की कारगरता बढ़ाने के लिए परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कर्ज धीरे धीरे चुकाने, लागत पर नियंत्रण पाने, नेटवर्क को आधुनिक बनाने और तोड़फोड़ से निपटने के लिए नए कदमों पर आधारित योजना का ऐलान किया है। आज पोर्ट लुइस में क्रॉस रेल इंटरनेशनल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये जानकारियाँ दी। इस रिपोर्ट में मेट्रो एक्सप्रेस के उन फायदों पर जोर दिया गया जो यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन से कहीं ज्यादा है। अध्ययन के अनुसार ये नेटवर्क सालाना तौर पर 1.7 बिलियन रुपए का आर्थिक योगदान देता है। बजट 2026-2027 में फ्लैक के डॉक्टर ब्रूनो चोंग मेडिकल सेंटर में एक रेजिडेंशियल रिहैबिलिटेशन केंद्र यानी एक नशा मुक्त केंद्र की स्थापना करने की योजना शामिल है। मकसद है नशा करने वालों को बेहतर मदद उपलब्ध कराना। इस परियोजना से जुड़े अन्य साझेदारों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि ज्यादा व्यापक सेवाओं वाले इस केंद्र के कार्यरत होने तक इस इलाके में नशे की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज अभी एडिक्शन यूनिट में किया जा रहा है जो

0: डॉक्टर ब्रूनो चोंग सेंटर का ही एक हिस्सा है। रिया रामोजन की रिपोर्ट पर एक बार फिर याचना मिश्रा का विवरण।
1: 43 साल का ये व्यक्ति अपॉइंटमेंट पर आया है। पिछले लगभग 7 सालों से वो नियमित रूप से मेथाडोन उपचार के लिए इस केंद्र में आ रहा है।
2: नहीं,

0: हम व्यक्ति के साथ साथ परिवार से भी बात करते हैं ताकि व्यक्ति को इस समस्या से बाहर निकाला जा सके। इन सेवाओं के अलावा नशे के आदि लोगों के पुनर्वास में रिहैबिलिटेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी उद्देश्य के साथ डॉक्टर भुइनो चोंग सेंटर को एक आवासीय पुनर्वास केंद्र में बदला जा रहा है, पूर्वी इलाके में पहली ऐसी योजना। पूर्वी इलाके का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जहां रिहैबिलिटेशन केंद्र नहीं है ड्रग्स और एचआईवी के मरीजों के लिए। अब हम कह सकते हैं कि बेहतरीन उपचार दिया जा
1: सकेगा।
0: इस परियोजना के लिए कई संबंधित पक्षों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी।
1: एनजीओस
0: का सहयोग जरूरी है, जो अधिकारियों और ड्रग्स के आदियों के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। पुनर्वास कार्यक्रमों को मजबूत करने के अलावा बजट में प्रत्येक मंत्रालय को नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50 मिलियन रुपए का प्रावधान भी किया गया है।
2: अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए स्टार्टअप्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मॉरिशस में नवाचार और कारोबारिता पर आधारित एक इकोसिस्टम धीरे धीरे आकार ले रहा है। बजट 2026-2027 में इस विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें एक स्टार्टअप एक्ट की स्थापना, ईडीबी के अंतर्गत एक एक्सेलरेटर स्कीम, कुद्दो में भावी इकोनॉमिक जोन में एक हब तथा कामकाज शुरू करने के बाद 10 साल की अवधि के लिए टैक्स की छूट आदि कदम शामिल हैं। इन पहलों का मकसद ऐसा माहौल कायम करना है जो देश की आर्थिक वृद्धि का मुख्य चालक का बने। अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भरता से आगे बढ़कर निवेश, नवाचार और आर्थिक साझेदारी पर ध्यान देने का मकसद तय किया है। इसी सोच के साथ कल अफ्रीका बियॉन्ड एड सम्मेलन शुरू किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के नीति निर्माता, ठेकेदार और निवेशक शामिल हुए हैं। मकसद है मॉरिशस और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच व्यापार मजबूत और कारोबार के मौके पैदा करना। इस पर आदरणीय वाले की रिपोर्ट पर गीता स्नान का विवरण।
3: मदद से व्यापार की ओर, निर्भरता से संपत्ति सृजन की ओर, यही नई दिशा अफ्रीका बियॉन्ड एड शिखर सम्मेलन के आयोजकों ने प्रस्तुत की है, जिसका उद्घाटन इस बुधवार बालाक्लावा में हुआ। इस सम्मेलन में अफ्रीका और यूरोप के कई देशों से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आयोजकों का मानना है कि तेजी से बदलते अफ्रीकी महाद्वीप में मॉरिशस की कंपनियों के लिए नए अवसर मौजूद हैं। वहीं मॉरिशस अफ्रीकी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंडियों तक पहुंचने के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय मंच प्रदान करता है। जीसीआईएल कंट्री डायरेक्टर मीनाक्षी उबिलक कहती हैं, यहाँ उन्हें सीधा संपर्क मिलता है ताकि वे अपनी पैदावारों या सेवाओं का निर्यात कर सके। कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जैसे निवेश, सहयोग आदि। ग्लोबल सेंटर फॉर इनोवेटिव लीडर्स के संस्थापक कहते हैं, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। अफ्रीका में आपके जैसे दूरदर्शी नेता हैं, साहसी एसएमईस और ठेकेदार हैं, जो एक ऐसा अफ्रीका स्थापित करना चाहते हैं जो निवेश, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बदौलत हो। अफ्रीकी महाद्वीप छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कई संभावनाएं प्रदान करता है। ये शिखर सम्मेलन विभिन्न देशों से आए निवेशकों और व्यावसायिक साझेदारों के साथ संपर्क स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कंसल्ट प्लस अफ्रीका के सीईओ डाविना गोआर्डन कहती हैं,
4: Très belle opportunité de networking.
3: ये नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा अवसर है, ये देखने के लिए कि अफ्रीका के स्तर पर एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, कई तरह के निवेश पर चर्चा कर सकते हैं, साझेदारी और आदान प्रदान पर भी, हुनर, योग्यता और प्रशिक्षण के स्तर पर। मॉरिशस भी अपने अनेक लाभों का उपयोग कर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना चाहता है। एक प्रतिष्ठित वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ यहाँ का मजबूत कानूनी ढांचा और अफ्रीका, एशिया और यूरोप के साथ हुए व्यापारिक समझौते इसे विशेष बनाते हैं। साथ ही डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुद्दो में विकसित किए जा रहे भविष्य के टेक्नोलॉजी हब के माध्यम से मॉरिशस अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। विदेश मंत्री धनंजय रामफल कहते हैं,
5: Maurice Finci, plusieurs banques d'accord qui vont faire ressortir nos membres de la SADC.

0: non, ce qui nous paye, nous appelle le African Continental Free Trade Agreement.
1: मॉरिशस ने कई संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, इनमें साडक के सदस्य हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं। निवेशक मॉरिशस को एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वे इन देशों तक पहुंच पा सके और अफ्रीका में निवेश कर सके। इस शिखर सम्मेलन के अंत में आयोजकों को उम्मीद है कि यहां हुई बातचीत लंबे समय की साझेदारियों और नए निवेशकों का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उनका लक्ष्य मॉरिशस और अफ्रीकी बाजार में प्रवेश के लिए एक प्रमुख और विश्वसनीय द्वार के रूप में और ज्यादा मजबूत करना है।
2: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पर्सनल डिजिटल डेटा का क्या होता है? डॉक्टर शिबा ओमुगम ने इस विषय पर एक अध्ययन चलाया। इस पर एक पुस्तक प्रकाशित की, शीर्षक है डिजिटल आफ्टर लाइफ, अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर लॉ टेक्नोलॉजी एंड विक्टिम जस्टिस। राष्ट्रीय बजट में ध्वनि प्रदूषण के लिए जुर्माना दुगना करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे अपराध पर जुर्माना 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये किया जाएगा। आम उल्लंघनों में गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से होने वाली तेज आवाज, ब्रेकिंग, फायरिंग और पड़ोसियों को परेशान करने वाली स्पीकरों की तेज ध्वनि शामिल हैं, लेकिन नियमों को सख्त करने से खासकर नौजवानों के पसंदीदा ट्रेंड कम होंगे या नहीं, ये विचार करने योग्य है। कल एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट प्रेस से उन्होंने मुलाकात की और इस साल 2026 के पहले 6 महीनों का ब्यौरा पेश किया गया, जहां कई जब्ती, ड्रग तस्करी और नए चालान और जनता के राय के बारे में भी खुलासा की गई। मंदिर और पूजा पद्धतियां केवल पत्थर की संरचनाएं या मात्र कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये साक्षात दैवीय ऊर्जा के केंद्र हैं। इन पवित्र स्थलों की दिव्यता को अक्षुण बनाए रखने और परमात्मा के साथ भक्त के गहरे जुड़ाव को अनुभव करने के लिए कई विशेष अनुष्ठानों का विधान है। महासंप्रोक्षणम और श्री विष्णु कल्याणम ऐसे ही दो अत्यंत प्रभावशाली और आध्यात्मिक आयोजन हैं, जहां महासंप्रोक्षणम श्री सत्यनारायण स्वामी आलयम के शुद्धिकरण और उसकी ऊर्जा को नवीनीकृत करने का उत्सव है। वहीं श्री विष्णु कल्याणम भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य मिलन के माध्यम से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का संचार करता है।

0: कुछ देर पहले जैसे हम आपको बता रहे थे कि बजट 2026-2027 में घोषित सब्सिडी वाले उत्पादों की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बदौलत अब से 7 सामानों के दाम किए गए हैं।
1: दुकानों के शेल्फ पर अब नए दामों के लेबल उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन लेबलों पर दो अनिवार्य जानकारियां दी गई हैं। पहली MRP और दूसरी SP यानी सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि। स्थल पर व्यापार मंत्रालय के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि नई व्यवस्थाओं को व्यापारी लागू कर रहे हैं या नहीं।
2: Nous touche 485 produits et des bons qui la population rappelle qu'en août le programme du Price Stabilization Fund vient de commencer avec 5 produits de base. À partir d'aujourd'hui, nous mettons encore 7 produits additionnels. Nous commençons par le macaroni pour une baisse de 10 roupies. Le pain de grain sec, une baisse de 10 roupies. Le pain de thon en boîte, c'est une baisse de 20 roupies. Et nourriture pour bébé, c'est une baisse de 15 roupies. Pour les cornes moutons et cornes beef, une baisse de 20 roupies.
1: Dans le supermarket, les consommateurs ont été mis en place. कुछ लोगों ने कीमतों में आई कमी का स्वागत किया, जबकि अन्य का कहना है कि यदि जीवन यापन की बढ़ती लागत पर वास्तविक प्रभाव डालना है तो इस योजना का दायरा और अधिक उत्पादन

0: उत्पादन तक बढ़ाया जाना चाहिए।
1: Moi j'ai l'habitude de pitcher quand on est. Alors tout le temps je fais provision et je regarde les prix. Mais là le monsieur vient de m'expliquer, il faut revoir parce que le MRP, on avait déjà entendu parler, le ministre avait parlé de ça. Mais là maintenant quand le public vient, il voit ça, c'est encore meilleur.
2: Nous faisons une vérification sur place pour assurer que tout le prix qui préconisait d'après la loi doit être respecté par tous les commerçants. Donc nous dire que tout le produit qui est exposé pour vendre qui n'a sa subside là-dessus, donc le commerçant doit afficher le prix en son MRP.
0: अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित व्यापारिक व्यवहार दिखाई दे तो उसकी तुरंत सूचना संबंधित विभाग को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
2: Nous invitons le public et nous faisons du travail et pour contacter nous sur le hotline 185 ou car aussi contacter nous sur le WhatsApp 5942888 ou car venir par email le consumerpu@gov.org.
0: व्यापार मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि विशेष अनुमति के बिना कोई भी व्यापारी सब्सिडी वाले उत्पादों की खरीद पर सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता का लाभ सभी उपभोक्ताओं तक समान रूप से पहुंचे।
3: और जैसे सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि सचिव सगाराम गुलाम हवाई अड्डे पर एक नया कंट्रोल टावर, M4 मोटरवे की निर्माण परियोजना, रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण और पोर्ट लुइस को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण, ये चार परियोजनाएं हैं जिनके लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को दी गई 20.5 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत फंड प्राप्त हुआ है, जो उस 31 बिलियन रुपए के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा है जिस पर सितंबर 2025 में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की यात्रा के दौरान बातचीत हुई। मिगान पनपनाइकन की रिपोर्ट पर गीता सुरान का विवरण।
0: रविवार को सिशेल्स में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने घोषणा की कि भारत ने मॉरिशस को लगभग 20.5 बिलियन मॉरिशियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस वित्तीय सहायता का उपयोग मुख्य रूप से चार प्रमुख परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इनमें शशि सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, M4 हाईवे, रिंग रोड परियोजना का दूसरा चरण और बंदरगाह के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद शामिल हैं। विदेश मंत्री रितेश रामफल कहते हैं,
4: Le port a un asset bien stratégique que nous prenons beaucoup man bateaux qui peuvent venir. Alors il y a pourtant aussi que nous le port et la main infrastructure nécessaire pour qu'elle délivre. Après tenant ce projet de ring road là qui est un projet depuis assez longtemps, une cause ça et là il peut être matérialisé grâce à sa ligne de crédit et un autre projet, sa control tower là aussi. Et là, dans ce budget-là, nous finissons annoncer et nous finissons financement nécessaire pour qu'ils soient capables de financer ce projet-là.
0: ये लाइन ऑफ क्रेडिट कुल 31 बिलियन मॉरिशियन रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का हिस्सा है जिस पर सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम की भारत यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। इस पैकेज में 10 बिलियन मॉरिशियन रुपए का अनुदान भी शामिल है। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्री अनुराग श्रीवास्तवा कहते हैं,
5: इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड,
0: यदि इसके व्यापक स्तर की बात करें तो ये संभवतः दुनिया भर में लागू किए जाने वाले हमारे सबसे बड़े विकास साझेदारी कार्यक्रमों में से एक होगा। अप्रैल महीने में हमने एक लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें अनुदान प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रूपरेखा तय की गई थी। अब हमने इस लाइन ऑफ क्रेडिट की भी औपचारिक पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही फाइनेंसिंग समझौते और विशेष आर्थिक पैकेज SEP के अंतर्गत आने वाली सभी 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ढांचा पूरी तरह से अंतिम रूप ले चुका है। दोनों पक्षों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रूपरेखा पहले ही तय की जा चुकी है। इस लाइन ऑफ क्रेडिट पर बहुत कम ब्याज दर लागू होगी, इससे इन परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अधिक व्यवहार्य बनाया जा सकेगा। मंत्री रितेश रामफल कहते हैं,
4: qui a un taux très très préférentiel à 2%, right, qui est très minime comparé à ban ligne de crédit, ban loan qui au gain avec ban institution financière. Je vous reconnaître d'ailleurs qu'Hélène fait aide Maurice à chaque fois qu'il nous donne le besoin.
0: Shri Anurag Vastava कहते हैं, ये मॉरिशस के प्रति हमारे समर्थन की एक ठोस और स्पष्ट प्रतिबद्धता है। हमें इस बात पर गर्व है कि हम मॉरिशस के सबसे बड़े विकास साझेदार हैं। विशेष आर्थिक पैकेज SEP के तहत शुरू की गई ये नई परियोजनाएं मॉरिशस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, देश में बेहतर संपर्क व्यवस्था भी करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मॉरिशस के लोग

0: लोगों के कल्याण एवं विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। भारत और मॉरिशस के बीच हुए समझौते के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर इस लाइन ऑफ क्रेडिट का एक हिस्सा भविष्य में अन्य विकास परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।
1: कोपरनिकस मैरीन ऑब्जर्वेटरी के अनुसार दुनिया के महासागरों में अब तक का सबसे गर्म जून का महीना दर्ज किया गया है, जिनका औसतन तापमान 20.98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग की मिले जुले असर से 2026 में नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। बात करें फुटबॉल के बारे में, कोत द्वीवर यानी कि आइवरी कोस्ट का 2026 विश्व कप का सफर यही खत्म हो गया। एलिफेंट्स ने नॉर्वे के खिलाफ जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन राउंड ऑफ 32 में जिन्हें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा, मैच के आखिर में अर्लिंग हालैंड के निर्णायक गोल की बदौलत स्कैंडिनेवियन टीम राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला ब्राजील से होगा। अरविंद बिसेसर का विवरण।
2: वर्ल्ड कप 2026 में आइवरी कोस्ट का सुहाना सफर पूरा हुआ। सुहाना सफर इसलिए क्योंकि पहली बार के लिए ये टीम यहां तक पहुंची। नॉर्वे के खिलाफ अफ्रीकी हाथ ही लोग डट कर सामना करते रहे, पर अर्लिंग हालैंड के होते काम मुश्किल था। मैच में पहला गोल फर्स्ट हाफ में बनता है, एंटोनियो न्यूसो का गोल 39वें मिनट पर। सेकेंड हाफ में आइवरी कोस्ट में जान आई और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी अमाज्यालो इक्वलाइज करता है 74वें मिनट पर। यहां से दोनों टीम आक्रामक रुख अपना चुकी थी, पर जब अर्लिंग हालैंड जो यहां तक चुप था अपना छाप छोड़ता है इस गोल के साथ, इस गोल से नॉर्वे की टीम क्वालिफाई 2-1 के स्कोर पर। बेस्ट ऑफ 16 राउंड में वीकेंड फाइनल में नॉर्वे और ब्राजील के बीच धमासान टकराव होगा। आइवरी कोस्ट को अलविदा, पर नॉकआउट राउंड में पहली बार आए खूब संघर्ष करके जा रहे हैं।
1: 2026 वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 32 जारी है। आज रात दो बड़े मुकाबले होने हैं। बेल्जियम का सामना सेनेगाल से होगा, जो एक जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है, और इसके बाद कोहोस अमरीका का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण मैच हैं, जिनमें राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने के लिए दो स्टॉप दाव पर है। इस पर ज्यादा जानकारी अरविंद बिसेसर दे रहे हैं।
2: बेल्जियम की टीम को जाब्लो रूज नाम दिया गया है, मतलब लाल भूत। इनका सामना तेरेंगा लायंस से होगा, दोनों दबोचने के लिए तैयार हैं। बेल्जियम अपना आखिरी मैच जीत के ग्रुप टॉप कर गया था। धीरे धीरे इस टीम ने रफ्तार पकड़ा और केविन डे ब्रुइन, लियांड्रो ट्रोसा, थिबो कुर्तुआ के अनुभव काम आएंगे इस मैच में। सामने है सेनेगल की टीम, 5-0 से इराक को पछाड़ कर क्वालिफाई हुए। साजो माने, इस्माइला सा, ये लोग अनुभवी खिलाड़ी हैं। एडवर्ड मेंडी खेलेगा या नहीं अभी तक पता नहीं। उधर सैन फ्रांसिस्को में मेजबान टीम यूएसए मैदान में उतरेगी। ये टीम कनाडा और मेक्सिको की तरह क्वालिफाई होना चाहेगी अपनी सरजमीन पर। यूएसए का सामना बोस्निया से होगा। यह टीम पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंची, 3-1 से कतर को हराकर। एडिन जेको की टीम यूएसए वर्सेस बोस्निया कल सुबह 4 बजे।
1: इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम संबंधी जानकारियों की ओर, याशना मिश्रा के साथ।
3: हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर है। इसके अलावा कल सुबह से दक्षिण से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को आसमान साफ रहेगा। कल सुबह पूर्वी और दक्षिणी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 14 से 17, अधिकतम 20 से 23 और तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगी आविका भी, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। अवेन्यू लोह के अबू बासे में 44 साल के श्री राजीव बंधुआ, जिन्हें राजीव के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोव्यू एक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। अवेन्यू कोडेगा दस्तानी रोजिल में 65 साल के श्री वकील जगोनित, जिन्हें कुकू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 12 बजे उनकी पत्नी श्रीमती स्वस्ति जगोनित के घर स्थानीय रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोव्यू एक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9। जकारोंडा स्ट्रीट ग्रांड रिवियर नॉर्थ वेस्ट में 57 साल की श्रीमती वीना राजश्री मुतुवीरन, जिन्हें पैदाश नाम भोला, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर ग्रांड रिवियर नॉर्थ वेस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैं पियर बॉम्बुक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रू सैं मारी ले कोर्नू सैं क्वामे 87 साल की श्रीमती चंद्रावती गोपुल, पैदाश नाम डॉवीज, और जिन्हें सीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर सैंक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाली दीपत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। La Croisée Chebelle, la petite rivière, 77 साल की श्रीमती कमला देवी बीपन, जिन्हें कमला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:45 पर उनके बेटे आनंदत रामा के घर पुचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:45 AM। रुद्बाशेरी मुकामे 69 साल के श्री सूरजलाल सोनिया, जिन्हें विजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी अमरावादी सोनिया के घर बॉशरी मौका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 10 बजे सियाकोस्टांस की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। कौशोलू शमेग्रोनियमे 79 साल के श्री राजाना नागाया, जिन्हें धर्मानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ममिता नारायण के घर श्रमेग्रोनिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिव्य दिगालिक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। नंबर नौ मोसेलमो माउंट पॉम्पलीमुसेज में 80 साल के श्री ब्रेमानंदा मांगापति, जिन्हें नंदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले रविवार को सुबह 10 बजे उनके घर पॉम्पलीमुसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

रेडियो मॉरिशस पर लाइव प्रसारण जारी है. आइए अभी के लिए सुनते हैं विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से. रोजिल के रहने वालों को खासकर एनएचडीसी कॉलेव्यू, एवेन्यू मद्रास, स्ट्रीट ओजिल, मोसलमान सीबर्न और एवेन्यू राजसी ततान, एवेन्यू सीरियस के कुछ हिस्से के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 2 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी. दूसरी विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही. रिशबॉ और ब्रिटानिया के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 2 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी. अब सुनिए तीसरी विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही. तेरासिन सुयाक और त्वाबा सुरीनाम के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 2 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी. जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी. ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: समस्त सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। आप लोगों का हार्दिक अभिवादन करते हैं श्रोताओं। कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम हमेशा की तरह हम भगवान गणेश जी का नाम लेकर करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कहते हैं अगर मन में श्रद्धा का दीप हम जलाते हैं तो रास्ते भी कितने भी कठिन क्यों ना हो मंजिल तक हम ज़रूर पहुँचते हैं। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं।

भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रद्धा केवल सिर झुकाने का नाम नहीं बल्कि दिल से विश्वास करने का भाव है। जब श्रद्धा सच्ची होती है तो छोटी सी प्रार्थना भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं।

श्रोताओं याद रखिए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ आशा जन्म लेती है, और जहाँ आशा होती है वहाँ चमत्कार होने की संभावना कभी समाप्त नहीं होती। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। साथ देने के लिए धन्यवाद। एक और मुलाकात तक आप सभी को शुभ रात्रि।

सलमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बयान किया कि मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मैंने आपसे पहले और आपके बाद आपसे बेहतर कोई मुअल्लिम यानी सिखाने वाला नहीं देखा। अल्लाह की कसम, न तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा, न मुझे मारा और न मुझे बुरा भला कहा।

सही अल बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर शख्स को अमल करने का नतीजा उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। आखिर में ये कुरानी दुआ समात फरमाएं, मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए यूसुफ सुबगाची का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबिनाज जान अली को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। शब खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

सब संगत आलोक के स्वीकार करे चाहो जय प्रताप सिंह के प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह था मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चलिए अभी से लेके रात के 11 बजे। थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुन के नंबर वा घुमैया का जवाब देवी।

गोविंद सिंह या फिर रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर सकबर गीत मांगी। तो याद रखिए प्रोग्राम भोजपुरी की और भोजपुरी के गीत चली अभी से रात के 11 बजे रहते। सबको स्वागत बा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तड़का
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: रात की 9:05 होता रमनी के साथ देखा थे, बहुत बहुत धन्यवाद। रमनी के टिकटॉक पेज पर फॉलो करा था रेडियो मॉरिशस के सब कोई के स्वागत बा और एकदम चकाचक प्रोग्राम चली और बेशक तोरा मन करता को नवी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमाया का जगह देवे जगह बीच या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर हमने के सब बजाय SMS करी। अगला गीत ओरी मामा ओरी मामा ओरी मामा बिस्वानी दीपा गीत आगे देवो ने गीत निशी ललित खतीर पीरतम लोटू पूनम गोपाल रेशमी बंधु अंचना शैलेंद्र सुबी प्रमोद रॉबर्ट विमी कविता और सब संगत चारों खातिर गीत चली। साथ में संगीता भी हमने के साथ देवतन वीर बुधु रेशमी बंधु रॉबर्ट बतन कैसे भैया कैसे भैयो अच्छा हो ना तो रॉबर्ट भाई बराजो नाचता हमने के संगे नाचो रॉबर्ट भैया है गीत वापर।

तर जानी रहे हमने कि देश में जंगली बिल्ली लोग बा वो जंगली बिल्ली गाँव बासे बगल जब गाँव बासे जेबा तो देखिया कबो कबो जंगली बिल्ली बड़ा बड़ा बिल्ली रह करिया करिया हुआ सा वो लोग गाँव बासे में जब पनिया में मच्छी लोग बोर में आवेला तो हाउ जो बिल्ली रहेगा वो मच्छा के पकड़ के दबोच के वो खा लेवेला कबो दिख रहे हुआ बड़ा बड़ा बिल्ली है हाँ एक जंगली बिल्ली बोला सा और जब गाँव बासे बगल जेबा तो एगो प्लास के नाम है घोड़ा बाबा हाँ तो वहाँ पर एगो पत्ता देखे तब हम जाए सर और जहाँ गाँव बासे बा तो जंगल ही जंगल बा और होने गोयाब देसिन खूब मिलेगा तरह तरह के गोयाब देसिन पक्कल पक्कल अब सब गोयाब देसिन आन के अगर कॉम्पोज बना दे या गोयाब देसिन के नमक भी वहाँ संगे सकब सकब सखाए गाँव बासे जो पवित्र जगह बड़ी जोरी जगह

तुम्हारा में जो मच्छी लोग बोर बोर में बा तो मच्छर को जान से पकड़ी और शायद ढेर को नहीं जाना तो गाँव बासे में ढेर माना ओंगी और मच्छी बा और एगो ओंगी के नाम बा ओंगी सेंदू हाओ ओंगी तो बड़का ओंगी और मुड़ी में इसे बुझा सिंदूर डालर बा खूब मोटा सा नवा पर कोई की हानि नहीं पहुँचावे जाए हम उतना हालात करें खवा से घूमे पूजा पाठ करे पर बोले रन से ढेर कोई डरे रन से ये ओंगी वासे एक और नंबर ओंगी सैंदू बाप रे बाप तो चल अभी सुन जा एगो प्यारा संगीत दूल्हा शादी करा दूल्हा शादी करे जाला बसंत सुपोल गीत गे रहे गीत वंदना खाते चलावती हाय वंदना अरविना है गीत और खातिर फिर गणेश वरुण उनके साथ देवतवन हेलो रिद्वेश है गीत और खातिर अंजू भी उनके साथ देवतवन और है गीत तेज सनातन खातिर मनीषा चामी सिंह कैसे बस समाचार गीत हर नाम दिनेश हरी मेधा रामचंद रीता के नाम रीता सीतालु तोहर बेटा शैलेश शैलेन तोर दुगो पत्यु तोहर चीजों सब सीतालु परिवार के नाम राविश मंडू है गीत तोरों खातिर तोहर बाप तोहर माँ तोहर भाई तोहर भौजी और सब तोहर परिवार सब मंडू परिवार के नाम और है गीतवा चरी रिवेश दत्तू हाँ रिद्वेश कैसी बा हाँ रिद्वेश दत्तू जो उनजाला कॉलेज सैंतोमा एस एस एस ग्रेड सेवन रेड के रेखा है ए तो ऐसा मान ऐसा जोड़ी रेखा और ऐसा प्यार से पढ़े रहा ऐसा जोड़ी गजिलता आने रहा लेखा बो मानिए है सबको बोला रिवेश दत्तू एंड बो गौसों सब प्रोफेसर लोग प्रशंसा करे रहा और ये सेवन रेड के रेखा है सैंतोमा एस एस एस डाला जहाँ पर हम काम करे कॉलेज में और लेखा जो है जीवन से पढ़े रहा और हमेशा सबको के नमस्ते बोले रहा तो रिद्वेश दत्तू है गीत तोहर खातिर तोहर सब संगत खातिर जो ग्रेड सेवन रेड में होन जान सर सैंतोमा एस एस एस कॉलेज विद्या भी उनके साथ होते हैं हाई सोनिया सामियल सामियल भाई है गीत तोहरों खातिर रॉबर्ट की ओर से माया के लिए और नरवीश भाई है गीत तोहरों नाम मिकाएल भुलात है गीतवा तोहरों नाम चाल सर दूल्हा शादी करे जरा अब कहाँ जाता दूल्हा शादी करे चले एक साथ सुने

रात के 9:20 हुआ था और ढेर को बोला था बड़ी ठंडा करता तो ठंडा नहीं करता कौन सी करी भैया ठंडा के मौसम में इसे। और देखिए ऐसे चिड़े लोग कैसे काम करें, तिनका तिनका वो लोग अपन घर अपन घोंसला बनावे ला पिची तय पिची लुआजो पिसोनी। तो ऐसे ही हम जो इंसान थोड़ा थोड़ा से बड़ा बनाए ला सर, छोटा छोटा आदमी से तब ना बड़ा आदमी बनबा, छोटा छोटा से रमास रमास के छोटा छोटा चीज तब ना बड़ा घर बनेबा। तो चिड़े लोग से हमने के जाना सीखे कि कैसे एक गो भाई वो लोग आन आन के घोंची में डाल के अपन खोता बनावे लन सर, खोता में अंडा देवे लन सर, बच्चा देवे लन सर। इंसान के बीच है ना थोड़ा थोड़ा से सबूरी करे के तब एक दिन जाके वो लोग लगे कुछ रही हाँ कि नहीं। और फूमी चींटी चींटी कैसे छोटा छोटा छोटा सन चीनी छोटा सन नीमक छोटा सन आटा लेके अपन कपार में ढो के ले जाके रखे लन सर, तब जाके आराम करें सर। तब वैसे ही इंसान के भी चेहरा ये सबसे सीखे कि थोड़ा थोड़ा से बड़ा होला। और अभी एगो संगतिया बा लाइन पे कॉल से मिलब जा और देखब सर का बोला था। हाँ कहिए हमने खुशी रही ला टेलीफोने करके टेलीफोन काट देवेला सर छा तान करे के अब इससे कर बस कैसे बोला था

तो बड़ा आदमी जब ऐसे करे तो लैका लोग का सीखे अंसर गीतवा भी फिनी उगल बा तो अब ले अबसे ना अरे पापा गीतवा नहीं लेवाता नहीं सुनी कराता था पर यहाँ पर टिकटॉक पर ढेर कोई बा रिवेश दत्तू बड़ा जोर नाचता रजनी रखतुआ शालिनी हिरू है गीत तो हर पति विशाल फिर तो हर दुगो बेटी और सब हिरू परिवार आप लोग से एम जी एस हेलो नमस्ते रजनी रखतुआ सायरा दाहू है गीत तो हर खातिर केलान व्यासामी वो भी हमने के साथ देवा थवन रजनी रखतुआ उमेश कृपा वशिष रामजिया काव्या इशिका और के बाद संजू वो लोग भी हमने साथ देवा था तो चला एक साथ सुने बाजे पायला खुशीदा देवी प्रतिमा रिसोल की गावल गीत

0: संगतिया लोग हमने के आंगन में ढेर को के आंगन में तुलसी के घौची बा त तुलसी जुन है ओके अपनी माँ के रूप में पूजा कर रहा सा तुलसी के पत्ता के आयुर्वेद में को इस्तेमाल होला तुलसी के पत्ता से दवाई भी बने रहा हो कि नहीं त तुलसी जुन है आयुर्वेद और आयुर्वेद में इस्तेमाल होला और तुलसी जुन है ओकर पूजा भी होला और सर्दी खांसी और गले की खराश के दूर कर दिखाते तुलसी के पत्ता के काजे करके कुए जैसे चाट लेबा तो सर्दी खांसी सब तरह दूर चल जाए और जब तक खाए के जिस जगह नहीं हो तब तुलसी के पत्ता खेबा तो खाए के जिस जगह हो जाए तो और गाय सब ठीक हो जाए। ढेर को जब तनाव में रहेला तो लोग तुलसी के पत्ता खा लें से तनाव दूर रहेला और है तुलसी जो है सगबा मुँह में चबाए चार पाँच को पत्ता कैसे तो लासौते अच्छा रही और बेशक जैसे हमने बोली सा कि तुलसी जो है तुलसी के पत्ता कैसे पूजा होला एक से दवाई भी बनेला और जो तुलसी के पत्ता है अगर तोहर लगे तुलसी की घोंची रही तो घोंचा अच्छा रोज के आगोजे करे के आगोजे कर घोंचा बड़ा हो अगर में पत्ता मिली तो पत्ता के सगबा इस्तेमाल करे तो हमेशा याद रखिए तुलसी के ढेर पौष्टिक तत्व बा साथ में ओकर पूजा भी होला। तो अगला गीत जलसा बा जलसा तो हो भी करी नाचब सर चला नाचे गावे अंजू के संगे जलसा बा है गीत तो आपने चलावत है सर खासम खास सुनीता के नाम रिकी सुमन वरुण और ऋत्वेश और साथ में है गीत तो हमने चलावत है सर अनिल लोचन के नाम टेडी भी हमने के साथ होते हैं हाय टेडी फिर माधव प्रतिमा है गीत और कहते प्रीति केलान हेलो है गीत और नाम सायरा दाहू गोबूदन कल्याणी गेंदा है गीत और नाम नसीन मोहिदी वर्षा और है गीत हमने चलाओ खासम खास नंदू ननकू जुन गाजिस में बा ओके गाजिस संत में एसएसएस के लेगा ननकू जुन है बहुत प्यार से हमने के दिखा था वंत ननकू है गीत थोरो नाम जलसा बा चलो जलसा करे
1: Ladies and gentlemen, namaskar, the Bhojpuri

Casbaras meet Lafayette, Subway Lafayette, Dalata, Sangin, Sangin, Subway, Nasha, Chumota, Gawata, or the upcoming look snobs at Fab de la Fontaine, Gilkahani, Lulia Villa Tochi, Kyoker Hindi, and Oker Hindi, Gopoturi, and what? Khargosh or Kachwak Kahani. They go jungle, may go taste, Dauriola Khargoshal, who bought Gaman Kratar, Pangati per Kaiki, Bala, Joe, Taugatal. तो वो हमेशा सब की मजाक उड़ावे कहे कि खरगोश जो ना बड़ा जोर ढोगेला और वो सोच रहा कि कोई उसका सीने सके जीते। तो एक दिन खरगोश जोर जोर से हंसे लगा और बोला था कि वो विश्वास बा कि वो सब कोई की सकी हरा दे। तो एक दिन वो खरगोश संगे प्रयास दलक नहीं खरगोश कछुआ संगे कछुआ जन की तोची प्रयास दलक कि एगो रेस करियन सा दिखा सके के के को में प्रोमी आई तो कछुआ जो जो नहीं जो ना क्या नंबर आई जो ना खरगोश है तो ये मोर के देखला का और सोचा था कि कछुआ वो तो गते गते आई तो ये क्या बता कछुआ वो तो देरी से आई तो उचित गते गते आवेला हम जाके सूझ जाएगा थोड़ा सुन तो ये क्या कर लग जो नहीं जो ना लेव है ये जाके सूझ गल और कछुआ बिना रुके धीरे धीरे धीरे धीरे ऐते ऐते वो दिपासे कर देलक खरगोश के और वो रेस में जाके फोमिया निकल गर तो ये सोचा था यहाँ पर ये सोचा था कि है तोची कौनसी करी था तोची रेखा गते गते आवा था और इधर सुतर बाप पर ओके बाद में एहसास होला कि जब ढेर घमन करब तब नाक के पर गिरबा और नाक पर गिरबा तो घमन टूट जाला और ये रेस में कछुआ के जीत होला और है जो नेव होला उस शरम में पड़ जाला कह के ओके बहुत घमन रहा अपन पर कि उधे तेज अकेला धोगे अपन घमन के कारण है जो नेव है जो खरगोश है उस शरम में पड़ गया। तो कहानी की सीख कौन सी है कि अगर तोहर पास कोनो भी क्वालिटी बा तो ढेर घमन नहीं करिए कहे कि ढेर घमन करब तो कभी घमन टूट जाला। तो जो फाब दे ला फोंटेन है ये ज़रूर पढ़िए जाकर हिंदी अनुवाद भी बा इंटरनेट पर भोजपुरी अनुवाद भी बा और ढेर चीज एक मैं थोड़ा मिली सीखे के। अगला गीत राधे राम साह के अवल गीत है लुगारू है गीत चलावती।

इस हरि के नाम लविन्या है गीतोर खातिर सुधा सिजन है गीतोर खातिर साबिरून वंदना अनुष्का राना मदन लवना विमला विशि जान जान परमेश और पेरिन फिर ऋषि इंद्रानी रामपर शिवांश जितेश नंदिनी बिदिस और वेस्ली आमोस भी उनके संग नाचा था बहुत खूब वेस्ली आमोस प्रमोद कुमार भी और साईराम भी। तो चले साथ सुने लुगारू की कहानी।

राम सीता की कहानी तो सब कोई जाने रहा कि राम सीता संग शादी करलक, और जब शादी करलक तो राम सीता लक्ष्मण के पड़ल 14 वर्ष के वनवास जाए के, और वनवास में तो बड़का युद्ध हो लगल काहे कि रावण जो है सीता के हरण की दापी करके चल गल, तो जटायु एकर में मारल गल। जटायु गल सीता के बचाए तो रावण जटायु के एक पंख काट देलक और बेचारा जटायु मर गल। फिर सुग्रीव बाली सब राम भगवान जामवन सब राम भगवान की मदद करेला, हनुमान राम भगवान के मदद करे जाके सीता के लंका से आने के महायुद्ध होला और राम रावण के वध करेला। और फिर जब राम सीता के लेके आवेला महल में तो सीता के दुगो लड़का होला, ओकर लड़का लोग के नाम रहेला लव कुश। तो लव कुश राम सीता के दुगो लड़का रहेलन सर। और ये रामायण के अंत ऐसे होला कि धरती माँ फट जला और माँ सीता धरती में समा जला और लव कुश अपन पिता राम भगवान के लगे रहेलन सर। तो अब सुनम सा एगो गीत माछी गए चौ थारी है गीत खास कर वेस्ट ले मॉस का तेरु बोलन सर भोजपुरी बढ़िया खुशी रहेला। और एंतों में भी से रहा काम करत हर बोलता कुल एफ एम में तेरे जो में भी तो वेस्ट ले मॉस है गीत खास कर तौर खातिर चौथारी माचे के जुबानी।

0: Continuous music. RM3.
1: 7 days a week. 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
3: भोजपुरी तड़का

भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट, जलसा, हंगामा।

दुनिया में तनाव ही तनाव बा, स्ट्रेस ही स्ट्रेस बा, जहाँ भी दिख बा स्ट्रेस। अभी देख रहे सब वेनेजुएला में कैसे धरती कांपल और कितना कोई की मृत्यु, बहुत ही सा कातुसों जीवन से भी ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गल बा। उधर यूरोप में देखा था ऐसा है जो हीट वेव बा, गर्म लहर बहुत था और है गर्म से ढेर कोई की मृत्यु भी हुआ था। तो चारों ओर दुनिया में हलचल मचल बा, बस। और ऐसा दुनिया में बस चला ऐसा फिल्म देखे गए ताकि सब हंसी स्ट्रेस दूर करे। और अभी को फिल्म निकल बा बॉलीवुड की दुनिया में, वेलकम टू द जंगल। कल गीत चला जी फिल्म वहाँ के आइए को भोजपुरी गीत है, घिस घिस के चाहे नहाए के तोरा मौका मिली तो यूट्यूब पर जी जा या सिनेमा घर में मौका मिलते जाके फिल्म वहाँ देखिए या यूट्यूब पर तापी करिए वेलकम टू द जंगल और तापी करिए घिस घिस सॉन्ग। तब बतावे ना कैसे चेहरा गोर हाथ धोई के घिस घिस के घिस घिस के राहो राहो नहाए कि नहीं घिस घिस के। तो चलो अभी हम लोग घिस घिस के गीता सुनब सर। गीता गेले वन विक्रम मंथरोज और सुप्रिया पाठक घिस घिस के। और ये भोजपुरी गीत नहीं सर फिल्म फिल्म वेलकम टू द जंगल से। और गीत खासम खासम चाहते सर शास्त्री बुरे मालिक खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ शोभा हवन बकवा से अनिता लाल जी फिर अनिता अफ्री कॉम्फ्लैक्स से और कमला जी न्यू मोहताबाद से कर चीज़ों फो आरोही खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ सी सहाय कैसे बस सी सहाय परिवार जानकी सी सहाय स्वीट एंड लवली लवली जानकी सहाय खातिर जिन हमेशा उनके देख के प्रणाम करे रहा था प्रणाम जानकी सी सहाय गीत और खातिर घिस घिस के घिस घिस घिस के चले साथ सुनब जा।

0: रात के 10:19 हुआ था। तुम किसने तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर रेडियो मॉरिशस जो है तो आएम पर चलेगा। ओके आएम फ्रीक्वेंस बोलेगा सर 819 kHz पर और रेडियो मनोरंजन एफएम फ्रीक्वेंस पर है 94.6 MHz पर। तो एमबीसी के दो चैनल चलेगा आएम पर, एगो है राजो मॉरिस जहाँ पर ऑक्सीडेंटल प्रोग्राम चलेगा और दूसरा का है रेडियो मॉरिशस। और सब हमने के दूसरे राज्यों के चैनल जैसे कुल एफएम आई रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती सब एफएम मोड पे है। तो बेशक कोनो भी मोड पर हो हमने के राज्यों बस 2400 घंटे सातों दिन हमने तो लोग खातिर अच्छा अच्छा प्रोग्राम चलाती रही रहा सर। और अभी रात के 10:20 होता तो लोग सुना था हमने की बहुत प्यार से बहुत बहुत धन्यवाद हमने के साथ देख खातिर का जगह दे विद जगह विद सैंक पर सक बच्चा टेलीफोनी करे। और चला अगला गीत सुनब जा जलसा करे के कृषि गीतवा गैली हवन बहुत बहुत प्यार के साथ। और एक गीत हमने चला दूसरा मनु के नाम मनु के और सको सब परिवार के लिए और अश्विन बच्चन हवन गवेज पोसे सब बच्चन परिवार के नाम उदय धनी राम कर पत्नी कर बेटा पतु बेटी दामाद कर समझी जो नाफलवा रहेलन किशन गुड़िया पर गीत और खातिर और है गीत अच्छा होती सर प्रीतम राज मिला के नाम कर सब परिवार के लिए केशव बिला के गीत और नाम थोड़ा सब परिवार के नाम। और फिर है गीत हमने चलाओ अब सर चाचा साइलेंट की ओर से कर नेफ्यू माधव के नाम और माधव अपन चाचा से बहुत प्यार करेला और जब चाचा जाला तो अपन चाचा के खूब दुलार करेला बहुत लार दुलार करेला था है गीत और खातिर अभी को संगतिया बलाइन पर चलो कर से मिलब जा देखब जा की हवन जा जो हमने के सुने का तुम शोभा काटो बोन से। हेलो शोभा, शोभा जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे समाचार?
1: ठीक है
0: सब ठीक बा? टिकटॉक पर हमने के देखला थोड़ा बहुत टिकटॉक पर रहेला थोड़ा सुन देखला कैसे बुझाल प्रोग्राम अच्छा चला था?
1: सब ठीक चला था।
0: हाँ और आज के दिन कैसे बीता शोभा?
1: हाँ
0: जी जरूर करेला के बिंदाई करेला के बिंदाई बनेला हो
1: बिंदाई नहीं अचारो कर अचार
0: अचारो बनेला
1: हां
0: आज एक दिन दाल के
1: क्या लगेला
0: एक पो दाल के अनिया मखातिर हमू फाता से खाप
1: आले आले हम दाल दो ताके ले
0: जाइए ए हमें रहेला

0: आमे रही नहीं ना, आमे रहे नहीं ना,
1: अपने बनाई
0: बना। आले आले जब एक दिन बना के आन देव तब हम बोला फाँ देखा शोभा हमने इसके इतना हमने की खुशी रहे हमने खातिर करेला के हौचार आन देलक। आले बहुत धन्यवाद शोभा। और कुछ संगत जब लाइन से बात कर जाए। हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी नमस्ते प्रेमिला जी, कैसी समाचार? हेलो प्रेमिला बात कर। हेलो लासों तो इतना नहीं छबा। हाँ तो लास्ट में इससे माता जी जब लाजवा जैसे जैसे बढ़ ले जा रहा
2: था
0: का कर
2: बड़ी
0: लड़का लोग। हाँ जी बाबा लोग संगी ना थोड़ा बहुत। हाँ लोग तो नहीं जाने रहा। और बोला था अगला गीत क्या खातिर? कौन सौंती मांगने डाला? आलू
2: फट गई
0: नहीं गीतवा कैसे शुरू होला? फट गई नहीं बोलेगा। साजन के देवल सारी फट गई ना।
2: बहुत धन्यवाद।
0: हम गाईला नाचीला गवाईला और नचाईला हम सब जाने। हम खाली गायला नहीं, हम गवाईला नाचीला और नचाईला।
2: अभी बोला था डाले के है
0: साजन की देवल सारी बाकी तो पूजन हम आए के गे लगभग गीत के गे
2: लगभग
0: गौरी बहार ब्रदर्स। ओके ओके तो चला दे अब सर। हाँ
2: परिवार के लिए भी वो परिवार बीमार हम उनकर के लिए ज्यादा बोलत हैं डाल दिया।
0: तो गुजाफे के मौके कर तुम की सब बड़ा आदमी लोग बीमार होके चल चल जाता तो के मौके कर लिया हुआ। तो के मौके कर उनकी सब बड़ा आदमी लोग चल जाता।
2: हाँ सच में बोला
0: तो कोई नहीं रही एक दिन तब सब ऐसे अकेली पड़ जाब सर ना।
2: हाँ
0: सब बड़ा आदमी आगे के कितना हो रहा ढेर कोई गीत मांगत हर जेकर कतहोवे कतहोवे जी से जहाँ कतहोवे जी से तो सब तो जाता। कोई नहीं रहेगा परिवार में। हाँ तो का कर दुनिया में चे परी देख रहा कहूँ कहूँ पर धरती कैसे थौबले होता है। देख रहा वेनेजुएला में कहूँ सिक्लोन कहूँ थौबले लेता हूँ जितना गर्म रहता है यूरोप में था गर्म से आदमी लोग मर रहा था। हाँ तो जजे के परिवार में जब बड़ा आदमी नहीं रही तो लेकालों के सिखाई लेकिन जब ये बड़ा आदमी लोग रहेला बड़ा आदमी लोग के बोईला से लड़का लोग के सिखाते रहे कि ना।
2: हाँ बहुत सिखावेला सुनीला।
0: हाँ ढेर चीज हमने अपनी
2: की बोली ले रहे इसे से बोली ले जा
0: किसी तलवा बोली तुलसी के पत्ता के कर महत्व तो ढेर लड़का लोग नहीं जाने रहा। कोनो कोनो लड़का के हम देख रहे हैं हमार आँख के सामने प्रेमिला हमार आँख के सामने एगो लड़का के देख ली अथी तुलसी के घोंचा के टूट टूट के ओके बीगा था। बोले कि तो कूपे था बोले कि बुफे लेपसा बोली लेपसा हम बोले कल पूजा होला बोले किसान आइन जाए हम से बता किसान आइन जाए बोली किसे तो कर दादा दादी कोई नहीं बात कि ताकत आदि मन से तब से बता फिर पूजा हो सा बोली हाँ रे लड़का कर सब पूजा होला कर दवाई बन रहा तब जाके। हाँ तब लड़का नहीं जाना था कोई घरे नहीं बका साहब लेके काटा था कौन चीवा। हाँ तो का कर अच्छा हाँ तुलसी के पत्ता के दवाई सब बने ना आयुर्वेद है बाबा रामदेव के देखभाल योगा सब तेरेज में बतावे रहा था तुलसी के ढेर मना दवाई बने ला है क्लिनिक में जे वो क्लिनिक बा लेस्काली में आयुर्वेद के तो वहाँ पर जेब तो सब आयुर्वेद के करेला के ओकर ओकरो से ओकर करेला के जूस से ओकर दवाई है कागज के जी से है ये सब बने ला ढेर ढेर ढेर चीज बने ला। हाँ तो पर लासौते छा देखे के ना प्रेमिला इनफैक्ट हाँ लासौते अच्छा रही कबू कबू पैसा कौन काम के तो लासौते चले पैसा तब कौन काम के हाँ एकदम बोलते स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा। अरे प्रेमिला तो से बात करके बहुत अच्छा लगा तो गीत चला दो थोड़ी घड़ी में। ओके और एक संगत है राधा न्यूल फोन से। हेलो राधा कैसी बा राधा जी नमस्ते
3: ठीक बा
0: सब ठीक
3: नमस्ते
0: चलता धीरे धीरे होले होले हाल चाल चला था पर बड़ी ठंड, बड़ी ठंड।
2: हाँ तुलसी।

0: माँ के तारीफ का अंदर देर कुछ हो गई थी।
1: अरे बोला तुलसी माँ के कौन गीत है?
0: ना बस तुलसी माँ के तारीफ कर ला।
1: हाँ
0: हम आप जय पूजा करी रहा बड़ी तम अगर कांगन तो जाए कर देती।
1: तुलसी माँ के कांगन भी रखल जाला। कौन कौन दिन है वो?
0: नाम ना तुलसी माँ के गीत नहीं बोला थे हम तोरा। हम बोला था यही है तुलसी माँ के तारीफ कर ला।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तुलसी माँ के तारीफ कर ला। हम देर कुछ हो गई थी हम अगर तुलसी विवाह करी रहा हम
1: हाँ ओके ओके
0: घर पर
1: ओके
0: सब अगर कांगन रही ला एकादशी।
1: एकादशी के तुलसी के कांगन रहल जाला।
0: हाँ रहल जला एकादशी तो अभी हम फिर आशा कर देने तो कांगन उठना शिवाला वो नहीं जा रहे तो घरे हर बड़ी सो के बुला देने हम ओकर पूजा करी ला ओकर तुलसी विवाह करी ला
1: तोहर लगे
0: ओकर सब कांगे करी ला।
1: तोहर द्वारी में तुलसी के गांची बा?
0: आ बाकी हमारे लगे तुलसी प्लॉटी रात सब सुखा जला
1: आयो काहे ते से सुखा जला का जीनी
0: का जीनी समझ धतुरा जाने ला धतुरा
1: हाँ धतुराओ के हम जानी ना ढेर कोई।
0: धतुरा का खुबा।
1: हाँ धतुरा शिव जी के पसंद बा ना।
0: हाँ ढेर बाबू अरसी
1: हाँ
0: बोला था ये कुछ बोला था हमार खातिर एगो गीत डाल दिया हमार सब बहिन खातिर जितना हमार भाई बहन सब हमार भाई राकेश और हमार दूगो नेवे काम करता राकेश नितिन बबी अच्छी हो गीत बात दिया कैसे दादाजी के पोसल पासल ललका चिड़ैया उड़ल जाला
1: उड़ल
0: उड़ल
1: जाला
0: जाला
1: ला
0: ललका
1: ला ला ला
0: ललका
1: लड़का चिड़ैया।
0: चिड़ैया राम उड़ल जाला।
1: बाप है लड़का
0: आ तोरो
1: चिड़ैया
0: खातिर आ
1: हम।
0: परमासी खातिर परमासी चाची खातिर
1: हाँ
0: आ हमर मामी हती गायत्री आ ओकर बेटा अजय
1: तो
0: आ
1: चाची
0: हमर सब बहिन
1: गायत्री
0: हमर
1: कहाँ?
0: सब सहेली खातिर
1: तो चाची गायत्री कहाँ रहेला?
0: नुबेल फोन
1: हाँ नुबेल
0: तू
1: फोन।
0: हरदम गीत मांगेला
1: हाँ होता
0: हमर
1: हर
0: मामी है।
1: हमेशा तो हर खातिर गीत मांगेला।
0: हाँ हम हमहू ओकर खातिर मांगेला
1: आली हाँ
0: हम
1: आली
0: पहला मंगली लाली नहीं मिलल तोहरो खातिर
1: ए
0: सब हमार
1: ता
0: दोस्त से खातिर
1: और सा
0: रचना दीदी खातिर सुरेखा दीदी
1: हाँ
0: किरण दीदी सब दीदी के
1: सब दीदी
0: तोहरो
1: लोग
0: खातिर आर भाभी के आर सब हमार लेवे निये के
1: आले आले। तू करेला के अचार डाले ला?
0: करेला ना हम अच्छी पकेले है दाल घाम सूजी दा के मसाला में
1: नहीं करेला
0: आर
1: के
0: चाशनी कोको आलू भुजे है आर आलू
1: करेला के बिंजाई जैसा बनाई ले हुआ करेला के बिंजाई।
0: करेला हम नहीं खाए लाला को तोसा खाती मामा रहल ना भैया
1: हाँ
0: मामा रहल था
1: ए
0: उ सब कालते जासा डाल के रखे
1: ए ता अब
0: करेला थी अब सब कालते जासे कौन लता पर सब हम काम करके अब लीजिन काम कर ली
1: प्याज
0: काम
1: के
0: करके आओ अब ता
1: हाँ प्याज के बिंदाई बनेला जाने ना
0: प्याज के जाने ला गाते पकेला
1: गात तो जानी ना पर प्याज के बिंदाई भी बनेला। कमे मुटौर डाल के एक पो में डाल दे बा तो जब भात खाते हो
0: कैसे
1: भात
0: डाला बोला था हम डालो
1: थोड़ा बाद में कैसे तो दे पर हम दिजा खैली है। हाँ प्याजवा जब जब से जैसे दाल बा भात पकेले वा गरम गरम तो थोड़ा आलू
0: हाँ
1: तार दिला और हाँ एथी के बिंदाई रही प्याज के जोड़ी से खा ली बा।
0: आला खाल खा के जाइए चटनी कोको कुम देते चुपे दाल अति दाल चुचू पाटा
1: कौन एंड्रॉ हवा
0: नुवेल फ्रांस
1: नुवेल फ्रांस आले इतना प्रोग्राम में इतना आप तो लगे भोजन करी।
0: आओ चल रही है आओ
1: आले बहुत धन्यवाद
0: सब
1: राधा राधा जी।
0: वेजिटाइए बाते सब वेजिटाइए
1: आले बहुत धन्यवाद राधा जी शुभ रात्रि। आले तो राधा जी बहुत प्यार से पकैले और नबड़त बना खा के पेट भर गवा माता जी को सद दिन आव। अभी साजन के देवल सारी फट गैली मोरे साजन के देवल सारी फट गैली। एगो मिसाज देखत है याल बा ओके आई मिसाज वा बोलता प्रताप जी प्रोग्राम तो एकदम चकाचक बा और तड़का सच्चे कि तू तड़का लगावत हो भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में है गाना चला दिया सब परिवार के लिए ओके रेडियो मॉरिशस की टीम खातिर तोहर ननद खातिर भी और हाँ अनीता अनीता में सजवा भी जाकर रखबा सब मॉरिशस वासी खातिर अनीता गीत मांग लगबा। तो चल एक साथ सुने साजन के देवल सारे फट गैली मोरे साजन के देवल सारी। धनराज विशेषर के जन्मदिन बात बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद और बेशक धनराज विशेषर जी ढेर मना प्यार आशीर्वाद और गीत तोरो नाम। संजय बिहारी वो भी बहुत प्यार से रेडियो सुनते रहे लन और बोले लन कई कबक वो रेडियो मॉन्शस बड़े बड़ा भैये करेला। तो जड़ियाओं के एफ थी में डुबले वे पर एम से राजू पहुँचे हुए इंटरनेट पर जलिया तो राजू जो रेडियो मॉन्शस एकदम चकाचक टन टना टन बजेरा चला सुनब जाएगी तो।

बोला जा रहा कि भक्ति में बड़ी शक्ति बा और सब कोई अपन श्रद्धा अनुसार भक्ति भगवान की भक्ति करे रहता है। और हमने दो प्रकार के भक्ति हो गए, सगुण और गो निर्गुण। सगुण मतलब भगवान के को रूप दे रहा सा और भगवान के हमने पूजा करी रहा सा, तो कबो कबो भगवान के हमने ओम बोली रहा सा। निर्गुण यानी कि विदाउट फॉर्म तो कर पूजा करी रहा सा, तो सगुण के पूजा करब या निर्गुण के अगर तोहर मन में भक्ति बात तो तोहर पूजा भगवान अवश्य स्वीकार करेला। और हम तो मानेला कि भगवान हमें से कुछ नहीं मांगेला है। भगवत गीता में लिखल बा, कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलेला कि एगो भक्त अगर एक लोटा

चल यगोपान के पत्ता यगो फूल भगवान के सच्चे हृदय से अर्पण करी तब बस वही काफी बा। तो चला भी सुनब जाए गो दुर्गा भजन। दुर्गा माँ सुख देवेला, दुर्गा माँ जो न शक्ति के प्रतीक है, तभी जैसे निर्गुण और सगुण भक्ति के बारे में बात कर ली सा, तो दुर्गा माँ के चाहे तू निर्गुण रूप में पूजा कर बा या सगुण रूप में, माँ अपन भक्त पर अपन आशीर्वाद हमेशा बरसावेला। और ये गीत हमने चलाते इसे सब माँ दुर्गा के भक्त लोगन के नाम, और जितना कोई अभी रात के नाइट शिफ्ट में काम करता जैसे ला पुलिस लोग बा, पोंपिये लोग बा, और जो कॉल सर्विसेज कॉल सेंटर बा वहाँ काम कर रहे हैं सर, फायर सर्विसेज लोपिताल में क्लिनिक में जहाँ कहीं भी काम हुआ था, अभी सोफिया लोग काम कर रहे थे वन सर, पासा से लेके जाते वन सर या पासा से लेके आवा था वन सर, शास्त्री बनमाली है गीत है भजन तोहर खातिर तो सब परिवार खातिर, और जितना कोई दुख में बा दर्द में बा तो माँ दुर्गा से प्रार्थना करब सर कि वो तो लोग के दुख दर्द दूर करी और तो लोग के अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करी। जय माता दी।

0: মরিশাস খুব গাওয়া হো হামকে মরিশুয়া খুব জ্বলিবা পুরার গেনালিয়া
1: हम की मरीशवा खूबे जलीबा सच्चे के और एक अंतिम गीत काम करवा रे काम करवा विभा और कमल चिंतामणि के गावल गीत के संगे भोजपुर का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता। शाम के 6 बजे से अभी के साथ रजा बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के बाद ठीक 11 बजे से मजदूर सुन रिपल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से का फजर के 5 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तलों की मुलाकात हुई रेडियो मॉरिशस पर अब शाम के फजीर के 6 बजे से 9 बजे। तब तक हमने की इजाजत दो। अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जी नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी दिल बस इतना चाहता है कि वक्त थोड़ा सा रुक जाए और हम लौट चले उन हसीन लम्हों में जहाँ हर गीत एक एहसास था, हर सुर एक याद था। और आज के इस खूबसूरत सफ़र में हम लेकर आए हैं वही अमर बॉलीवुड के नगमे जो सिर्फ सुनाई नहीं देते हैं, दिल के किसी कोने में महसूस भी होते हैं। तो बस आप तैयार हो जाइए गिनीशा का साथ देने के लिए इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनमें हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बस जाते हैं। पहला प्यार, पहली मुलाकात, माँ की मुस्कान, दोस्तों की मस्ती, सब कुछ इन गीतों के साथ जुड़ा होता है। तो आज अपने दिल को बस जरा थाम लीजिए और दिल का दरवाज़ा खोल दीजिए और इन यादों को फिर से जी लीजिए हमारे साथ। मैं हूँ निशा, जो आपका साथ दे रहे हैं और ये पुराने बॉलीवुड संगीत का एक और हसीन सफ़र लेकर आए हैं, खासकर आप लोगों के नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वैसे देखा जाए तो कुछ आवाजें ऐसे होती है ना जो वक्त के साथ

हर गाना अपनी एक कहानी लेकर आता है और हर कहानी किसी ना किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। शायद आज जो गीत हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसे जुड़ी कोई याद आपके दिल में है, बिल्कुल बसी हुई है आपके दिल में। हो सकता है वो किसी अपने की याद हो, किसी अधूरी मोहब्बत की या किसी खूबसूरत बचपन की। तो चलिए आज सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, अपनी यादों को फिर से जी लेते हैं इस खूबसूरत से शो में। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जाले साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: ना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है दोस्तों, एक गीत बजता है और हजारों दिल एक साथ मुस्कुराने लग जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं वो गीत जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड को अमर बनाया बल्कि हम सभी के जिंदगी को भी सुरों से भर दिया है। तो जहां भी हैं बस कुछ देर के लिए दुनिया की टेंशन को साइड में रखें और इन हसीन नगमों के साथ अपने दिल को सुकून दीजिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। इतने खूबसूरत खूबसूरत नगमे हमने आप लोगों को सुनाया है। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुड बाय टू यू। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के इस खूबसूरत सफर में ऑन रेडियो मॉरिशस।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: क्या कहा?